सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज है शनिवार, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026, 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है सेमिया लता पर लाह की खेती। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
1: सेमिया लता दलहन कुल का झाड़ीनुमा पौधा है जो लाह की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। सामान्य जलवायु में पानी के स्रोत के आसपास ही मिलता है क्योंकि ग्रीष्म काल में जीवित रहने के लिए इसे पानी अवश्य चाहिए। सेमिया लता एक उपयुक्त लाख पोषक वृक्ष है जिसका बागान लगाकर कृषि की भांति ही लाख की खेती की जा सकती है। लाख खेती हेतु सेमिया लता के बहुत अच्छे गुण हैं। एक तो इसका बागान एक वर्ष में ही तैयार किया जा सकता है। बागान लगाने के दूसरे वर्ष से लाख की खेती प्रारंभ की जा सकती है। पौधे की ऊंचाई कम होने के कारण फसल का प्रबंधन काफी आसानी से किया जा सकता है। कुसमी लाख के लिए उपयुक्त होने के कारण रंगीनी से अधिक आमदनी होती है। महिलाएं भी लाख की खेती के कई कार्य इस पर आसानी से कर सकती हैं। दलहन समूह का होने के कारण इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन संचित करती हैं। फसल कटाई के समय ही पौधों की काट छांट भी हो जाती है। फसल कटाई के 6 महीने के बाद दोबारा इन्हीं पौधों पर कीट संचारण किया जा सकता है, जबकि कुसुम वृक्ष पर 18 माह का समय लग जाता है। इन सभी गुणों के कारण सेमिया लता को पोषक पौधा माना जाता है जो कि लाह की खेती के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके कुछ अवगुण भी हैं, जैसे कि मवेशियों के द्वारा आसानी से चर जाना, सिंचाई की आवश्यकता, आसानी से लाख की चोरी और अधिक कीट संचारण सहन करने की असमर्थता। अगर किसान भाई सेमिया लता पौधे की खेती करना चाहते, पौधा लगाना चाहते, इसका बगान लगाना चाहते हैं तो आंशिक शुष्क और उपजाऊ या काली मिट्टी में आसानी से लगा सकते हैं। दलहन कुल का होने के कारण पानी एकत्रित होने वाले स्थान इसके लिए उपयुक्त नहीं है। नए पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी में बीज द्वारा और आंशिक रूप से कलम करके आप इसे लगा सकते हैं। नर्सरी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिसके आसपास पानी उपलब्ध हो और मवेशियों से बचाने का समुचित प्रबंध हो। नर्सरी बेड सामान्यतः 9x1.2 मीटर के आकार का हो जिसमें पानी देने और खरपतवार निकालने में आसानी हो, अन्यथा जमीन आपके पास जैसा उपलब्ध है उसके अनुसार बना सकते हैं। लगभग 0.5 मीटर गड्ढा खोदकर मिट्टी को उलट पुलट कर बेड बनाना चाहिए और इसमें 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। 15 सेंटीमीटर कतार की दूरी पर बीज लगा देना चाहिए जिसमें मानसून आते ही लगभग 30 सेंटीमीटर के पौधे प्राप्त हो जाएंगे। नर्सरी में प्रतिदिन पानी का छिड़काव करना चाहिए और तब तक छिड़काव करना चाहिए जब तक मानसून की वर्षा ना हो जाए। समय समय पर खरपतवार भी हटाते रहना चाहिए। किसी भी फफूंद के आक्रमण से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं और कीटनाशक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं कीटों से बचाने के लिए। इसके आकार के प्रत्येक बेड से 700 से 900 पौधे प्राप्त होंगे और 1 हेक्टेयर में सेमिया लता लगाने हेतु इस आकार के लगभग 12 बेड की आवश्यकता होती है। पॉलीथीन थैली जो है उसमें भी आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। इसकी थैली जो है 25x15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इस थैली में मिट्टी, गोबर खाद और बालू के मिश्रण को 2:1 अनुपात में भर देते हैं। थैली के नीचे छिद्र बना देते हैं जिससे पानी ना एकत्रित हो पाए और आवश्यकता से अधिक जो पानी है वो बाहर निकल जाए। अगर आप जमीन में इसे लगाना चाहते हैं तो जमीन की तैयारी और गड्ढे बनाने के लिए गहरी तिरछी जुताई और 2 सीधी जुताई करके मिट्टी बराबर करने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक गड्ढा का जो आकार है 45 सेंटीमीटर गहरा, 45 सेंटीमीटर लंबा और 45 सेंटीमीटर चौड़ा खोदेंगे। उसे छोड़ देंगे, गड्ढे में गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला देंगे और पौधा लगाने के 25 से 30 दिन पहले इसे भर देंगे। पौधा लगाने की प्रक्रिया मानसून की पहली वर्षा में पूरी हो जाए तो पौधे शीघ्र ही लग जाते हैं। इनकी वृद्धि जल्दी होने से मानसून समाप्त होने के बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। स्वस्थ पौधों को मिट्टी समेत निकालकर पूर्व से तैयार गड्ढे में लगाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो जड़ें हैं वो क्षतिग्रस्त ना होने पाए।
0: सेमिया लता पर लाह की खेती के बारे में चर्चा कर रही थी अनीता तिर्की। अब आज का खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है आज का चिंतन। संकलन और वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

0: धर्म का सार यही है कि मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, यानी मानव जीवन का उद्देश्य सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही असल में मानव जीवन का सौंदर्य और श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा बल्कि परम पिता परमेश्वर की सच्ची आराधना भी है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीबों को धन देना, अनपढ़ को विद्या देना ही हर व्यक्ति का सेवा धर्म है। असल में दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य सेवा है। यदि हम किसी कामना के लिए दूसरों की सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। हम भले ही कितने सुविधा संपन्न क्यों ना हों, लेकिन जो सुख हमें दूसरों की सेवा करने से मिलता है वो सभी सुखों में सर्वोपरि है। सेवा करने से जो संतोष प्राप्त होता है वो किसी और कर्म से संभव नहीं है। सेवा भाव से व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा में अपनी परेशानियों को भूल जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा में जुट जाए तो दुनिया में गरीबी, अशिक्षा, अहंकार, घृणा, पाप, अक्रूरता इत्यादि अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे और तब सभी सुखी संपन्न और प्रसन्न हो जाएंगे। असल में हर देश की भाषा, संस्कृति और बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी के कल्याण का मार्ग मानवता की सेवा ही है। हम सभी को क्रोध, घृणा, अहंकार को त्याग कर अपने भीतर दया, क्षमा और सेवा का भाव जागृत करना चाहिए ताकि समाज, देश, दुनिया में शांति स्थापित हो सके। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है तो युधिष्ठिर ने कहा कि दया ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर दीनहीन, असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति पर दया दिखाते हुए उनकी सेवा और सहायता नहीं करेंगे तो कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी हमारा घर, समाज, देश और विश्व उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारे वेदों में कहा गया है कि मनुष्य, तू दो हाथों से कमा और सैकड़ों हाथों से दान कर। इसी तरह प्रकृति भी हमें यही सीख देती है कि तेरे पास तेरा अपना कुछ नहीं है, जो है वो दूसरों के लिए है।
1: ये था आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है श्यामलाल प्रसाद की इस देशभक्ति रचना के साथ।

संवेद स्वर में अभी आपने श्यामलाल प्रसाद की देशभक्ति रचना सुनी और अब आपको सुनवा रही है मौसमी की गाई भक्ति रचनाएं।

मौसमियों और साथियों के स्वर में आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाएं। पारंपरिक रचनाओं को संगीतबद्ध किया है मधुकर ने।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ, संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष सुशोभित हैं, उन रघुवंशनाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से मीडियम वेव 546.45 मीटर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर ऋषि से। भेंटवार्ता का विषय होगा युवाओं में बढ़ता मधुमेह की बीमारी और सावधानियां। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। सात बजकर 7:45 पर कानून की बात में सुनिएगा एडवोकेट और मीडिएटर झालसा श्री कौशल कुमार से। भेंट वार्ता का विषय होगा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम और डालसा की भूमिका। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। 8:45 पर सुनिएगा कुर्बानी लोकगीत विजय महतो और साथियों के स्वर में हमारे लोकरंग कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे सबिता रॉय से राग नंद में ख्याल।

10 बजे कल्याणी में चर्चा के अलावा सुनिएगा डॉक्टर रानू कुमारी से ली गई भेंटवार्ता, विषय होगा सर्वाइकल कैंसर। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। दिन के 11 बजे स्वर्ग यात्रा के 90 वर्ष श्रृंखला में सुनिएगा डॉक्टर निवास चंद्र ठाकुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार मीनाक्षी शर्मा। आपको बता दें डॉक्टर निवास चंद्र ठाकुर आकाशवाणी में पूर्व कार्यक्रम अधिशासी थे। बारह बजकर 30 मिनट पर शैक्षिक प्रसारण में जलवायु परिवर्तन चुनौतियां और समाधान विषय पर अलका चंद्रा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। 1:20 पर दोपहर अनुरंजनी कार्यक्रम में सुनेगा सिप्रा बोस को। इनसे आप सुनेंगे ठुमरी और दादरा।

0: ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं आपके लिए। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 करोड़ रुपयाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

0: करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंटवार्ता। युवाओं में बढ़ता मधुमेह की बीमारी और सावधानियां। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर ऋषि और इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
3: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल की बिगड़ती लाइफस्टाइल में बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर अपना जगह बना रही है। और खासकर हम बात करें यंग जनरेशन की, आजकल के हमारे युवा साथी पर बहुत सारा काम का प्रेशर होता है, तनाव के वातावरण से वो घिरे रहते हैं और खान पान उनका बिगड़ता जा रहा है, और ऐसे में एक बीमारी जो उनके शरीर के अंदर जगह बना रही है वो है मधुमेह या डायबिटिक या शक्कर की बीमारी जिसे हम कहते हैं। युवाओं में ये बीमारी क्यों बढ़ता जा रहा है, इस मधुमेह की बीमारी से क्यों ग्रसित होते जा रहे हैं, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर ऋषि। डॉक्टर ऋषि, स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर ऋषि, बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग डायबिटिक के चपेट में आ रहा है, क्या कारण मानते हैं आप?
4: आज के डेट में जो हम बात करते हैं शुगर, जिसको हम मधुमेह बोलते हैं, तो मधुमेह, मेह का मतलब होता है पानी और मधु का मतलब होता है मीठा पानी, तो मतलब हमारे शरीर में जो मीठापन का जो मात्रा है वो एक नॉर्मल लेवल से ऊपर हो जाने को हम लोग मधुमेह कहते हैं। और ये आज के संख्या में इतनी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारा काफ़ी चेंज हो गया है। पहले हम ऐसा कहते थे कि लोग जितना अल्प आहार लेते हैं वो उतना स्वस्थ रहते हैं, लेकिन आजकल के ये कल्चर ऐसे चेंज होते गई है कि लोग सुबह भी ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, फिर शाम को स्नैक्स लेते हैं, फिर रात को भी लेट नाइट खाते हैं, और फिर वो लेट नाइट सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ के अपने कामों पर जाते हैं। तो इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जो हम खाना खाते हैं उसका जो चयापचय क्रिया है वो सही से नहीं हो पाने की वजह से हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, और इसकी संख्या आजकल के युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आज की युवाएं हैं वो आज के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को वो मेंटेन करते हैं, और उनके लाइफस्टाइल में शुगर होना एकदम 100% कंपलसरी ही है अगर वो इस चीज़ को मेंटेन ना करें, कि अगर वो रात का खाना एकदम अल्प हल्का कर दें, ना के बराबर खाएं, बहुत सुपाच्य खाएं, और सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी लें। मतलब हम लोग ऐसा कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि जो सुबह का आपका ब्रेकफास्ट है वो राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का जो खाना है वो लंच जो है वो हमारा मंत्री की तरह होना चाहिए, और जो रात का खाना है वो चोर की तरह होना चाहिए, जिससे आपका शुगर ऑलवेज मेंटेन रहेगा। तो ये हमको देखना है कि आप अपने लाइफस्टाइल में खाने को कितना मेंटेन करते हैं।
3: जी, मतलब लाइफस्टाइल हमारी बिगड़ गई है, हम दिन रात काम करते हैं और खाने का समय हमारा निर्धारित नहीं होता है, एक वर्क कल्चर से हम पीड़ित होते जा रहे हैं, और खासकर डॉक्टर साहब जो धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं उसमें ज़्यादा संभावना है कि वो मधुमेह की बीमारी से ग्रसित हो जाए।
4: हाँ बिल्कुल, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं या फिर जो धूम्रपान कर रहे हैं तो उनमें क्या होता है ना कि पहले से भी मीठापन की मात्रा रहती है, अगर आप उसमें अल्कोहल के साथ कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या फिर अल्कोहल के साथ कोई पानी मिला रहे हैं तो उसमें भी मीठापन रहता है, इवन तो उससे वो तो बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इवन आप देखते हो कि आजकल से ना बच्चे को ना फ्रूट जूस का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला गया है, कि अगर बच्चे हैं उसको फ्रूट जूस दे रहे हैं, 6 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, तो इस वजह से ना बच्चों में भी शुगर की जो टेंडेंसी है वो आना स्टार्ट हो गई है, जो कि पहले एकदम नेग्लिजिबल थी, मिलता ही नहीं था। तो ये जो आज के मार्केट में आजकल जो फ्रूट जूस मिलता है या फिर हम लोग आज के डेट में मार्केट के हिसाब से बहुत ताकत के लिए कुछ भी चीज़ें मार्केट से उठा के लेके खाने लगते हैं और उसमें सिर्फ कुछ नहीं होता, शुगर के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो उस वजह से भी शुगर का बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पेशेंट्स जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या जो धूम्रपान करते हैं या फिर जो बाहर के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं उनको शुगर होने का चांसेस मोर देन 70% बढ़ जाता है जो लोग नॉर्मल्स अपने दिनचर्या को फॉलो करते हैं।
3: जी डॉक्टर साहब, यदि हमारे युवाओं साथी को इस तरह की बीमारी हो जाती है, ग्रसित हो जाते हैं, तो प्रारंभिक लक्षण उनको क्या दिखलाई पड़ते हैं ताकि वो समय रहते सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपनी दिनचर्या को नियमित कर लें?
4: आज जब अगर आपको शुगर, मतलब शुगर में क्या होता है ना कि आपका जो पेनक्रियाज है उनका जो पीपी सेल है वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है, और इंसुलिन को बनाने बंद करने की वजह से जो हमारा बॉडी में जो हम शुगर लेते हैं वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है, तो वो जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में इंसुलिन नहीं रहने की वजह से जो हमारा जो सेल है वो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे हमारा सेल में जो सेल को ताकत मिलना चाहिए हमारे बॉडी को वो नहीं मिलता, तो आप थकान महसूस करते हैं, आप कभी भी थोड़ा सा चलेंगे तो आपको थकान महसूस होने लगेगा, आपका सांस फूलने लगेगा, आपके तलवे में जलन होने लगेगा, आप अनईजी फील करने लगेंगे, आपका वेट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ये सब शुगर

0: के प्रारंभिक लक्षण है, आपको रात में बार बार पेशाब करने की इच्छा होगी। तो ये अगर आपको कंडीशन लगता है तो आप अपने तुरंत कहीं पे भी लैब में जाके अपने शुगर को टेस्ट कराएं और फिर उसके हिसाब से अपने किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के हिसाब से अपना रूटीन को बनवाएं ताकि आपका शुगर बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो सके।
1: जी डॉक्टर साहब, हमें लक्षण दिखलाई पड़ने लग जाते हैं, जाँचें हो जाती है और जाँचें में ये निकल आता है कि आप मधुमेह की बीमारी से ग्रसित हैं, तो इलाज किस प्रकार किया जाता है, आयुर्वेद में किस प्रकार इलाज कारगर है ताकि व्यक्ति स्वस्थ हो और आगे के जीवन में अच्छे तरह से यापन कर पाए।
0: देखिए, बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि लोगों को आज के शुगर के नाम से ही डर लगता है। उनको लगता है कि शुगर हो गया, अब हमको जीवन भर दवा खाना होगा, अब हम बीमार होते चले जाएंगे, मेरा पूरा जीवन आगे से खराब होते रहेगा। तो एक बहुत, हम लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और काफ़ी फ़ख्र है कि उसमें एक श्लोक ऐसा आता है कि शरीर रोजानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर आपको शुगर हो गया, मतलब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गई, तो हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या करते हैं कि सबसे पहले शोधन करते हैं, पंचकर्म जिसका शोधन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हम बाहर निकाल दिए। तो वो पंचकर्म के माध्यम से जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना प्रॉपर हो जाता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो गया और हमारे उस शोधन से जो पेनक्रियाज से जो इंसुलिन बनना है वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो ये हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। अब दूसरा चीज जो हम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं निदान परिवर्तन, मतलब जिस वजह से शुगर आपको हुआ है, जैसे अगर आपके खान पान की वजह से शुगर हुआ है तो उसको कंट्रोल करना है, आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रात को लेट नाइट आप सो रहे हैं, सुबह बहुत लेट से जग रहे हैं, आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, अगर इस कारण से हुआ है तो सबसे पहले चिकित्सक आपके कारण को ढूंढते हैं और उस कारण को बंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने है वो कम हो जाता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ऋतु शोधन, कि जब भी वसंत ऋतु जो हम कहते हैं, वसंत ऋतु में अगर जिसको हम सरस्वती पूजा वाले टाइम को फरवरी मार्च वाले को वसंत ऋतु बोलते हैं, उस टाइम पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक वमन लेता है तो ये गारंटी है कि उसको एक साल तक कफ रिलेटेड मतलब शुगर की बीमारी नहीं होगी, मतलब एक साल तक उसका शुगर ऐसे ही कंट्रोल रहेगा अगर वो हर वसंत ऋतु में एक अपना वमन ले लेता है। तो इसको हम लोग ऋतु शोधन बोलते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो कैसे स्वस्थ बना रहे, मतलब अगर हमको शुगर नहीं है और हम चाहते हैं कि हमको शुगर ना हो तो उसके लिए हमको हर वसंत ऋतु में एक वमन लेना चाहिए ताकि हम साल भर तक स्वस्थ रहें। तो ये हमारा प्रयोजन है आयुर्वेद का, ताकि आप बीमार पड़े ही नहीं।
1: जी डॉक्टर साहब, कैसे आज के हमारे युवा साथी अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाएं, एक बढ़िया जीवन हो जिए, काम तो है ही, कहते हैं तनाव तो यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन कैसे इस तनाव को मैनेज करें, कैसे अपनी हम दिनचर्या को व्यवस्थित करें ताकि मधुमेह की बीमारी हम तक आए नहीं।
0: बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है ना कि आज के डेट में लोगों का ना फैट, जो हमारे पंत प्रधान है उन्होंने कहा भी है कि आप अपने खाने में तेल की मात्रा को कम करें ताकि आपका ओबेसिटी कम हो, फैट कम हो, तो ये जो फैट जो है वो बहुत बड़ा कारण है शुगर का। तो अगर आप फैट पे कंट्रोल करते हैं तो शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। तो उसके लिए हमको ये देखना होता है कि हम रात का खाना बहुत अल्प कर लें, एकदम कम कर लें, ना के बराबर खाएं, दोपहर में हम कोशिश करें कि हम ना सोएं, दोपहर में वर्किंग रहें, काम करते रहें, दोपहर का सोने का काम कम करें आप। पानी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी अगर आप डायबिटिक वाटर के फॉर्म में लेते हैं तो आपको शुगर होना ही नहीं है। तो करना क्या है कि जो शुगर होता है वो हमारे बॉडी में मीठापन, तो मीठा को कौन कम करता है, तो जो तिक्त रस वाली चीज़ें हैं, तो जैसे अगर आप हम घर में जो सूंठ हमारा होता है या हमारा घर में जो मुस्ता होता है, तो अगर आप मुस्ता सिद्ध जल या सूंठ सिद्ध जल बनाते हैं, मतलब करना क्या है कि एक लीटर पानी लेना है, उसमें थोड़ा सूंठ डालना है, उसको उबाल के छान लेना है, तो ये हमारा जो पानी हो गया ना वो तिक्त हो गया। तो ये जब पानी हम इसको पियेंगे तो हमारे अंदर के जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको वो ऐसे ही कम कर देगा। तो हम अपने लाइफ स्टाइल में अगर डायबिटिक वाटर को यूज़ करते हैं तो ये आपके शुगर को काफ़ी हद तक मेंटेन करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको सुबह जो है वो अच्छा डाइट लेना होता है, दो और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आप जितना पसीना बहाएंगे अपने बॉडी से एक्सरसाइज करके उतना शुगर का लेवल कंट्रोल रहेगा और आपको मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। खान पान में ऐसा कोशिश करना है कि जो हमारा रॉ फूड है, जैसे हमको प्रिजर्वेटिव फूड, जंक फूड और जितने भी फ्रीज्ड आइटम है इसको हम अवॉइड करना चाहिए, हमको फ्रेश कुक फूड करना चाहिए। और एक हम लोगों का एक

0: अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके लिए कि अगर आप जो धान जो आप रोटी बनाते हैं या फिर जिससे आप घर में, तो उसको जब पिसवाते हैं तो आप उसको पहले फ्राई कर लीजिए। तो जब आप पहले फ्राई कर लेते हैं ना, तो उसका जो शुगर का लेवल होता है वो पहले ही खत्म हो जाता है फ्राई करने से। और उसके बाद अगर आप घर में उसको पिसवा के उसकी रोटी को खाते हैं तो उसका शुगर लेवल कम हो गया। जो चावल हम लोग लेते हैं तो वो अनपॉलिश्ड राइस अगर आप खाते हैं और उसको भी अगर हम लोग कुकर में ना बना के ऐसे बनाए ताकि उसका जो स्टार्च है वो अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो वैसे भी आपको शुगर नहीं बढ़ना। तो हम अपने खान पान में ऐसी चीजों का उपयोग करें जिससे शुगर ना बढ़े। तो मीठे चीजों को अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि जो हम रोटी जो खाते हैं तो उसको पिसवाने से पहले उसको थोड़ा फ्राई कर लें और फिर उसकी बनी हुई रोटी खाएं, तो आपको फिर शुगर के चांसेस कम हो जाए।
1: जी, नियमित दिनचर्या आप नहीं रखें, खान पान में थोड़ा सा परहेज करें और जैसा आपने बताया सुबह का खाना हम राजा की तरह खाएं और रात का खाना रंग की तरह हम खाते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। और कहा भी जाता है कि आज के युवा देश के भावी कर्णधार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषि, आयुर्वेद चिकित्सक, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, रोज की बात ही, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे। जोहार, नमस्कार।
2: युवाओं में बढ़ती मधुमेह की बीमारी और सावधानियां, अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर ऋषि और भेंटकर्ता संजय कुमार लाल। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुबह सुरीली। पहले संदेश।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
2: पहली भेंट फिल्म बैजू बावरा से। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्द हैं शकील बदावीनी की।

Thank you.

0: एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-97 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: गीत और संगीत रविंद्र जैन के, आवाज हेमलता की। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

अब फिल्म का नाम है फकीरा, आवाज लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन की।

इसी के साथ ही अब आज का सुबह सुरीली प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम कानून की बात। भेंटवार्ता का विषय है मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम और TLC की भूमिका। भेंट वार्ताकार हैं श्री कौशल कुमार, अधिवक्ता और मीडिएटर जालसा। भेंटकर्ता हैं संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की ही।

मित्रों नमस्कार जोहार। मित्रों जब आप कोई वाहन चलाते हैं और दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है और इसमें जान माल दोनों की क्षति होती है, आप घायल हो जाते हैं, दुर्घटना के कारण बहुत सारी उसमें नुकसान हो जाता है और कई बार जो व्यक्ति है कार में सवार होता है, मोटर वाहन में सवार होता है, वो अपंगता का शिकार भी हो जाता है। तो ऐसे में क्षतिपूर्ति भी अदा की जाती है मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि

0: ये मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम क्या है, किस तरह बीमा की राशि क्षतिपूर्ति की राशि का आप क्लेम कर सकते हैं, और जहां दुर्घटना हुई है वहां क्लेम कर सकते हैं या आप जहां रहते हैं वहां क्लेम कर सकते हैं, किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं और किस प्रकार इसके अंतर्गत आप अपना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज कानून की बात कार्यक्रम में आमंत्रित हैं झालसा के एडवोकेट और मीडिएटर श्री कौशल कुमार जी। कौशल जी स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: कौशल जी, जब मोटर वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है तो फिर जो पहला हमारा कर्तव्य बनता है वो क्या है?
1: देखिए, मोटर वाहन दुर्घटना जैसे हो जाती है तो सबसे पहले प्लेस ऑफ ऑकरेंस में, जहाँ घटना हुई है, जिस थाना क्षेत्र में हुई है, उसमें सबसे पहले हम लोगों को FIR करना चाहिए
0: जी।
1: FIR करने के पश्चात वहीं से आपको ट्रीटमेंट मिलता है, वहीं थानादार जो है आपको नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ ले जाते हैं। प्रक्रिया आपको हम आगे बतला रहे हैं। मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजा दावा मुख्यतः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एक्सीडेंट क्लेम टर्मिनल जो हर जिला में है वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें डालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी का भी बहुत अहम रोल है, जो गरीब एवं असहाय पीड़ितों को न्याय तक पहुंचाने में उनकी रूपरेखा रहती है। मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम का मुआवजा मुख्यतः हम लोग जो कानून में प्रावधान है उसमें चार तरीके से हम लोग पाते हैं। पहला है कि धारा 140 के अनुसार नो फॉल्ट लाइबिलिटी, जहाँ पे इसमें किसी भी तरह का साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दुर्घटना के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम मुआवजा के रूप में ट्रिब्यूनल के द्वारा 50,000 रुपया और इंजोर्ड की स्थिति में 25,000 रुपया देने का प्रावधान है। बहुत बार देखा जाता है कि हीट एंड रन के कारण किसी की दुर्घटना हो जाती है और विकलांगता आ जाती है और कई बार मृत्यु भी कारित हो जाती है। वैसे स्थिति में ना तो चालक का पता चलता है ना वाहन के मालिक का। तो अब इसकी अज्ञानता खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा है कि अब इसका मुआवजा हमको कैसे मिलेगा, चूंकि आश्रित उन पे रहते हैं कमाने वाले वगैरह। तो उस स्थिति में भी नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में 5,00,000 रुपया और अस्थाई विकलांगता होने पर 2,50,000 रुपया तक की राशि का निर्धारण आज 25-26 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। राज्य सरकार का एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कंपनसेशन निर्धारित करने के लिए। उसके अनुसार भी धारा 163 में 70 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए नो फॉल्ट लायबिलिटी, जिसमें उनका कोई इनकम नहीं है, वैसे मृत्युकारित व्यक्तियों को भी 5,00,000 रुपया देने का प्रावधान ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाता है। और इसमें लापरवाही को सबूत के तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके पश्चात अगर कंटेस्टेड हैं, बहुत बार पीड़ित हैं, बचपन में ही कोई कारण से बचपन का एक्सीडेंट हो जाता है, कम उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, या आयु कम रहती है जिनके साथ यह दुर्घटना होती है, वो परिवार के सदस्यों के लालन पालन के लिए उन पर अधिक भार या बोझ होता है, वैसे स्थिति में हम लोग धारा 166 के अंतर्गत मुआवजा की राशि के लिए सक्षम ट्रिब्यूनल में हम लोग वाद दाखिल करते हैं और वहाँ पे हम लोगों को लापरवाही को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। उसमें बहुत से प्रोसीजर हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम न्यायालय में मुआवजा प्राप्त करने के लिए अगर आवेदन देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी जैसे हम लोग FIR करते हैं, FIR करने के तत्पश्चात यथासंभव हम लोग तुरंत मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण ट्रिब्यूनल में वाद को दाखिल कर देना चाहिए। धारा 166 जो बोलता है फॉल्ट लायबिलिटी क्लेम पिटीशन, जिसमें सामान्यतः दावा याचिका दाखिल की जाती है, उसमें दुर्घटना, लापरवाही, चोट, मृत्यु, आय की हानि आदि सिद्ध करना आवश्यक होता है। मुआवजा प्राप्त करने की विधित प्रक्रिया में जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें पुलिस एक एक्सीडेंट इनिशिएट रिपोर्ट तैयार करती है, जिसकी एक प्रति डालसा को भी आती है। उस आधार पर सबसे पहले हम लोगों को संबंधित थाना जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां के नज़दीकी थाना को हमको तुरंत एफआईआर करना चाहिए। सबसे पहला काम, चाहे वो एफआईआर कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पीड़ित को ही करना जरूरी है, पीड़ित के आश्रित परिवार के सदस्य भी उस दुर्घटना के बारे में, दुर्घटना की सूचना एफआईआर के माध्यम से थाना को देते हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है और वाहन जब्त किए जाते हैं, मेडिकल के लिए भेजा जाता है उसकी जांच वगैरह के लिए, और किसी भी दावा को प्रस्तुत करने के लिए जो बहुमूल्य पाठ है हमारे पास, जिसकी आवश्यकता पड़ती है, उसमें 5-6 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जहां हमको ट्रिब्यूनल में दाखिल करने पड़ते हैं, जैसे एफआईआर है, चार्जशीट है, सीजर लिस्ट है, इंजुरी रिपोर्ट है, मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा ये जो 5-6 चीज़ें हैं, दिक्कत आती है कि दुर्घटना तो हो गई लेकिन अब हमको मिलेगा कहाँ से, पीड़ित ये चिंतित रहता है। तो इसकी जानकारी आपके मार्फत देना चाहूँगा कि ये सभी पांचों डॉक्यूमेंट जिस थाना परिसर में आपने एफआईआर किया है और गाड़ी वाहन अगर पकड़ाए जा चुके हैं तो वहाँ पे आपको ये हेल्प पुलिस के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, या उस थाना का जो जुरिडिक्शन कोर्ट होता है, क्षेत्राधिकार कोर्ट होता है जहाँ एफआईआर को फॉरवर्ड किया जाता है, वहाँ से भी ये सब डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। उसके अलावा पीड़ित के इनकम सर्टिफिकेट, आश्रित का आधार कार्ड और मृतक की पहचान पत्र की प्रतिलिपि, इंश्योरेंस की पॉलिसी और जिस वाहन से दुर्घटना हुई है उसका आरसी बुक भी प्रस्तुत करना पड़ता है।
0: कौशल जी, मोटर में उस वाहन में जितने भी व्यक्ति सवार होते हैं उन सभी पर ये अधिनियम लागू होता है?
1: हाँ, जो भी उस वाहन से जा रहे हैं
0: जी,
1: और जो इंजर्ड हुए हैं, इंजर्ड का भी एक निर्धारण स्टैंडर्ड फॉर्मूला के तहत है कि जिसको जिस रूप में विकलांगता होती है, 40%, 50%, 60% या मृत्युकारित होती है, उस वाहन में बैठे सभी व्यक्तियों के लिए सभी को मुआवजा की राशि उचित फॉर्म के द्वारा देने का प्रावधान है, उचित प्रक्रिया के द्वारा देने का प्रावधान है।
0: जी कौशल जी, कई एक बार अज्ञानता के कारण, जागरूकता की कमी के कारण लोग ये अधिनियम के अंतर्गत जो मुआवजे की राशि है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या फिर इस मुआवजे की राशि को प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। बीमा जो कंपनियां हैं वो भी बहुत सारी क्लॉज लगाती है और जो पीड़ित है वो परेशान हो जाता है। तो इन सब बातों को वो कहाँ रखें ताकि मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत जो बीमा की राशि है और जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो उसको प्राप्त हो जाए।
1: राज्यों के प्रत्येक जिला में DLSA जिला विधित प्राधिकार सेवाधिकार का कार्यालय कार्यरत है
0: जी,
1: जिनको दुर्घटना होने के पश्चात मुआवजा हम कैसे प्राप्त करें और अगर संबंधित पीड़ित पक्ष को मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है या वो गरीबी रेखा के अंदर आता है, तो ऐसी स्थिति में DLSA मुआवजा क्लेम पिटीशन को फाइल करवाने के लिए एडवोकेट भी देती है,
0: सहयोग करती है,
1: निःशुल्क विधित सहायता देती है और कानून सहायता को प्राप्त करने के लिए महिलाएं, बच्चे, एसटी एससी, दिव्यांगजन और दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको अधिवक्ता भी उपलब्ध कराती है। डीएलएसए उसको अपने लोक अदालत के माध्यम से भी उस मुआवजा की राशि को निपटारा करने की कोशिश करती है, ताकि पीड़ित पक्ष को जो वो एक कोर्ट फीस नियम के तहत जो न्यायालय को देना पड़ता है, जिसका अधिक राशि भी रहती है,
0: उसमें छूट दी जाती है,
1: उसमें वो राशि नहीं देना पड़ता है और वो दी गई राशि पुनः पीड़ित पक्ष उसको वापस मिल जाता है। और दावा क्लेम आप 3-4 जगह कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार।
0: जी,
1: जैसे जहां एक्सीडेंट हुआ है, क्षेत्राधिकार है उस न्यायालय के समक्ष, या आप जहां निवास करते हैं, मान लिया जाए कि हम नागपुर जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, दुर्घटना तो अदर स्टेट में हुई है, या हम जा रहे हैं हजारीबाग रांची से तो वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो आप अदर स्टेट में भी कर सकते हैं, हजारीबाग जहां दुर्घटना हुई है वहां भी कर सकते हैं, या आप रांची के निवासी हैं तो रांची में भी, चाहे वह दुर्घटना कहीं भी हुई हो, आप रांची में भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
0: लेकिन जहां दुर्घटना हुई है उस क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना है, सबसे पहले आपको वहां एफआईआर करना होगा।
1: हाँ जी
0: जी, और वहां से सारे कागजात को लेकर आप जहां भी चाहते हैं, आप जहां निवास करते हैं वहां से अभी सारे कागजात को फाइल कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं
0: जी। क्या कहेंगे कौशल जी कि आप जब वाहन चलाते हैं, जाहिर सी बात है वाहन को संभल कर चलाएं, और दुर्भाग्यवश इस तरह की घटना हो जाती है तो आप सजग होइए, जागरूक होइए और क्षतिपूर्ति की राशि का क्लेम आप अवश्य करें।
1: सबसे पहले तो अपने वाहन को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप एमवी एक्ट के जो प्रावधान है जिसके तहत आपको मुआवजा की राशि मिलती है, और जो उसका एक डायग्राम है, जैसे वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, आरसी अप टू डेट होना चाहिए, और संबंधित वाहन जिससे आप यात्रा कर रहे हैं उसका टैक्स इत्यादि जो एमवी एक्ट के तहत प्रावधान है वो अवश्य अपने कागजात को अपडेट रखना चाहिए, ताकि किसी कारणवश दुर्घटना होती है तो आप समुचित मुआवजा उचित फॉरम के माध्यम से आपको आसानी स्वरूप दिया जा सके।
0: जी, तो मित्रों यदि दुर्भाग्यवश आप मोटर वाहन चला रहे हैं और दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं, क्षति होती है, अपंगता का शिकार भी हो जा रहे हैं, तो इसके लिए भी क्षतिपूर्ति की राशि है और ये क्षतिपूर्ति की राशि ट्रिब्यूनल के द्वारा तय कर दी जाती है।
1: हाँ जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्री कौशल कुमार जी, बड़ी अच्छी आपने बातचीत की मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के बारे में आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम और डीएलएसए की भूमिका, अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे, भेंटवार्ताकार थे श्री कौशल कुमार, अधिवक्ता और मीडिएटर झालसा, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। कानून की बात प्रक्रम अब यहीं समाप्त होता है, यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में और अंग्रेजी में, और उसके बाद प्रादेशिक समाचार।
3: का रूप बदल गया है, जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
5: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
4: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
5: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
4: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
6: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
4: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
7: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। तीन दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
8: With Nepal, we have an expansive agenda.
9: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
8: Partnership that we have with Nepal.
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
11: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
10: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
12: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
13: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीना।
4: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
14: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. and Indian Grandmaster R. Pragyanan's Scripps history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2020.

0: 25-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.
0: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है. भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था.
0: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
2: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
0: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility and encourage sustainable farming practices. A report.
3: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management, and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
0: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time with the wider UN membership, I would not delve any further into this.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal had said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
5: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
0: Russia's President Vladimir Putin has turned down an offer for in-person talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, saying he sees no point in such a meeting for now. Putin delivered the remarks during Russia's flagship economic forum in St. Petersburg yesterday, a day after Zelensky shared an open letter appealing for a face-to-face meeting in which the two leaders could hash out an end to the war. Zelensky responded later, saying Putin's rejection of his proposal showed that the Kremlin had no wish to end the war. U.S. forces have struck Iranian coastal surveillance radar installations near the Strait of Hormuz after shooting down four Iranian drones which targeted regional maritime traffic. The incident marks the latest flashpoint in a three-month-old conflict, further straining already deadlocked peace negotiations between Washington and Tehran. More from our correspondent from Dubai.
6: The strike came as diplomatic efforts between Washington and Tehran remained stalled, with a major sticking point of being Iran's demand for the release of $24 billion in frozen assets held overseas. Iranian officials have reportedly linked progress on any interim agreement to the unfreezing of funds, while the United States is reluctant to give up what it sees as a key source of leverage in these negotiations. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah has rejected a U.S.-brokered ceasefire proposal accepted by Israel and the Lebanese government, insisting that any agreement include a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The group has also released drone footage showing attacks on Israeli forces near the Beaufort Castle, a strategic hilltop fortress captured by Israeli forces during their recent offensive. Iran has reiterated its support for Hezbollah and maintains that Israeli pullout from Lebanon is essential for any broader regional settlement. Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
0: In Kerala, red alert indicating extremely high rainfall is declared in 5 districts till 9th of June. More from our correspondent.
7: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Kerala. 6 districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining 3 districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Kerala. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: Meanwhile, the weather agency predicted a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and sealed the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Kukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
8: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being Financial Year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds to draw funds, prop rupee, government scraps FII capital gains withholding tax on bonds. While the Financial Express reports economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops GoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9. And Indian Grandmaster R. Pragyanand scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
9: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर, रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। सरकार ने जारी की अधिसूचना। रांची में आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष मतदाता शिविर। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। देश में मॉनसून के दस्तक देते ही झारखंड में बदला मौसम। रांची समेत कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और जापान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष टीम। झारखंड के आशीष तनीपूर्ति की शानदार हैट्रिक से सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अपने प्रवास के दौरान वे रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठकों में भाग लेकर आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। झामुमो द्वारा राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद रांची में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी के राजू की मौजूदगी में विधायकों ने आपसी एकजुटता का संकल्प लिया। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि संगठन को गठबंधन को मजबूत रखने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर मतभेद दूर किए जाएंगे।
11: सीएलपी की बैठक, विधायक दल की बैठक हुई है और पहले हमने अपने पार्टी द्वारा चयनित उम्मीदवार का स्वागत किया है और थोड़ी बहुत बात जो गठबंधन में दूरी दिख रही है, हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि गठबंधन दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं उनसे समय लेकर के यह जो आपस की दूरी बढ़ी है, यह दूरी भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा देगा। हम सबको इस दूरी को पाटना चाहिए।
10: इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि पार्टी ने कांग्रेस के साथ हमेशा एक तरफा प्यार निभाया है। उन्होंने दोनों राज्यसभा सीटों पर झामुमो का हक जताते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी।
12: इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे। कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा, आज भी यथास्थित, लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला।
10: रांची में भाजपा विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए प्रत्याशी जल्द घोषित होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के विवाद के बीच भाजपा ने आंकड़ों की कमजोरी के बावजूद अपनी जीत का दावा किया है
13: कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव में जो निर्णय हुआ है कि प्रत्याशी दे रही है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और मुझे लगता है कि आज देर रात या कल सुबह तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हमारे प्रत्याशी घोषणा होते साथ माननीय सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक साथ नॉमिनेशन में उसमें हम लोग करेंगे।
10: झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नई इनाम योजना की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और उत्पादन की सूचना देने वाले आम लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इसके दुष्परिणामों से बचाना और समाज में नशीले पदार्थों की मांग को कम करना है। रांची में नशे के खिलाफ 2 दिवसीय विशेष मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो CIP और रिनपास के विशेषज्ञों ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। विशेषज्ञों ने कहा कि तनाव और सामाजिक समस्याओं के कारण युवा भटक रहे हैं, लेकिन सही काउंसलिंग और उपचार से नशा मुक्ति संभव है। रांची जिला पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों ने नगड़ी क्षेत्र के एक कारोबारी से वर्चुअल कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। ASP अजय आर्यन के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तुपोदाना क्षेत्र से दोनों को धर दबोचा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @xhandle@AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने गुमला में 3 जिलों के जनजातीय मामलों की सुनवाई की। उन्होंने गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा से जुड़े भूमि विवाद और शिक्षा जैसे 16 मामलों की समीक्षा की। बैठक के बाद डॉ. लकड़ा ने बताया कि अधिकारियों को जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
14: अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा गुमला जिला का लगभग 16 के गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिला मिलाकर के लगभग 16 केसों का सुनवाई की है और उसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो प्राय केस जमीन से रिलेटेड थे, एजुकेशन से थे और जाति सब के माध्यम से थे। ऐसे अगर देखा जाए तो जमीन से रिलेटेड थे।
10: रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता के लिए राजनीतिक दलों से सक्रिय भागीदारी और बीएलओ से समन्वय का आग्रह किया। गिरिडीह में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान को लेकर जिला प्रशासन और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जिला उप निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने पीरटांड में बीएलओ के साथ बैठक कर मैपिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए।
15: पीरटांड ब्लॉक में बीएलओ एवं सुपरवाइजर बैठक किया। इस बैठक के दौरान कुछ खामियां पाई गई, साथ ही मैपिंग भी यहाँ पे कमी है। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ 70% कम मैपिंग हुई है, उसको हम हिदायत दिए हैं कि अभिलंब जो आप मैपिंग को बढ़ाएं। साथ ही एनडीकेसी बहुत ज्यादा मिल रहा है, उस संदर्भ में डॉक्यूमेंट कलेक्शन की भी लोगों को बात कही है और बीएलओ इसमें त्वरित रूप से काम करने का निर्देश है।
10: वहीं भाजपा और झामुमो कार्यकर्ता भी मतदाताओं की मैपिंग के लिए अभियान चलाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची में पर्यावरण संरक्षण की धूम रही। झारखंड जैगुआर ने टेंडर ग्राम में आईजी अनूप बिरथरे की अगुवाई में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण दूत बनने का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। मौसम। देश में मॉनसून के आगमन के बाद झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल रांची तथा आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है जो मॉनसून के आगे बढ़ने के अनुकूल है। जापान में अंडर-18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में झारखंड के आशीष तनीपूर्ति ने अंतिम क्वार्टर में शानदार हैट्रिक लगाकर भारत को जीत दिलाई। वहीं महिला टीम पेनाल्टी शूटआउट में चीन से हारकर बाहर हो गई। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में राज्यसभा चुनाव में उत्पन्न सीट विवाद की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्यसभा चुनाव में रार, झामुमो बोला एक तरफा प्यार कब तक, दोनों सीटों पर ठोका दावा। प्रभात खबर के शब्द हैं, नहीं रुक रहा प्रिंस खान की धमकियों का सिलसिला, रांची में दो बड़े कारोबारियों के बाद अब चंद्रगुप्त परियोजना के अधिकारी से मांगी रंगदारी। हिंदुस्तान ने लिखा है, बोकारो के नीलकंठ विश्व बैंक में भारत के ईडी बने। दैनिक जागरण लिखता है, बाइक खरीदवाने की जिद में युवक चढ़ा टावर पर, 4 राज्यों की बिजली रही ठप। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर, रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। रांची में आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष मतदाता शिविर। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। देश में मॉनसून के दस्तक देते ही झारखंड में बदला मौसम। रांची समेत कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और जापान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष टीम। झारखंड के आशीष तनीपूर्ति की शानदार हैट्रिक से सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को

कॉपर और निकल शामिल है, इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।
2: संदेश से पूर्व आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची का, ये केंद्र है मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। अब समय है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग का। आइए सुने कुरमाली लोकगीत विजय महतो और साथियों से। पहले ये गीत

और इसी के साथ ही अब आज का लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर या 549 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन, पहले संदेश।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1 लाख दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल।

0: जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज हम लेकर आए हैं रागनंद में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध हैं। विलंबित रचना के बोल हैं अजहुन आए और द्रुत रचना के सजन अब तो आजा। कलाकार हैं सविता राय, तबले पर साथ दिया है श्यामा नेझा ने, हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती ने। पहले संदेश।

0: एक्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कल्याणी का। कल्याणी में आज चर्चा का विषय है जीवन में सकारात्मक सोच रखें। भेंट वार्ता सर्वाइकल कैंसर, भेंट वार्ताकार डॉक्टर रानू कुमारी, भेंट करता संजीव कुमार लाल। चर्चा होगी अपने बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करें। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, भेंट वार्ता सुनेंगे और साथ ही साथ सदाबहार गानों का भी आनंद लेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हैं ना हमारे साथ इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम का आनंद लेंगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में विचारों का विशेष महत्व होता है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। सकारात्मक सोच जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है। वह व्यक्ति को निराश और भय से दूर रखकर आशा और उत्साह से भर देती है। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा युग में सकारात्मक सोच ही आवश्यकता पहले से कहीं और अधिक हो गई है। वास्तव में सकारात्मक सोच ही सफलता और सुखी जीवन का आधारशिला है। तो आइए, एक खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं, जीवन में सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व और व्यवहार बनता है। सकारात्मक सोच जीवन को नई दिशा देती है और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच को सफलता और सुखी जीवन की कुंजी माना जाता है। साथियों, सकारात्मक सोच का अर्थ है हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम समस्याओं को नज़रअंदाज करें, बल्कि उसका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करें। सकारात्मक व्यक्ति कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। वह निराशा और असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आज के समय में जीवन अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार और समाज से जुड़ी अनेक जिम्मेदारियां व्यक्ति को तनावग्रस्त बना सकती है। ऐसे समय में सकारात्मक सोच मानसिक शक्ति प्रदान करती है। यह तनाव को कम करती है और मन को शांत रखती है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करता है, क्योंकि उसके व्यवहार में विनम्रता, सहयोग और आशावाद झलकता है। साथियों, सकारात्मक सोच सफलता प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। असफलताओं से घबराने के बजाय उन्होंने सफलता की सीढ़ी बनाया। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। मित्रों, सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। प्रतिदिन अच्छे विचार पढ़ना, योग और ध्यान करना, अच्छे लोगों की संगति में रहना तथा अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना सकारात्मकता को बढ़ाता है। साथ ही नकारात्मक बातों और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मित्रों, सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज पर भी पड़ता है। सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करता है और अपने आसपास खुशियों का वातावरण बनाता है। ऐसे लोग समाज में सौहार्द, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हैं। अंततः सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। याद रखें, जहां सकारात्मक सोच होती है वहां सफलता, सुख और संतोष स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। दोस्तों, आजकल के लिविंग स्टाइल, खान पान और शारीरिक व्यायाम में बदलाव के कारण मनुष्य अनेक रोगों से घिरता जा रहा है। यदि हम किसी भी बीमारियों का नज़रअंदाज करते हैं और सही समय पर इसका इलाज नहीं कराते हैं तो यह बीमारी हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही कुछ बीमारियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। यह बीमारी तब होती है जब शरीर की कोशिकाओं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और गुना होते चली जाती है। तो मित्रों, आइए, सर्वाइकल कैंसर बीमारी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है सर्वाइकल कैंसर रोग विशेषज्ञ और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, आजकल के समय में एक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, इससे बहुत सारी महिलाएं ग्रसित हो जा रही हैं। ये सर्वाइकल कैंसर क्यों हो जा रहा है, क्या हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल है, क्या हमारा खान पान है, कौन कौन से तत्व इस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं, और सर्वाइकल कैंसर का सही प्रकार से हमें मालूम पड़ जाए क्या इसके लक्षण हैं, ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और इसका बचाव कैसे करें, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर रानू कुमारी। रानू कुमारी जी, स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: रानू जी, ये सर्वाइकल कैंसर आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये किस तरह की बीमारी है और ये क्यों हो जा रहा है इतना?
2: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय का निचला भाग जो कि योनि से जुड़ा होता है, उसे गर्भाशय ग्रीवा या सर्वाइकल कहा जाता है। इसी भाग में होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में यह एक बहुत आम कैंसर है। दुख की बात यह है कि अधिकांश महिलाएं तब डॉक्टर के पास पहुंचती हैं जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इस कैंसर को समय रहते रोका जा सकता है। यह संक्रमण बहुत सामान्य है और कई बार शरीर खुद ही इसे ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है, जिससे धीरे धीरे कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं में खतरा अधिक इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी शादी अगर कम उम्र में कर दी जाए, या शारीरिक संबंध बार बार गर्भधारण करने की वजह से, या साफ सफाई की कमी से, अगर वो महिलाएं धूम्रपान करती हों, या उनकी इम्यूनिटी या कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता है, या लंबे समय तक HPV इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि इसका मुख्य कारण है उससे ग्रस्त हो।
1: तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं, ताकि हम समय रहते सावधान हो जाएं और इसका इलाज हम शुरू करवा दें, क्योंकि यदि इस तरह की बीमारी को हम इग्नोर करते हैं, लक्षण दिखता है और लक्षण को यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो बीमारी विकराल रूप

0: धारण कर लेगी। और फिर आप जानते ही हैं कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है।
1: शुरुआती अवस्था में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, यही कारण है कि स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। कुछ महिलाओं में ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स के बीच खून आना या संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना या मेनोपॉज जो कि आपकी मानसिक बंद हो गई हो उसके बाद भी कभी कभी ब्लीडिंग दिखना या दुर्गयुत डिस्चार्ज होना या कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ये सारे लक्षण को हम पकड़ के डॉक्टर को अगर हम टेस्ट के लिए बोले तो हम इसे इनिशियल या शुरुआती में ये बीमारी को पकड़ सकते हैं।
0: जी, ये प्रायः किस उम्र की महिलाओं को ज़्यादा घेर लेता है?
1: ये शादीशुदा महिलाएं हैं जिनमें ज़्यादा शारीरिक संबंध या जो सेक्सुअली एक्टिव जो महिलाएं होती हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, जिनकी इम्यूनिटी भी कम हो।
0: तो इसकी जांचें किस प्रकार की जाती हैं और इसका इलाज का तरीका क्या है?
1: खास तौर पे हम इस केस में पैप स्मियर करते हैं। पैप स्मियर क्या होता है कि यह एक बहुत सरल और महत्वपूर्ण जांच है। इसमें जो हमारी सर्विक्स का जो पार्ट है, जो निचला हिस्सा है हमारे, उससे हल्के से कुछ सेल्स लिए जाते हैं और माइक्रोस्कोप के से हम उसे जांच करते हैं कि कहीं कोई असामान्य बदलाव तो नहीं है उस सेल्स में। यह जांच बहुत कम समय में ही हो जाता है और सामान्य दर्द रहित होता है। अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैंसर बनने से पहले ही बीमारी पकड़ी जा सकती है। इसे हम यूजुअली सामान्यतः हम 21 वर्ष की उम्र के बाद या शादी के कुछ वर्षों बाद महिलाओं की स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर 3 से 5 साल के बीच अंतराल ये जांच करनी चाहिए।
0: कुछ अंतराल पर हर महिलाओं को अपनी ये जांचें करवा लेनी चाहिए ताकि सतर्कता ही सबसे बड़ा इसका इलाज
1: जी।
0: है जी, कम खर्चों में जांचें हो जाती
1: हैं। कम खर्च में ये जांच हो जाती है और इसमें आपको एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये टेस्ट हो जाते हैं, तो इसमें ऐसे कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं है।
0: यदि आरंभ में लक्षण दिख जाते हैं और जांचों में ये लग जाता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो इलाज में सुगमता आती है, इलाज में त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है।
1: जी, जब हम एज ए पैथोलॉजिस्ट हम जब ये सेल्स देखते हैं कि हाँ अगर किसी महिला के सेल्स में अगर कैंसर होने की संभावना है, अगर हमें वो पता चल रहा है तो हम उसे रिपोर्टिंग के तौर पे हम विशेषज्ञ के थ्रू हम उनको भेजते हैं जिससे कि वो पता करते हैं कि हाँ इसमें कैंसर होना कितना इनमें बढ़ चुका है या फिर ये कैंसर इनमें है या नहीं है,
0: उसी तरीके से फिर इलाज शुरू
1: किया जाता है।
0: जी मैडम, ये बीमारी से बचाव के लिए टीका भी लोग लगाते हैं और भारत सरकार की ओर से भी टीकाकरण अभियान चलाया गया है सर्वाइकल कैंसर की बीमारी को रोकने के लिए, तो ये कौन सा टीका लगाया जाता है और क्या सभी उम्र की महिलाएं टीका लगा सकती हैं?
1: हमारे सरकार ने यूजुअली जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिससे मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर होता है, इसमें 2 ऐसे महत्वपूर्ण टीका हैं जो कि है सर्वारिक्स और गार्डेसिल। सर्वारिक्स जो है वो महिलाओं में ही लगाए जाते हैं जिनमें कि वो 9 साल से 25 साल की उम्र में हम ये टीका लगा सकते हैं और ये टीका 3 डोजेस में अंतराल में लगाए जा सकते हैं। बात करें गार्डेसिल की तो गार्डेसिल में भी 2 टीकों में ये इसके डिविजन है, गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9, जिसमें गार्डासिल 9 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हम ये गार्डासिल टीका लड़कों और लड़कियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्वाइक्स में सिर्फ लड़कियों में ही ये टीका लगाते हैं। गार्डासिल 4 नाम इसलिए हम देते हैं क्योंकि ये कम जो वेरिएंट है, जो वैरायटी है HPV इन्फेक्शन के, उनको पकड़ता है, लेकिन जो गार्डासिल 9 है वो 9 अलग अलग वेरिएंट को गार्डासिल ट्रीट करता है, तो गार्डासिल 9 लगाना मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभदायक होगा।
0: और ये टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क है सरकार की ओर से या कहीं हम अलग से भी लगाते हैं तो उसके लिए भी कुछ खर्च हमें लगते हैं?
1: ये किसी किसी अस्पताल में निःशुल्क होते हैं और किसी किसी अस्पताल में वो थोड़े अपने चार्ज ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल में मेरे ख्याल से ये निःशुल्क ही है
0: जी। और किस उम्र की महिला इसको लगाएंगी?
1: मैंने जैसे बात किया, ये सर्वारिक्स और गार्डासिल 9 साल की लड़कियों से 45 साल की महिलाओं तक में लगाया जा सकता है
0: जी।
1: ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उनकी

0: आदि हुई है तभी उनको देना है। आप 9 साल की उम्र में भी टीका लगा सकते हैं,
1: एक बार ही लगा सकते हैं,
0: एक बार लगाना है, लेकिन उनके डोजेस अंतराल 3-3 ऐसे डोजेस में लगाने होते हैं। जैसे गार्डासिल जो आपके 9 है वो 2 डोज में लगा सकते हैं, एक तो जब आपको पता चलता है और उसके बाद 6 महीने बाद फिर से। और अगर 9 से 14 साल में गार्डासिल का वैक्सीन हमने लगाया है तो हमें दूसरे डोज है 15 से 45 साल में। अगर 9 से 14 साल में आपके वो डोज छूट गई है तो आपको अगर पता चल रहा है कि हमें ये वैक्सीन लेना है तो 15 से 45 साल में हम ले सकते हैं ये वैक्सीन, लेकिन हमें वो जो डोज लगाना है वो 3 डोज में लगाना है। एक तो जब हमें पता चल रहा है कि हाँ आज हमें वैक्सीन लगाना है, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, 3 डोज पे।
1: और ये वैक्सीन जैसा आपने बता रहे हैं 9 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाएं इसको लगा लेती हैं, तो इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, बचा सकती हैं और सेहतमंद रह सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं इस तरह के जो लक्षण दिखते हैं उसको इग्नोर कर जाती हैं, इग्नोर करते जाती हैं और फिर बीमारी बढ़ती जाती है, और महिलाएँ अक्सर घर के कामों में व्यस्त होती हैं और इन बातों को इग्नोर कर जाती हैं। तो क्या कहेंगे हमारी माताओं, बहनों या जो लड़कियां हैं, जो नव युवतियाँ हैं, 9 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
0: हमारे समाज में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे रखती हैं क्योंकि घर और परिवार की जिम्मेदारियों में वो अपनी जांच और इलाज को टालती रहती है। लेकिन याद हमें ये रखना चाहिए कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है, पर हमें समय पर स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पैप स्मियर एक सरल जांच है और सुरक्षित जांच है जिसमें कि पेशेंट को एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है, और कई महिलाएं शर्म या डर से ये टेस्ट नहीं करवाती हैं। बट मुझे ये बोलना है कि आप इसमें इससे डरिए मत, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें।
1: तो यदि आप जागरूक होते हैं, सजग होते हैं और इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो आप देर नहीं कीजिए, तुरंत पैप स्मेयर टेस्ट है आप करवा लें, और ये हर जगह उपलब्ध है, और बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक अपने आगे की भविष्य की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानू कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और सर्वाइकल कैंसर और उसके बचाव पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, रोज की बात ही, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों और परिवार का भी ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो, नमस्कार।
2: दोस्तों जीवन शैली में बड़ी परिवर्तन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर लेकिन काफ़ी हद तक रोके जाने वाली बीमारी है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सहज रहना चाहिए और किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा सा संगीत का रंग देते हुए आइए सुनते हैं एक सदाबहार गाना।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्यामत से क्यामत तक का यह गीत, जिसे गाया था उदित नारायण और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। दोस्तों, यह गीत सुनने के बाद आशा करते हैं कि यह गीत आपको खूब पसंद आया होगा। दोस्तों, जीवन में बिताया हुआ कुछ यादगार पल हमेशा ज़हन में स्मरण में रहता है, इसलिए हमें अपने दैनिक जीवनचर्या से कुछ समय निकालकर घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों के साथ हमेशा समय व्यतीत करना चाहिए। और आइए एक और खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करें। मित्रों, बच्चे किसी भी परिवार की सबसे अनमोल धरोहर होते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान पूरे घर में खुशियां बिखेर देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय

नहीं दे पाते, लेकिन बच्चों के साथ बिताया गया समय उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के साथ अच्छे और यादगार पल अवश्य व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, बच्चे की महंगे खिलौने या सुविधाओं से अधिक अपने माता पिता का प्यार और समय चाहिए होता है। जब माता पिता बच्चों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तब बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वह स्वयं को सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के साथ अच्छे पल बिताने के अनेक तरीके हैं। माता पिता उनके साथ खेल सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं, पार्क में घूमने जा सकते हैं या परिवार के साथ भोजन बनाकर उनका आनंद ले सकते हैं। पढ़ाई के समय उनका मार्गदर्शन करना, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहना करना भी बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे क्षण बच्चों के मन में जीवन भर के लिए सुंदर यादें छोड़ जाता है। साथियों, आज मोबाइल फोन, टेलीविजन और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार माता पिता और बच्चों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि माता पिता कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाकर बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताए। इससे परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी समझ बढ़ती है। बच्चों के साथ समय बिताने का एक बड़ा लाभ यह है कि माता पिता उनके स्वभाव, रुचियों और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यदि बच्चों के किसी परेशानी या तनाव में हो तो वह खुलकर अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। इससे बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता है और वो गलत रास्ते पर जाने से भी बचते हैं। दोस्तों, बच्चों के साथ बिताया गया अच्छे पल केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी खुशी और संतोष का स्रोत होता है। यह समय परिवार में प्रेम, विश्वास और अपनापन बढ़ता है। एक खुशहाल परिवार का निर्माण तभी संभव है जब उसके सदस्य एक दूसरे के लिए समय निकालें। दोस्तों, अंत में यह भी कहा जा सकता है कि बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करना हर माता पिता की जिम्मेदारी और आवश्यकता है। धन और सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन बच्चों को में संस्कार, आत्मविश्वास और स्नेह केवल परिवार से ही मिल सकता है। इसलिए हमें अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर बच्चों के साथ हंसना, खेलना और बातचीत करना चाहिए। यही पल उनके उज्जवल भविष्य और परिवार की खुशहाली की मजबूत नींव बनते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। कल्याणी में चर्चा का विषय था जीवन में सकारात्मक सोच रखें, भेंट वार्ता सर्वाइकल कैंसर। भेंट वार्ता का अर्थी डॉक्टर रानू कुमारी, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल और चर्चा हो रही थी अपने बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करें। प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपके रेडियो दोस्त अमृता की ओर से जोहार नमस्कार। दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है कि सच्चाई और न्याय की राह आसान नहीं होती। जब कोई कमजोर का साथ देता है तो स्वार्थी लोग उसकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अकेले में टूटते हैं, गलत समझे जाने पर रोते भी हैं, लेकिन अगले दिन फिर उसी मुस्कान के साथ दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति दर्द सहकर भी दूसरों को राहत देना है। अंततः जीत सत्य की ही होती है। आज के दौर में छल कपट और दिखावा करने वाले लोग भले ही दौड़ते नजर आए, लेकिन वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मंजिल उसे ही मिलती है जो धीमा, शांत और सहज है। बुराई लेने का साहस हर किसी में नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए विशाल हृदय चाहिए। आज ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए भी खड़े रह सकें, जो नफरत के बीच प्रेम बांट सकें, जो आलोचनाओं के बीच भी अच्छाई का रास्ता ना छोड़ें।

0: আরে নন্দু বাবু আও আও।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। बातें करते हैं मौसम के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में गर्मी से अभी राहत नहीं मिलने वाली। दो दिन बाद राजधानी समेत पूरे राज्य में उमस की गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान है और इससे रात के न्यूनतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। राज्य में शुक्रवार को भी पलामू गढ़वा समेत राज्य के अन्य भागों में गर्मी रही है। और आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सिमडेगा में 10.5 मिलीमीटर बारिश हुई, गुमला में छिटपुट बारिश हुई। और मौसम विभाग के अनुसार यूपी के दक्षिण पूर्व भाग के ऊपर कायम साइक्लोनिकल सर्कुलेशन मौजूद है। तो आप जो है राज्य के आसपास के क्षेत्रों पर सिस्टम के कारण नम हवाओं का मौसम के बदलाव के आसार हैं। इसके बावजूद रांची समेत राज्य में गर्मी बनी रहेगी।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली

0: और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। दोस्तों, अब बातें करते हैं इतिहास के बारे में और बताते हैं कि आज यानी 6 जून को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। आज ही के दिन 1995 में पाकिस्तान में बाल अपराधियों को कोरे मारने अथवा उनकी फांसी की सजा प्रतिबंधित की गई थी। 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था। 2001 में शाही पर गोलियां दीपेंद्र ने ही चलाई थी। प्रत्यक्ष दर्ती रिश्तेदार राजीव शाही का प्रेस में बयान। 2002 में इजरायली सेना ने रामल्ला में फिलिस्तानी नेता यासीर अराफात के मुख्यालय पर हमला किया था। 2004 में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का आज ही के दिन निधन हुआ था। और 2005 में ईरान गैस पाइपलाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान में सहमति हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के नस्ल विरोधी नेता विनी मैडिकजेला मंडेला के कनाडा प्रवेश पर रोक लगी थी आज ही के दिन सन 2007 में। और 2008 में कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा की अगुवाई वाली बीजेपी की पहली सरकार ने विश्वासमत हासिल किया था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जापानी लैब कीबोर्ड ने कार्य करना शुरू किया था आज ही के दिन। तो इतनी सारी जानकारियों के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हम बातें कर रहे थे इतिहास के बारे में, तो आपको बता दें कि आज यानी 6 जून को किन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1891 में मास्ती वेंकटेश अयंगार, जो कि कन्नड़ कहानी के प्रवर्तक और कन्नड़ की संपत्ति के रूप में ख्याति प्राप्त कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक और आलोचक थे, उनका जन्म हुआ था। और 1936 में डी रामनायडू, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, उनका भी जन्म हुआ था। 1939 में गुरुबचन सिंह रंधवा, जो कि भारत के प्रसिद्ध एथलीट थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन 1901 में सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका भी जन्म हुआ था। शौक बहराइची प्रसिद्ध शायर, उनका जन्म आज ही के दिन 6 जून 1884 में हुआ था। और 1829 में ह्यूम ए ओ, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, उनका भी जन्म हुआ था। 1945 में टी सेन का आव, जो कि भारतीय राज्य नागालैंड के वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका भी जन्म हुआ था। 1997 में पशुपति कुमार पारस, जो कि भारतीय राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म हुआ था। 1955 में वेद प्रकाश शर्मा, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आपको बता दें श्रोताओं की 1889 में उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, जो कि भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे, उनका भी

जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1748 में महाराजा अमर सिंह, जो कि पटियाला रियासत के महाराजा थे, उनका भी जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1699 में आलमगीर द्वितीय, जो कि 16वां मुगल बादशाह थे, जिसने 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक राज्य किया था। और आपको बता दें श्रोताओं कि आज ही के दिन यानी 6 जून 1929 में सुनील दत्त जी का भी जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम बालरज दत्त थे। भारतीय फिल्मों के अभिनय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। कुछ पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में सार्थक भूमिका निभाई थी। तो आइए उन पे फिल्माया एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम जोहार रांची यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वर यात्रा के 20 वर्ष पूरे होने पे डॉक्टर निवास चंद्र ठाकुर, जो कि पूर्व कार्यक्रम अधिशासी थे, उनसे मीनाक्षी शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य वाक्य के साथ संस्कृति सूचना संगीत समाचार और जन जागरण को आगे बढ़ाने वाले संस्थान आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का ये शानदार सफर है, जहां हम और आप साक्षात्कारों की श्रृंखला के माध्यम से मिल रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कार्यक्रम अधिशासी से करवा रहे हैं जिन्होंने आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अपने तरीके से संवारने की बहुत अच्छी कोशिश की। लंबे समय तक आकाशवाणी रांची से जुड़े रहे और यहाँ आने वाले आकाशवाणी से जुड़ने वाले हर नए लोगों को बहुत कुछ सिखाने का काम किया है। आप हैं निवास चंद्र ठाकुर जी। तो ठाकुर सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये आप ही का स्टूडियो है जहाँ आपने कई रिकॉर्डिंग की है, जहाँ आपने कई लोगों को सिखाया है, कई लोगों से बातचीत की है, और आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपसे कुछ आपके संस्मरण जानूं, अपने श्रोताओं तक आपकी आवाज़ को पहुंचाऊं। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका।
1: नमस्कार मीनाक्षी, जोहार हमारे प्रिय श्रोताओं को। कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है कि आदमी सोचने लगता है कि क्या होगा भाई, हम अपने घर में आए हैं
0: जी,
1: लेकिन लग रहा है कि आज मेहमान है। और ये सबसे प्यारा घर आकाशवाणी मेरी जिंदगी, बल्कि आत्मा, धड़कन, सब कुछ
0: है जी।
1: और वैसे में मुझे अपने ही घर में मेहमान की तरह इंटरव्यू देना पड़े एक ऐसी टीन एज की लड़की जो उस समय थी और अब एक महिला हो चुकी हैं, मीनाक्षी शर्मा को। तो मुझे लगता है क्या भूलूं, क्या याद करूं, कहीं कुछ छूट तो नहीं जा रहा है। विस्तृत फलक है लगभग 40 वर्षों का
0: बिल्कुल
1: मीनाक्षी।

0: बहुत समय की तो साक्षी आप भी हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: स्वयं मुझे लगता है, पहले मैं बताऊं कि आकाशवाणी मेरे लिए एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र, आकाशवाणी का
1: जी
0: की स्टूडियो मेरा आकर्षण का केंद्र रहा
1: बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही था सर, मेरे लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण
0: और आप सोचिएगा कि कैसे ये लालसा जगी। तो गांव में जब हम लोग
1: था।
0: रहते थे, उस समय भागलपुर जिले का एक गांव था, कदराचक नाम था, तो गांव में रेडियो में पटना केंद्र सुनते थे, जिसमें चौपाल, मुखिया जी और तरह लोग आते थे, और लोहा सिंह
1: हाँ,
0: नाटक
1: बहुत
0: सुनते थे।
1: बहुत ज्यादा
0: तब
1: फेमस
0: से
1: था।
0: एक अजब रोमानियत चीजों में भरी रही कि काश आकाशवाणी में जा पाता।
1: जी
0: फिर कई नाटक किए पटना के रंगमंच पर, और धीरे धीरे इस ओर मेरी यात्रा शुरू हुई।
1: जी
0: और मैंने, ऐसा नहीं था कि आकाशवाणी कोई हारे को हरिनाम था मेरे लिए, तीन नौकरियां मेरी
1: क्या
0: सरकारी
1: बात है।
0: थी,
1: बावजूद इसके जो
0: क्रम सा छोड़
1: आकर्षण
0: छोड़ के
1: आकर्षण जो था आकाशवाणी के प्रति, वो आपको इधर खींच रहा है। तो सर, वो वाकया बताइए कि जब पहली बार आकाशवाणी के लिए आपको एक ऑफर लेटर आपके पास गया होगा और आपकी नियुक्ति यहाँ हुई होगी, वो नियुक्ति पत्र आप तक पहुंचा होगा, वो जो रोमांच था वो कैसा था सर, इसे साझा
0: मीनाक्षी,
1: कीजिए।
0: अद्भुत अद्भुत। आप, मैं जो कहना चाहता था आपने वो बात मुझसे छीन ली।
1: जी
0: सच कहूं तो जैसे ऑल इंडिया कंपटीशन था लिखित परीक्षा
1: जी
0: सहायक संपादक पद के लिए, मैंने भी लिखित परीक्षा दी और आकाशवाणी रांची में इंटरव्यू हुआ।
1: बिल्कुल
0: और उस समय जो निदेशक थे, केंद्र निदेशक SC विश्वास,
1: जी
0: और पूरी पूरा जो बोर्ड होता है बैठा था। इंटरव्यू अच्छा रहा, लेकिन मैं हड़बड़ शुरू से हूँ, तो
1: हाँ
0: अपना फाइल समेटते वक्त मैंने इस तरह से फाइल समेटी कि फाइल का एक हिस्सा पानी का भरे गिलास में लग गया और पूरा पानी लंबे टेबल पर गिरते हुए उधर जो चेयरमैन थे उनके
1: बाहर
0: तरफ
1: तक
0: बह
1: चला
0: गया। मुझे लगा कि
1: गया।
0: मैंने अपने सारे इंटरव्यू पर पानी
1: लेकिन
0: फेर
1: शायद ये
0: दिया।
1: आपकी भावनाओं का प्रवाह था जो पानी के रूप में वहां तक पहुंचा था,
0: सही।
1: और फिर आप जब यहां पर आए सर, क्या आपको याद आता है जो आपने बताया था करीबन 40 वर्षों की जो यात्रा रही आकाशवाणी के साथ, आपने कदम से कदम मिलाए, इसे सजाने में, इसे संवारने में आपने बहुत कुछ किया, और मैं तो गवाह रही हूं जब भी मैं उस प्रशासनिक भवन के कॉरिडोर में पहुंचती थी और निवास चंद ठाकुर सर के ठहाके गूंजते रहते थे, और जब हम आपके कमरे में प्रवेश करते थे तो बहुत आप बड़ी शालीनता के साथ हमें बताते थे कि नहीं, इस तरह से लिखना चाहिए, क्यू शीट ऐसे बननी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए। ये तमाम चीजों को समेटने के बाद कुछ ऐसे लम्हे हो रहे होंगे जो आपको ताउम्र याद रहेंगे, आपके हृदय पटल पर अंकित हो गए होंगे सर, थोड़ा साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के
0: मीनाक्षी,
1: साथ।
0: अनंत लम्हे हैं।
1: जी
0: कुछ आपने जो कहा कि जब आपको मिला
1: जी
0: नियुक्ति पत्र कैसा लगा, सच में अद्भुत
1: बहुत
0: लगा। मैं निश्चिंत था कि मेरा तो होगा नहीं
1: जी
0: क्योंकि पानी वानी गिर गया,
1: गिर
0: लेकिन जब
1: गया
0: खबर गई
1: जी।
0: तो अद्भुत आश्चर्य लगा। उसके बाद बहुत दिनों बाद यहाँ ज्वाइन करने आया, तो ज्वाइनिंग के वक्त एक शपथ दिलाई जाती है
1: जी जी क्या शपथ थी
0: यहाँ। शपथ थी कि
1: उधर।
0: मैं निष्ठापूर्वक जिस संस्थान में हूँ इसके आदर्शों का पालन करूंगा, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो
1: जी
0: सच है मीनाक्षी, आकाशवाणी एक तरह से मेरे लिए स्वर्णिम था, सोने का टुकड़ा था, और
1: बिल्कुल
0: मैं एक कांच की तरह आया था। लेकिन संस्कृत में एक श्लोक है
1: जी
0: कि काचः कांच संसर्गात धत्ते मार्गतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। यदि कांच के सामने अगर सोना
1: सुना
0: रख
1: जाए
0: दिया जाए तो उसकी
1: जी
0: छवि कांच में पड़ती है, तो कांच भी सोने ऐसा चमकने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: मुझे लगा मैं तो कांच
1: क्या
0: था,
1: बात है,
0: और मैं स्वयं को
1: क्या
0: समझने लगा कि मैं आकाशवाणी चूंकि सोना है तो
1: तो
0: इसके
1: अभी
0: बहुत सारे गुण से मैं आप्लावित होने लगा।
1: बिल्कुल
0: मुझको फील होने लगा कि ये गौरव, और इस गौरव कि यात्रा का एक साथी सहचर पथिक मैं भी हूँ और मेरे लिए ये गौरव का क्षण।
1: इतने अच्छे शब्दों में आपने बयां किया है और ये अनुभूति समझ में आती है जब आप गहराई से, हृदय की गहराई से किसी चीज को, किसी लम्हे को जीते हैं, तब जाकर ये शब्द शायद बाहर निकलते हैं जिस तरह से आपने वर्णन किया। ठाकुर सर, बहुत बदलाव, परिवर्तन कहते हैं प्रकृति का नियम है। आकाशवाणी ने भी बहुत सारे परिवर्तन देखे। जब हम स्कूल पे रिकॉर्डिंग

0: किया करते थे, हाथ से घुमा के उसको क्यों किया करते थे, अगर कहीं स्पूल टूट गई तो उसे सेलो टेप लगाना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन के साथ आकाशवाणी भी डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, अब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो जो परिवर्तन का सिलसिला रहा उसे आप कैसे देखते हैं?
1: आपने मीनाक्षी जो चर्चा की वो तकनीकी परिवर्तन है।
0: जी जी
1: तकनीकी परिवर्तन, कार्यक्रम गुणवत्ता परिवर्तन, दोनों
0: अलग
1: दो दो अलग चीजें हैं। लेकिन गुणवत्ता को, प्रसारण की क्वालिटी को अगर तकनीकी सहयोग बेहतरीन मिलता है
0: जी,
1: तो उच्च तो जो स्तर होता है प्रसारण का वो बहुत बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: पहले हम लोगों का दायरा था कुछ ही क्षेत्र में सुन सकते थे, लेकिन मीनाक्षी मैं बताऊं कि 2 साल पहले मुझे यूरोप जाने का सौभाग्य मिला, तो अपनी आदत के अनुसार मैंने स्विट्जरलैंड में भी मोबाइल में ट्यून किया तो आकाशवाणी रांची सुन सका,
0: क्या बात,
1: पेरिस में सुन सका, एम्स्टर्डम में सुन सका, यानी
0: यही
1: ब्रसेल्स में सुन सका। तो तकनीकी की जो
0: वैश्विक स्तर पर हमारी आवाज पहुंच रही है,
1: वैश्विक स्तर पर
0: बिल्कुल,
1: वो केवल डाउनलोड कर लेना होता है प्रसार भारती का और आकाशवाणी का जो जो
0: ऐप है,
1: तो इतनी खुशी होती थी कि इतने दूर जाकर मुझे आकाशवाणी का प्रसारण सुनने का सौभाग्य मिला। इस तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि इस संस्था में रहा, 1981 में ज्वाइन करके 2015 में दूरदर्शन जाकर रिटायर हुआ था
0: जी।
1: लेकिन ये आकाशवाणी कहते हैं ना कि कृष्ण जब चले आए तो गोपियों को उद्धव जी समझाने गए कि अब तो भूल जाओ, कृष्ण तो चले गए द्वारका, तो मैं चला गया था दूरदर्शन, लेकिन गोपी ने कहा उधो तिरछे जुए हैं गड़े, गड़ के तिरछे हो गए, तो आकाशवाणी मेरे दिल में गड़ के तिरछी
0: निकलना नहीं चाह रही थी,
1: निकल सकता ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये। और आपने कहा कि बहुत सारी यादें हैं
0: जी, बिल्कुल
1: कुछ कुछ जो आकाशवाणी के साथ मुझे गौरव मिला, एक दो यादें आप चाहते
0: जरूर जरूर जरूर हमारे श्रोता जरूर सुनना चाहेंगे।
1: मीनाक्षी आपने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की बात तो सुनी होगी, जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया था, तो रांची के क्षेत्र में रामगढ़ आता है जहां फौजी
0: सिख रेजिमेंट,
1: जहां पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट दो है
0: जी।
1: तो एक अवसर था सिख रेजिमेंट का, तो एक कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं वो रिटायर्ड, तो उसमें आए थे लेफ्टिनेंट जनरल जीओसीएनसी स्टर्न जॉन जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, वही लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जिन्होंने साइन किया था पाकिस्तान के नियाजी के साथ। जब कभी फोटो देखिएगा तो एक तरफ अरोड़ा जी बैठे हैं लेफ्टिनेंट जनरल, एक तरफ ए के नियाजी साइन कर रहे हैं पेन से, तो वो आए थे। वो
0: उन शख्सियतों को यहाँ हमने आमंत्रित,
1: यहाँ आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मैं रामगढ़
0: गए
1: और मुझे गौरव है कि मैंने उनसे हाथ मिलाया।
0: क्या बात है।
1: और
0: अविस्मरणीय पल है सर ये तो, ना जो कभी नहीं भूले जा सकते।
1: और कहा कि मैं धन्य हो गया कि इसी हाथ से पाकिस्तान आपने सरेंडर लिया था पाकिस्तान का, तो एक गौरव का वो था। फिर एक गौरव का और दूसरा क्षण बताता हूँ, जब मैं आकाशवाणी जमशेदपुर गया था, चूंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष हैं इसलिए जमशेदपुर भी चले,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वहाँ एक जगह आए थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान।
0: क्या बात है।
1: तो मैं गया, सोचा कि उनसे इंटरव्यू लूँ, प्रणाम किया, वो कई लोग बैठे थे, उनसे कहा कि देखिए उस्ताद साहब, मैं आकाशवाणी से आया हूँ, चाह रहा हूँ कि आप कुछ बोलिए। कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा।
0: अरे
1: मैंने कहा इंटरव्यू लेना है, कुछ नहीं दूंगा। कि बाप रे बाप, अब सब हंस रहे हैं चारों तरफ। तो मैंने कहा कि देखिए हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होगी, तो मैं क्या करूं, गौरव की बात होगी तो मैंने
0: क्या, वजह क्या थी सर?
1: वही मैंने कहा कि फिर आप से तो आकाशवाणी की सुबह की शुरुआत होती है, जब आपने शुरू से आकाशवाणी को दिया, कुछ तो बोलिए। नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मैंने कहा देखिए मैं तो लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता हूँ।
0: अगर आपकी रजामंदी हो तो आपकी कुछ
1: नहीं,
0: बातें।
1: मैं जानना चाहता था कि आकाशवाणी सुख की धुन है, और सुनते हैं जब हृदय में दर्द का सागर लहराता है तो मिठास फूटती है, सुख का दरिया प्रवाहित
0: होता है
1: तो जरूर हृदय में आपके कोई दुख का समंदर जरूर लहरा रहा होगा, जिससे कि ये मधुर धुन फूटी हुई कह रही। सही कह रही हो, सही
0: क्या बात है।
1: सही
0: मतलब आपने जो आदमी पूरी तरह से कह रहे थे कि मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा आकाशवाणी को, और आपके आकाशवाणी शायद यही ऊंचाई देता है, विचारों को ऊंचाई देता है कि हम अगले से किस तरह से बात कर लें, उनके हृदय की बातों को कैसे श्रोताओं तक पहुंचा।
1: मेरे साथ थे अजय कुमार राय, उस समय ट्रैक्स थे आकाशवाणी, मैंने कहा इशारा किया
0: रिकॉर्डिंग
1: शुरू की, उसके बाद का सच कह रहे हो, वो करबला का मैदान, प्यासे सब लोग मर रहे हैं, मैं रो रहा हूं। और जानते हो मेरा नाम बिस्मिल्ला है, कैसे पढ़ा बिस्मिल्ला कहूं, मैंने कहा कुछ है, मैं क्या बोलता मैं कह जी तो डुमराओं में जब मेरी अम्मी जान को दर्द हुआ था ऊपर, उसके बाद कुछ देर के बाद वहां मेरा जन्म हुआ होगा, तो वहां से जो जन्म दिलाने वाली थी धाई, उन्होंने दूर मेरे अब्बू को कहा कि आपको लड़का हुआ है, तो अब्बू बोले बिस्मिल्ला, मेरा नाम बिस्मिल्ला हो गया।
0: क्या बात,
1: उसके
0: है?
1: बाद जो इंटरव्यू हुआ मीनाक्षी, मैं क्या बताऊं,
0: बिल्कुल तो कुछ शब्द नहीं है शायद, इन क्षणों को बयां करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम ऐसे लम्हों को आकाशवाणी के माध्यम से जीते हैं। सर हमेशा से अब जब युवा पीढ़ी आ रही है, बहुत सारे प्राइवेट प्रसारण के बहुत सारे केंद्र खुल गए हैं, तब आकाशवाणी के सामने एक सवाल होता है, इसकी निष्पक्षता बनी रहे, इसकी विश्वसनीयता बनी रहे, और जो लगाव आप लोगों का रहा आकाशवाणी से या हमारा रहा आकाशवाणी से, वो लोगों के बीच जो प्रतिष्ठा रही, क्योंकि जब आती थी आकाशवाणी के प्रवेश द्वार पर, जब भी मैं गेट पे आती थी तो एक अलग रोमांच होता था, अलग अपने आप में गर्व अनुभव होता था, कह रहे आज तो आकाशवाणी जाना है, तो सर ये महत्ता बनी रहे इसके लिए क्या करना होगा हमें, और अभी आप आकाशवाणी को 90 वर्षों की जो शानदार सी यात्रा का हम उत्सव मना रहे हैं, वहां आप आकाशवाणी को कहां खड़ा हुआ देखते हैं?
1: मीनाक्षी, ये जो प्रश्न है ना, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसका उत्तर यही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले यहाँ के जो यहाँ कर्मचारी नहीं होते थे, सब सहभागी
0: होते,
1: सब कलाकार होते थे, तकनीशियन भी यहाँ के कलाकार होते थे, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, इंजीनियरिंग लोगों ने भी, और दोनों मिल के ये दुनिया चलती थी
0: जी।
1: लेकिन कहूं मन से बहुत लोग हार गए, यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रसारक हैं
0: जी,
1: वो लगता है मन से सारे लोग नहीं हारे होंगे,
0: कुछ
1: एक दो लोग हैं
0: कुछ
1: जो इस तूफान में भी एक दिए को जला कर रखे।
0: बिल्कुल,
1: ये दिया जलाना बहुत जरूरी, अंदर का दीप,
0: बिल्कुल
1: अथ दीपो बेहर अथ, हाँ। अंदर अंतर
0: अपने,
1: दीप,
0: अपने अंतर का दीप,
1: अंतर दीप। हमको लगता है कि प्रतिभाशाली लोग हैं
0: जी,
1: उनका चुनाव होता है
0: जी,
1: सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन कहीं चारों तरफ की चकाचौंध देख के उनको लग रहा है ये रास्ता अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है,
0: दुविधा की स्थिति में।
1: जब आप आकाशवाणी जाइएगा दिल्ली, तो वहां बापू महात्मा गांधी का एक विचार लिखा है कि अपनी खिड़कियों को खुली रखने दो, चारों तरफ से ताजा हवाओं को आने दो, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे पैर उखड़ जाए और तुम बह जाओ।
0: क्या बात है,
1: सोचना होगा कि हम बह तो नहीं रहे हैं।
0: अपनी जड़ों से हमें जुड़े रहना पड़ेगा आकाशवाणी का के प्रति जो स्नेह है, जो सम्मान है, उसे हमें
1: शुरू में ही, मीनाक्षी आपने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो मेरा हित, हमारा हित, देश का हित, राष्ट्र का हित, जन जन का हित
0: होना चाहिए,
1: बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के प्रोग्राम हम करते हैं सबका हित, केवल चंद फिल्मी गाने तो नहीं है,
0: बिल्कुल नहीं,
1: अभी जो मैं किन्हीं की आलोचना नहीं करता, बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं उनको सुनिए, वो जो बोलने वाली हैं क्या बोल रही हैं कुछ पता नहीं
0: जी।
1: मैं बाजार गया था तो भिंडी महंगी थी, सहजन महंगा थी, तो सुनिए फिल्म बाजार का ये गीत,
0: आकाशवाणी की जो गरिमा है,
1: मैंने तो वो लोग जो बोलते हैं कोई तालमेल नहीं,
0: बिल्कुल
1: कोई उनको बताने वाला नहीं, न वो जानने को तैयार, बस फास्ट फास्ट, और आप कोई भी चैनल सुन लीजिए, 8 गाना रख लीजिए फिल्मी, वही दिन भर 24 घंटे
0: चलता रहेगा। बिल्कुल ठाकुर सर, जब आपने सिखाने की बात कही तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगी कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी और मैंने गेट पे दरबान से बोला कि मुझे अनाउंसर बनना है, तो एक बार वो भी मुस्कुराया और उसने मुझे आपका पता दे दिया कि आप इस कमरे में चले जाइए, निवास चंद्र ठाकुर हैं, उनसे मिल लीजिए। जब मैं आपके पास गई और मैंने बोला कि सर मुझे अनाउंसर बनना है, तो शायद आपके चेहरे पर भी थोड़ी एक मुस्कान आई थी, लेकिन उसके बाद आपने बैठा के बहुत अच्छे से बताया कि हमें सीढ़ियों पे चढ़ के आगे मंजिल तक जाना होगा, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, और फिर आपने सिखाया और वही तरीका मैं आज भी अपनाती हूँ कि कैसे क्यू शीट बनानी है। जब हम स्क्रिप्ट लिखा करते थे और हमें पता होता था कि सामने जब निवास चंद्र ठाकुर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में है तो स्क्रिप्ट आप तक देने में हमारे हाथ कांपते थे कि पता नहीं कहाँ गलती हो जाए, तो ये जो आपका सिखाने का तरीका था वो चीज़ें शायद आकाशवाणी को, इसके प्रसारण को बहुत ऊंचाइयाँ देती हैं, तो उस चीज की जरूरत मुझे लगता है आज भी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर?
1: मीनाक्षी, हमारा सौभाग्य होता आपको अगर देखता मैं कि आकाशवाणी के अनाउंसर के बाद आप निदेशक और बहुत बड़ी प्रसारक
0: सर, ये बहुत बड़ी बात आप
1: लेकिन
0: कह रहे हैं।
1: लेकिन तो भी आप आकाशवाणी से जुड़ी हैं, दूरदर्शन से जुड़ी हैं। आप तो शायद प्लस टू में पढ़ती थी जब आप आई थी, छोटी किशोरी थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उस समय जब कुछ मैंने शायद आपको लिखने दिया और आपने जो लिखा तो सच में उसी सर, वो मेरा जो पहला भाव था वही आपसे जुड़ा।
0: सर वो पहला टॉपिक भी मुझे याद है, अगर कलम नहीं होती,
1: अगर कलम जो भी लिखा था, जो भी आपने लिखा मन को छू गया, दिल को छू गया, मुझे लगा अरे मेरा ही कोई प्रतिरूप, मैं जैसा लिखना चाहता हूँ।
0: इतनी बड़ी बात,
1: ये एक छोटी लड़की ये कैसे कर रही है? तो वो जो सम्मान था, वो जो प्यार था
0: जी,
1: वो उस लंबे सफर के बाद भी आज भी है।
0: सर उसने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे उस दौर में आने वाले जो भी युवाणी में थे या किसी भी सेक्शन में आने वाले, सबको बहुत कुछ उस दौर ने सिखाया है और वो सीख शायद अब कम पड़ती जा रही है जैसा मैं महसूस करती
1: हूँ। मीनाक्षी, जब पहले युवाणी आकाशवाणी रांची में साप्ताहिक कार्यक्रम था, जिस दिन से ये दैनिक हुआ मुझे उसमें दे दिया गया।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर ए रहमान थे, मैं था, तो उस युववाणी से जुड़ गया और उसी प्रथम पहले दिन से युवाओं से मेरा परिचय होने लगा। मीनाक्षी शर्मा, प्रियदर्शन
0: जी,
1: और बताओ मीनाक्षी, कई तो हुए जो IFS IAS हो गए और कहीं कहीं वो मिले और उसी तरह से लगता था पैर छू लेंगे मेरे। मैंने कहा भाई आप बहुत बड़े, मेरे
0: वो सम्मान कभी कम नहीं हो सकता,
1: मेरे ही विभाग में यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक तिवारी नाम बोल रहे हैं वो संयुक्त सचिव हो के, और उनको मैंने कुछ सिखाया होगा, कुछ याद नहीं।
0: बहुत
1: वो कहने लगे सर, हम क्या आप सर बोल रहे हैं, आप तो हमारे 10 पीढ़ी ऊपर हैं पोस्ट में, तो कहा
0: सर गुरु हमेशा,
1: इसीलिए
0: हमेशा गुरु क्या बोले ऊपर होता
1: तो
0: है।
1: उस समय मेरा ध्यान रहता था कि भाषा गपशप की हो
0: जी,
1: सुंदर हो, आकर्षक हो। मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन वो जो आ रहा है उसकी आवाज स्वीट हो और स्वीट में भी उसको एक प्रवाह ला दे, ऐसा प्रवाह ला दे कि सामने वाला जो बैठा है बंध जाए,
0: सबको जीवंत हो जाए,
1: बंध जाए। उसको ये नहीं लगे कि कोई किताब लेके पढ़ रहा है
0: कि
1: 1857 में ये युद्ध हुआ, उसके बाद ये हुआ वो, पर ये आकाशवाणी नहीं है, आकाशवाणी में क्लिष्ट भाषा
0: नहीं
1: है, इसमें बहुत सरल, बहुत प्रवाहमान,
0: बिल्कुल हवाओं की तरह प्रवाह,
1: हवाओं की तरह है ना, रिमझिम
0: बारिश की तरह,
1: माटी की सुगंध की तरह,
0: क्या बात है। कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रकृति से, अपनी धरती से जुड़े रहना, अपनी आत्मा से जुड़े रहना है, तब आकाशवाणी के प्रसारण को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सर इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी यादें हैं कि उन्हें शायद ये आधे घंटे का जो हमें स्लॉट मिला है उसमें समेटना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, और मेरे हृदय में तो इतनी बातें हैं कि मैं शायद उसका एक चौथाई भी आपसे बात नहीं कर पा।
1: फिर भी मीनाक्षी एक दो बात और कहीं कहीं गया था। देखिए एक इंटरव्यू और बाल कवि वैरागी आए थे संसदीय समिति में, मैं और यही थे मधुकर पांडे,
0: हाँ जी,
1: तो गए थे इंटरव्यू लेने, वो भी वे कवि और सांसद, लोग कहीं क्या लेंगे, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव से कुछ पूछा था डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी से कैसे इंटरव्यू लें, सोचिए इस उस उम्र में भी मैं किन्हीं से पूछता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जब उनसे पूछा, उनके दिल की बात कही, तो वो भी रोने लगे थे। मधुकर पांडे अब रिटायर्ड हो गए हैं, आकाश पांडे वो गवाह हैं, रोने लगे।

0: आंसू पोछते हुए उन्होंने हिंदी की दशा, हिंदी की चर्चा संसद में किस तरह से भास हुई।
1: बिल्कुल वैसे ही जब मैं आज आपसे बात कर रही हूँ ना ठाकुर सर, तो वैसे ही भाव मुझे आपके चेहरे पर भी नजर आ रहे हैं। वो सम्मान आकाशवाणी के प्रति, वो सम्मान आकाशवाणी के, वो प्रेम आकाशवाणी के प्रति, सब कुछ मुझे आपकी बातों में नजर आ रहा है। तो जब हम आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, इस समय आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिन्होंने अपनी यादों को ताजा किया होगा अपने जहन में, अपनी बातों को ताजा किया होगा, उनको आप क्या कहना चाहते हैं आकाशवाणी के बारे में या आकाशवाणी से जुड़े रहने के बारे में?
0: देखिए क्या कहें, पहले तो समय एक साथ चलता है समग्र रूप में। आकाशवाणी आइसोलेट होके, अलग होके रहना मुश्किल है
1: जी।
0: समाज का एक स्तर होता है, उस स्तर को मेंटेन करता है, आगे बढ़ाता है। हम तो अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे
1: जी
0: कि आप बहुत हड़बड़ी है, सही है, आपको तुरंत चाहते हैं चैनल बदलने हैं, तुरंत चाहते हैं, लेकिन दवाई जो होती है कभी कभी कड़वी भी होती है,
1: पीनी
0: पड़ती है, लेकिन असर होता है कि आप स्वस्थ होते
1: हैं। हो जाते हैं।
0: तो आकाशवाणी का प्रसारण आपको मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: आपको क्षण भर के लिए फिल्मी दो चार सुन के फिर तुरंत बक बक बक बक, बक फिर तुरंत ये फिर फास्ट, वो नहीं है। जिंदगी केवल अल्लड़ नदी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: एक प्रवाह है, लंबी राह तक वो प्रवाह कल कल छल छल प्रवाहित है। तो थोड़ी स्थिरता अगर जीवन में चाहिए, थोड़ी उन्नति चाहिए, थोड़ी गहराई चाहिए,
1: क्या बात,
0: तो थोड़ा सा रुकिए।
1: हाँ,
0: आकाशवाणी का चाहे विविध भारती हो वो सुनिए, आकाशवाणी का मुख्य जो चैनल है उसको सुनिए, हमारे बेहतरीन नाटक सुनिए, अगर थोड़ा सा धैर्य लाइए। अगर आज हम चाहें कि धान रोपें और आज ही काट लें, वो नहीं है
1: जी।
0: वो आप कहीं प्लास्टिक का फूल में एक दिन सुगंध उड़ा सकते हैं, प्लास्टिक लाइए उसमें फूल खोसिए, इत्र परफ्यूम मार दीजिए और सूंघ लीजिए। गुलाब को सूंघने के लिए आकाशवाणी गुलाब,
1: थोड़ा इंतजार करना
0: वो होगा। माली मेहनत कर रहा है, यहाँ के जितने लोग हैं माली हैं, सारे प्रसारक चाहे परमानेंट हों, आकस्मिक हों, अवैतनिक हों, वैतनिक हों, सारे माली हैं, सब गुलशन को सजाए हुए हैं, उनकी खुशबू का अगर आनंद लेना शुरू कीजिएगा ना, छाया गीत सुनिए ना, आप सारा कुछ भूल जाएंगे,
1: एकदम दिल की गहराई तक उतर जाते हैं।
0: लेकिन
1: और वो जो अनाउंसमेंट होता है उसके साथ जो बातें होती हैं, वो लगता है कि कोई एकदम सचमुच दिल से कुछ
0: दिल से
1: कह रहा है। तो ये लगाव बहुत जरूरी है।
0: देखिए यहाँ तो एक से एक कार्यक्रम हुए ना,
1: जी जी,
0: आकाशवाणी की स्थापना 1957 में हुई, 25 वर्ष पर हम लोगों ने रजत यात्रा कार्यक्रम स्मृति सुरभि की थी, सारे कवि लोग, बड़े वरिष्ठ कवि लोग आए थे
1: जी।
0: और इस क्षेत्र में सारे बड़े कवि आते हैं, लोहरदगा में नीरज आए थे, 1 घंटा उनसे मैंने बातचीत की और उनकी कविताओं की रिकॉर्डिंग, क्या अद्भुत लगता है। राधा कृष्ण पुरस्कार रांची एक्सप्रेस से दिया जाता था
1: जी।
0: उसमें मैंने एक बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू लिया, जैनेन्द्र कुमार से और त्रिलोचन, यानी क्या बोले, बहुत सारे, रघुवीर सहाय, सारे बड़े बड़े लोग आए, सब आकाशवाणी स्टूडियो में आते थे, इंटरव्यू देते थे,
1: सबके लिए बहुत गौरव का क्षण होता था।
0: उपेंद्रनाथ राष्ट्र आते थे
1: आकाशवाणी में आना, यहाँ बातें करना, श्रोताओं से बातें करना, बहुत बहुत गरिमा की बात लोग समझते थे। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के हृदय में आज भी ये भाव है और ये बने रहेंगे जब तक आपके जैसे लोगों का, जो आकाशवाणी के लिए जो समर्पित शख्सियतें हैं, उनका समर्पण और उनका प्रेम, उनका लगाव आकाशवाणी के प्रति रहेगा, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तब आकाशवाणी ऐसे ही अपनी यात्रा के कई सुनहले पड़ावों पर आगे बढ़ती रहेगी। तो सर आज आप हमारे बीच आए, बहुत सारे अविस्मरणीय यादों को समेटने की हमने कोशिश की, बहुत सारे लम्हे हमारे साथ आए, बहुत सारे छूट गए, लेकिन जो छूट गए उनको फिर कभी हम अपने श्रोताओं से साझा करेंगे। लेकिन आज हमारे बीच आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभार श्रीनिवास चंद्र ठाकुर सर।
0: धन्यवाद मीनाक्षी शर्मा जी, और हमारे प्रिय श्रोता बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, और आप आकाशवाणी से जुदा मत होइएगा, इसको हृदय में उतारते रहिए। जोहार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर निवास चंद्र ठाकुर पूर्व कार्यक्रम अधिशासी से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

दोस्तों, कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मैंने प्यार किया के इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर की और धुन बनाई है रविंद्र जैन ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, और इस गीत को सुनना चाहा है इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली वल्ला नूरजहां, राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। तो आइए सुनते हैं इन सबों की फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी की, पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और आसमा नाज अंसारी की, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा की, सरीमपुर बक्सर से राज एसटी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी की, और इन सबों ने फरमाइश की है फिल्म राम तेरी गंगा मैली की इस खूबसूरत गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Partia Sena!
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है दोस्तों राजा बाजार भिया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओम नंद केसरी, धनानंद केसरी, विनोद केसरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा, निवान शर्मा। और ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक के इस प्यार से गीत को। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनदीप मंटू, मोनू सोनू आराध्या की, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, और ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पापा कहते हैं कि इस खूबसूरत

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पे संपन्न होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर यह प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

सभी श्रोता सखियों को शिल्पी का प्यार भरा नमस्कार। दिन के 12 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं आपके बीच लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। बहनों, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, तो चलिए निकल पड़ते हैं अपने सुहाने सफर पर अपनी बातों के साथ। बहनों, हम जानते हैं कि आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल बखूबी निभाती हैं, क्योंकि परिवार स्वस्थ और प्रसन्न हो तो हमारी परिवार रूपी बगिया के हर नन्हे फूल भी खिलखिलाते हैं। शायद इसलिए महिलाओं को परिवार की धुरी और सृजनकर्ता भी कहा गया है। हम परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों के पालन पोषण, बुजुर्गों का ख्याल और साथ साथ रिश्तों को भी बखूबी निभाते हैं। सखियों, रिश्ते चाहे परिवार से हो या पर्यावरण से, दोनों से स्वाभाविक प्रेम बढ़ता जाता है। आदिकाल से महिलाएं पर्यावरण से जुड़ी हैं। हमारे यहाँ पीपल, वट वृक्ष, नीम, आंवला, आम पल्लव, बेलपत्र, तुलसी, केला, इन सभी की पूजा होती आई है। और यही कारण है कि महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में पुरुषों से आगे रही हैं। सखियों, पेड़ पौधे ही हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारे आसपास पेड़ पौधे न हों, नदियां की कलकल आवाज सुनाई न दे, हवा शुद्ध न मिले, तो हमारा जीवन खुशहाल होगा नहीं ना? इसलिए आज हमने इस विषय को चुना है और हमने कल पर्यावरण दिवस मनाया है। उम्मीद है कि हमारी जितनी भी सखियां हैं उन्होंने एक एक पेड़ जरूर लगाया होगा। बहनों, हम अपनी जीवन शैली में छोटी छोटी अगर हम बदलाव शुरू कर दें तो निसंदेह आने वाली पीढ़ी भी अपनी सुंदर वसुंधरा का आनंद ले पाएगी। बहनों, कल क्यों, हम आज से ही संकल्प करें कि हम पर्यावरण को नुकसान होने वाली चीजों को नहीं अपनाएंगे, वैसी ही वस्तुओं को जीवन का अंग बनाएंगे जो सबके हित में काम आए। और इसकी शुरुआत हम अपने रसोई घर से कर सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक के सारे बोतल, पॉलीथीन, प्लेट्स आदि से हम अगर दूरी बढ़ा लें। सखियों, बाजार जाते वक्त घर से झोला को लेकर जाएं, चाहे साग सब्जी खरीदनी हो या फल दूध दही। घर की ऊर्जा को बचाएंगे और बेवजह कमरे में पंखा, बल्ब, कूलर को हम नहीं चलाएंगे, तो निश्चित है कि हमारी जो छोटी छोटी बर्बादी है

बच जाएगी। सखियों, पानी की बर्बादी पर भी हम ध्यान दे सकते हैं ताकि हमारे घर का जल व्यर्थ न बहे। घर में अगर गाड़ी है, स्कूटी है, बच्चों की साइकिल है, तो हम बाल्टी में पानी भर करके हम उसे धो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा घर से शुरू करनी होगी। संसाधनों को खूब सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कम दूरी अगर तय करनी हो, आसपास कहीं अगर हम जाएं, तो पैदल या साइकिल की सवारी भी कर सकते हैं। सखियों, गर्मी की छुट्टी हो गई है, इसलिए घर के बच्चों के साथ उनके हाथों पौधारोपण कराना चाहिए। और हाँ, अगर कोई पौधा बच्चों को पसंद है तो आप उसे ही लगवाएं, ताकि बच्चे भी इसी बहाने प्रकृति से प्रेम बढ़ाएंगे। बच्चों को पौधे के महत्व और संरक्षण की जानकारी भी देनी चाहिए। बहनों, बातें छोटी भले लगती हो, पर एक बड़े पेड़ से कितने फायदे हैं और छोटे पेड़ से भी कितने फायदे हैं, इसका महत्व और उपयोगिता हमने देखी। याद है ना, आज से 5 वर्ष पहले जब कोरोना काल था, तब हमने पेड़ पौधे के महत्व को जाना और उसे अपनाकर स्वस्थ भी हुई। इसलिए हमेशा याद रखिए कि यह सुंदर वसुधा केवल हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि साझी जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ियों की अनमोल धरोहर है। इसलिए 3R के सिद्धांत को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बहनों, सादगी भरा जीवन अपनाइए, कचरे का सही प्रबंधन करिए, और हाँ, सबको उपहार में एक पौधा अवश्य दीजिए, ताकि उसकी बगिया जहाँ भी उसे वो लगाए वो भी खिलखिला उठेगी। और भाई, जब खिलखिलाने की बात हो रही है, तो चलिए हम भी नील गगन के तले थोड़ा सा मुस्कुरा लें।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज शनिवार है। शनिवार का दिन होता है साहित्य के रंग में डूबने का। तो चलिए, प्रस्तुत है कहानी, शीर्षक है पुनर्नवा। आलेख एवं वाचन स्वर शिल्पी यानी मैं। आज सुबह की सुनहली किरणें कमरे की खिड़कियों से अंदर झांक रही है। नम्रता अपने कमरे से सटे बालकनी में कुर्सी पर बैठ अपने अहाते में उन पेड़ पौधों को एक टक निहार रही थी। ओह गुलमोहर, पूरा पेड़ लाल फूलों से सजा है। अरे ये कब इतना बड़ा हो गया? हाँ हाँ, याद है मुझे जब मैं पर्यावरण दिवस पर इस नन्हे से पौधे को रोपी थी। फिर नजर घुमाई, देखा अमलतास भी है। अरे इतनी चिलचिलाती धूप की तपिश में खिले खिले निखरे फूल, पीले चमकीले रंग और गुच्छों में नीचे की तरफ लटके लटके फूल आने से पेड़ मानो फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता सा सज गया था। आखिर अमलतास ही तो बरखा रानी के आने का संदेश वाहक बनता है। और इन गुच्छों से लदे फूलों पर मधुमक्खियां तितलियां भी खींची चली आती है।

आज नम्रता अपनी बगिया को ऐसे निहार रही जैसे वो खुद अपने ही घर की मेहमान हो। धीरे धीरे करके उसे शहतूत, सतालू, आम्रपाली आम, लीची सबकी देखने की चाहत पड़ी। अरे, इसे मैंने कभी लगाया था। लेकिन मन ही मन ग्लानि भी थी, क्या मैं अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त रही, कभी पौंका ही नहीं मिला। सच कहूं तो सुबह घड़ी की सुई से भागती फिरती जिंदगी कटी। आज चाय की चुस्कियों के साथ बीते दिनों की कई बातें याद आने लगी। कार्तिक, तुम्हें याद है ना कि कभी हमने ऐसे इत्मीनान से चाय पी हो? नहीं ना? कार्तिक ने भी चुटकी ली। मुझे तो तुम हमेशा एक्सप्रेस लगी। नम्रता ने भी हामी भर दी। सच कार्तिक, जब दोनों कामकाजी हों तो ऐसा ही होता है। मुझे तो याद ही नहीं है कभी चाय ऐसे हम दोनों एक साथ पिए हों, एक दूसरे का लंच पैक करते, बच्चे के लिए खाना बनाकर रखना, फिर उसे फ्रिज में डाल देना, घर की चाबी एक दूसरे को पकड़ाते हुए और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए संभालते संभालते ये गृहस्थी चली। हम चाय पीते नहीं थे कार्तिक, बल्कि कभी कटोरी तो कभी प्लेट में जल्दी जल्दी ठंडी करके घुटक जाते थे, क्योंकि कार्यालय समय से पहुंचना होता था। इसी हंसी ठिठोली में आज एक वादा कार्तिक ने किया नम्रता के साथ।

32 वर्षों की भाग दौड़ भला कैसे भूलती नम्रता। तभी बेटी ने आकर हाथ में एक लिफाफा बढ़ाया, मम्मी यह है आपकी चिट्ठी, कल ही डाकिया दिया। नम्रता ने बड़े उत्साह से पूछा, चिट्ठी? हाँ हाँ, देखिए तो भला। भला आज के जमाने में भी ईमेल इंस्टा के बाद भी आपकी चिट्ठी आती है, और मम्मी पता है वो भी पते हिंदी में लिखे हैं। अरे तो इसमें इतना अचरज क्या है भाई, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। मैं तो आज भी अपने कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में शुरू से हिंदी में ही हस्ताक्षर करती आई हूँ। बेटी ने कहा, तब तो आपकी सखी ही होंगी, कहते हुए बालकनी से निकल गई। नम्रता मन ही मन कही, ये आजकल की लड़कियां भी ना। ओह, पास बैठे कार्तिक सारी बातों के गवाह थे। लिफाफा खोलते ही लिखावट से पहचान गई, देखो जूली का खत है, उसे हमारी रिटायरमेंट याद थी, जरूर इसमें शिकायतों का पुलिंदा होगा। वैसे हो भी क्यों ना, मैं जब से नौकरी ज्वाइन की ना, ना ही सखियों से मिली और ना ही रिश्तेदारों के घर शादी ब्याह के मौके पर गई, कई नाते रिश्ते छूट गए। देखना कार्तिक, यही लिखा होगा जूली ने। ओह नम्रता, इस पर तुम गलत हो सकती हो। कार्तिक बहुत शांत और सुलझे थे, इसलिए तो उनके व्यवहार से नम्रता प्रभावित हुई थी और सहकर्मी संग जीवन संगी बनाने का निर्णय ही मन बना लिया और हर कदम दर कदम दोनों एक दूसरे का साथ निभाया। लेकिन हाँ, बस एक ही ख्वाहिश थी,

गीत बंद होते ही तंद्रा टूटी। जरा लिफाफा तो खोलो, क्या लिखा है इसमें? सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखे थे, सुखमय जीवन की दूसरी पारी की बधाई हो सकी। तुम दोनों के जीवन का यह नया चरण खुशियों से भरा हो। अपने मनचाहे काम करो, स्वस्थ रहो और हाँ व्यस्त रहो, सानंद रहो। और सच कहूँ तो बाय बाय 9 to 5।

हाँ, एक बात याद दिलाऊंगी आज जो तुमसे कभी नहीं कही। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा। 22 नवंबर को गोलू की शादी है। अरे अरे, वही गोलू जिसकी तुम गाल खींचती थी, खूब खेलती थी, याद है ना? जरूर आना, तुम्हारी जूली। बगल की कुर्सी पर बैठे कार्तिक भी सुन रहे थे। उन्होंने नम्रता की हथेली अपने हाथों में पकड़ कर कहा, तुम भी हिंदी में उसके पते पर एक चिट्ठी लिख दो। लेकिन आज कार्तिक की बातों में थोड़ी शरारत थी। अच्छा कार्तिक, देख रहे हो, आज सूरज की पहली किरण घर और मन से दोनों जगमग है। कई सपने हैं दोस्तों के, कितने शिकवे शिकायत भी हैं, जिन्हें अब पूरा करने का वक्त आ गया है।

देखो नम्रता, आज से पहले ऐसी फुर्सत की घड़ी कभी नहीं मिली, इसलिए हम अपने बेटे के पास जाएंगे। वो बहुत दूर रहता है, उसे भी हमारी ज़रूरत है। कार्तिक और नम्रता अगले महीने विदेश चले गए। बेटा, बहू और छोटकू श्रेयस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते मिले। देखते देखते एक दो महीने बहुत अच्छे से गुजरे। उन्होंने कई दोस्तों से भी मिलवाया। भारतीय बच्चों से मिलकर अच्छा लगा और बहुत अच्छा उन लोगों का एक ग्रुप था वहाँ। हर वीकेंड पर मुलाकात होती थी। एक दिन बहू की दोस्त ने पूछा, आंटी आप दोनों रिटायर हैं ना? तब तो हमारी दोस्त को बहुत आराम हो जाएगा, ना खाना बनाने की दिक्कत ना ही बच्चों की चिंता। अरे अरे, हाँ हाँ, आपकी बहू ने बताया कि अब मम्मी संभालेंगी। नम्रता को कई दिनों से एहसास होने लगा था कि बहू बेटे धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां हम पर थोप रहे हैं। उफ, ऐसी बात है। सुनो कार्तिक, अब हम दोनों भारत वापस लौटना चाहते हैं। यह सुन बेटा चौंका, क्यों माँ? आप वहाँ क्या करेंगी? कैसे वक्त कटेगा? और यहाँ श्रेयस को आप देखेंगी तो मैं और टीना काम करेंगे। पापा, आप ही मम्मी को समझाइए कि रिटायरमेंट होता ही है बच्चों को हेल्प करने के लिए। नम्रता के सब्र का बांध टूट चुका था, स्वर में बेरुखी थी। अच्छा, हम और कार्तिक पूरे जीवन मेहनत की तुम्हें यहां तक लाने के लिए, ना घूमी ना फिरी ना रिश्तेदारों के घर गई, जब भी छुट्टी लिया तुम्हारे एग्जाम्स और पढ़ाई के लिए, अपने शौक कभी पूरे नहीं किए बेटा। अब एक नया बंधन? ना ना, मैं नहीं रहूंगी और मैं नहीं

0: चाहते इस बंधन में फंसना, जल्द भारत लौटूंगी और तुम लोगों से प्रभु से एक प्रार्थना करूंगी कि तुम लोग दोनों खुश रहो। नम्रता और कार्तिक अपने देश आकर बहुत खुश हुए। उसने सबसे पहले एक सूची बनाई। दोनों की अपनी अपनी रुचि है, किसी को संगीत सुनना तो नम्रता को किताब पढ़ना। नम्रता अपने कमरे के कोने में एक टेबल और कुर्सी लगाई जहां वो अपनी मनचाही किताबें पढ़ सके। सारे किताबों को झाड़ पोछकर फिर से सजाया मानो घर में भी एक छोटा सा पुस्तकालय हो। अपने ही कॉलोनी में एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली जहां सारे रिटायर साथी इकट्ठा होते थे और देखते देखते इस तरह एक नया परिवार बन गया। जहां साहित्य और संगीत का मिलन हो वहां घना छाया खुद ब खुद मिल जाता है। नम्रता की रचनात्मकता से सभी प्रभावित हुए। एक दिन मिसेस दास आखिर पूछ ही ली, बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ बेफिक्र होकर कहें, रिटायरमेंट के बाद भी आप इतनी खुश रहती हैं, दिन बोझिल नहीं होता? उसकी मन स्थिति को नम्रता ने भांप ली और हंसकर कहा कि अभी तो एक अध्याय पूरा हुआ है, कई सपने हैं, कई आकांक्षाएं हैं, अब वो पूरा करूंगी। सच, मिसेस दास ने कहा कि ऐसी दोस्त पाकर मैं तो धन्य हो गई और जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो बहनों, अभी आपने सुनी गीतों भरी कहानी पुनर्नवा। आलेख एवं वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी शिल्पी की थी, जो आपसे अभी मुखातिब हैं। और इसी वादे के साथ अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आपको बता दूं कि आज कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की और कार्यक्रम के सफर में आपकी सखी शिल्पी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: गृह लक्ष्मी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण। कार्यक्रम में आज वार्ता होगी जलवायु परिवर्तन, चुनौतियां और समाधान। वार्ताकार हैं अलका चंद्रा, प्रस्तुति है सहयोग है अवधेश कुमार की, प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: लीजिए प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। आज इसके अंतर्गत सुनेंगे वार्ता जलवायु परिवर्तन चुनौतियां और समाधान। वार्ताकार हैं अलका चंद्रा।
1: पृथ्वी जीव मंडल का वह भाग है जो कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से मिलकर बना है। पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध होता है। जीव मंडल में पर्यावरण के दो घटक होते हैं, अजैविक और जैविक। आज की हमारी जो शैक्षणिक वार्ता है वह पर्यावरण के अजैविक घटक से संबंधित है। इस शैक्षणिक वार्ता का मुख्य विषय है जलवायु परिवर्तन चुनौतियां एवं समाधान। यह के विषय केवल पर्यावरण से जुड़ा नहीं है बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधा संबंध रखता है। तो आइए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि जलवायु क्या है। जलवायु अर्थात क्लाइमेट किसी स्थान के लंबे समय, लगभग 30 वर्ष या उससे भी अधिक के औसत मौसम की स्थिति को कहते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र में कई वर्षों तक तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की दिशा और गति आदि का जो सामान्य पैटर्न रहता है वही उसकी जलवायु कहलाता है। अब हम जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा के पैटर्न, हवा की गति और मौसम की प्रकृति में दीर्घकालिक परिवर्तन होना। औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम

एलपीजी इत्यादि के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। इन गैसों के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यह जलवायु परिवर्तन का संकेत है। अब हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन होने के मुख्य कारण क्या हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह वह प्रक्रिया है जिससे किसी देश या क्षेत्र में हस्तशिल्प और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से मशीन आधारित उद्योगों को की ओर परिवर्तन होना। कारखानों से निकलने वाला धुआं वातावरण में कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन का दूसरा कारण है वनों की कटाई, डीफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और पत्तियां भोजन बनाती हैं, परंतु वनों की कटाई करने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन संतुलन बिगड़ता है। इस तरह जलवायु परिवर्तन पर गहरा और सीधा प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन का तीसरा कारण है वाहनों की बढ़ती संख्या। पेट्रोल और डीजल के जलने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, शहरी तापमान में वृद्धि होती है और वाहनों की बढ़ती संख्या से जीवाश्म ईंधनों की खपत बढ़ जाती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। चौथा कारण है ऊर्जा का अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग करना, जैसे एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बिजली का अत्यधिक उपयोग करने से पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होता है। जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्तावाद भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या बढ़ने से भोजन, जल, ऊर्जा, आवास और परिवहन की मांग बढ़ती है, जिसकी पूर्ति के लिए अधिक उद्योग, बिजली उत्पादन और वाहन उपयोग बढ़ता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। अब हम चलते हैं हमारे विषय के दूसरे बिंदु पर और वह है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ। जलवायु परिवर्तन की प्रमुख चुनौतियों में से एक है पर्यावरणीय चुनौतियाँ। जब पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ता है तो पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं। उदाहरण के लिए हिमालयास के कई हिमनदों का आकार लगातार घट रहा है। ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने से जल समुद्रों में मिल जाता है, जिससे समुद्र स्तर बढ़ता है। यह तटीय क्षेत्रों के लिए भी गंभीर खतरा बन जाता है। असामान्य वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेत हैं और प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता यह दर्शाती है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली असंतुलित हो रही है। यह पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर गंभीर चुनौती बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि के क्षेत्र में भी देखा जाता है। असामान्य वर्षा और सूखा के कारण फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। गर्म और आर्द्र वातावरण में कीट का रोग तेजी से फैलते हैं, जिससे कि खाद्य संकट की संभावना बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन से तापमान, वर्षा और आर्द्रता के असामान्य बदलाव होते हैं। ये परिवर्तन सीधे मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक, वैश्विक तापमान बढ़ने से लू की घटनाएं बढ़ती हैं। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छर गर्म और आर्द्र वातावरण में तेजी से पनपता है और बीमारियां बढ़ाता है।

है। सूखा, बाढ़ एवं असामान्य वर्षा से फसल उत्पादन घटता है और खाद्यान्न की कमी होती है। पर्याप्त पोषण न मिलने से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में कुपोषण बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण, कृषि, मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी देश की अर्थव्यवस्था, विकास दर और आजीविका को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार आर्थिक समस्याएं स्वयं जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती बन जाती है। अब तक हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जलवायु परिवर्तन की कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। अतः अब हम इसके समाधान के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। विश्व के कई देश मिलकर तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख वैश्विक प्रयास इस प्रकार हैं। पहला, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC 1992। इसकी स्थापना रियो डी जेनेरियो ने 1992 में किया था। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना। इसका सिद्धांत है समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व, CBDR, मतलब सभी देश जिम्मेदार हैं, पर विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक मानी गई है। इसके कार्य हैं सदस्य देशों की वार्षिक बैठक आयोजित करना, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दूसरा, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1988 में की गई थी। इसका कार्य है जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी करना। IPCC की रिपोर्ट के आधार पर वैश्विक नीतियाँ बनती हैं। हाल ही आकलन रिपोर्टों में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। यह 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है विकसित देशों के लिए बाह्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तैयार करना। इसकी कमी यह है कि केवल विकसित देशों पर इसका दायित्व रहा, कुछ बड़े देश इसमें शामिल नहीं हुए। चौथा है पेरिस एग्रीमेंट 2015। पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता है जिसे 12 दिसंबर 2015 को UNFCCC के अंतर्गत पेरिस फ्रांस में आयोजित COP21 सम्मेलन में अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है, जैसे पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान सिर्फ वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर किया जा सकता है। जैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, बिजली और पानी की बचत करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, प्लास्टिक का न्यूनतम प्रयोग करें, 3R को अपनाएं, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। विद्यालय स्तर पर भी हम पर्यावरण क्लब, इको क्लब की स्थापना कर, जल संरक्षण अभियान वाटर कंजर्वेशन चलाकर, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर एवं ऊर्जा बचत अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर, कार्बन टैक्स और कड़े पर्यावरण कानून लाकर और हरित प्रौद्योगिकी का विकास कर चर्चा किए गए चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
यह हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिक समस्या नहीं है।

स्वैच्छिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था जलवायु परिवर्तन चुनौतियां और समाधान। वार्ताकार थी अलका चंद्रा, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का था।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण। वार्ता थी जलवायु परिवर्तन चुनौतियां और समाधान। वार्ताकार थी अलका चंद्रा। प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार की थी। प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। दोस्तों, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म लव स्टोरी के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। सुरों से संवारा है आर डी बर्मन ने और बोल है आनंद बख्शी के।

दोस्तों पंकज उदास के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत। रचना है आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है नाम।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। यह मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Saira Mujtaba. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised directions have come into effect immediately. Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. Defence Minister Rajnath Singh said, India continues to stand out as the world's fastest growing major economy at a time when many countries are facing economic uncertainty. Referring to the registered GDP growth rate of 7.7% in the financial year 2025-26, Mr. Singh said that the achievement underscores resilience and underlying strength of the Indian economy built over the last 12 years. In a social media post, Mr. Singh said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has combined economic growth with stability, confidence, sustainability and credibility. In Punjab, 9 people were killed and 22 injured after their vehicle collided with a truck on the Firozpur-Fazilka road this morning. The victims, all members of the same family, were on their way to Bias to immerse the ashes of a deceased relative in the Bias River when the accident occurred. Senior police officials reached the accident site and rescue operations were carried out with the help of local residents. Delhi police has arrested a hotel cook in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malviya Nagar on the 3rd of this month and claimed lives of 21 people while injuring 40 others. Earlier, the police had also arrested the hotel owner under charges of culpable homicide and other relevant sections. The police stated that further interrogation and investigation is underway. The 29th edition of the India-US Army-to-Army Staff Talks was held in Hawaii, co-chaired by Lieutenant General Rajiv Ghai, Deputy Chief of the Army Staff Strategy, and Lieutenant General Joel Vowell, and Deputy Commanding General of the U.S. Army Pacific. The discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges, and deepening military collaboration in support of shared security interests. In Andhra Pradesh, Janasena Party President Pawan Kalyan has announced Lingamaneni Ramesh as the party's candidate for the upcoming Rajya Sabha election. The announcement was made through an official statement issued by the party. L. Ramesh is scheduled to file his nomination papers today. According to party sources, Ramesh has been associated with Janasena and its leadership since 2015. The second edition of Mango Magic Festival, promotion and tasting event of Indian mangoes, was hosted in Seattle, United States today. Over 100 leading importers of Indian fruits, including senior leadership of U.S. retailers like Costco, participated and tasted 7 premium varieties of Indian mangoes on display. India is currently the world's largest producer of mangoes, with an annual output of over 26 million metric tons and more than 1,000 named varieties. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi today. Heavy to very heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. Similar conditions have been predicted over sub-Himalayan West Bengal, Telangana, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Rayalaseema, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, NCR, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. And in hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under 18 Asia Cup 2026 in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ रुपए के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी। परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। वे थोड़ी देर बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम बैठक करेंगे। इसके बाद वे प्रदेश कोर कमेटी से विमर्श करेंगे और शाम को प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।
2: 2 दिन तक लगातार जो मंथन होगा, हम सबको कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से तजुर्बा भी बहुत है, तो उस तजुर्बा और पार्टी का की आइडियोलॉजी के अनुसार कैसे और हम सब आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से झारखंड के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा।
1: रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
3: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए, तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्प्रेरी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अगले 2-3 साल में कम्प्लीट होगी।
1: गिरिडीह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी है। उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि उसरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 24 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 15 करोड़ रुपए से भव्य रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा।
4: हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा उसरी नदी का जो संरक्षण और ये पर्यावरण का जो उसमें देख रहे होंगे स्वच्छता बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध, और उसमें एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, उसमें 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और दूसरा है STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये 2 योजना झारखंड सरकार का जो हमारे माननीय मंत्री जी के पहल से चल रहा है।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
5: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक के 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्यभर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। रामगढ़ जिले से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित 4 टन आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। उपायुक्त ऋतुराज ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले 4-5 वर्षों से यह योजना चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मेहनत से आज बेहतर फल मिल रहे हैं, जिसे वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।
6: राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत हम लोगों ने 4-5 सालों से जो हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने किया है, ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे लोगों ने अपने एकड़ एकड़ की जमीनों में आम लगाया, आज वो उसका फल जो है देखने को हमें मिल रहा है, जिसमें कि हमारे रामगढ़ जिले के गांव का आम कल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, दुबई के मार्केट में भेजा गया है। हम लोग और भी एजेंसी से बात कर रहे हैं जो इसको आगे अन्य देशों में भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: रांची के ऑड्रे हाउस में जनगणना में पोस्ट कार्ड के ऐतिहासिक योगदान पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें विभिन्न दशकों की जनगणना से जुड़े पोस्ट कार्ड, डाक सामग्री और जागरूकता अभियानों को चलचित्र तथा चित्रों द्वारा दर्शाया गया, जो डिजिटल युग से पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाने का मुख्य माध्यम थे। फिल्म निर्माता मेघनाथ ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां नई पीढ़ी को पारंपरिक संचार साधनों के ऐतिहासिक योगदान से अवगत कराती हैं।
7: 50-70 साल पहले हमारे पास क्या था, अखबार भी कम था, एकमात्र पोस्ट ऑफिस था, घर गांव में जाता था कुछ ये। तो कोई चीज को सबके पास पहुंचाने के लिए पोस्टल सर्विस ही एक अच्छा ये जरिया था। तो हमारे सरकार पोस्टल लिफाफा, पोस्ट कार्ड इसके ऊपर में लिख देते, देखो ये होने वाला है, आप आओ।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। खेल जगत में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। जापान अंडर-18 एशिया कप हॉकी में भारतीय महिला टीम ने कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। झारखंड की संदीपा कुमारी बेस्ट प्लेयर चुनी गईं। घरेलू खेलों में झारखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। उधर पतरातू में 30 टीमों वाली भव्य छोटा नागपुर सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग का शुभारंभ हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची।

थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी, परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार थी आशा भोसले, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार अब से बस कुछ ही देर में।

0: with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
6: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, कार्यक्रम जय भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, देश की सुरक्षा में तैनात हमारे फौजी भाई हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। जब भी देश पर कोई संकट या आपात स्थिति आती है तो उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं और उन्हें तुरंत अपने ड्यूटी स्थान पर लौटना पड़ता है। ऐसे में कई जवान छुट्टियों में अपने घर आए होते हैं और अचानक आदेश मिलने पर उन्हें बिना रिजर्वेशन के ही ट्रेन या बस से वापस लौटना पड़ता है।

दोस्तों, जब हमारे फौजी भाई अचानक से अपनी ड्यूटी पे लौटते हैं, इस स्थिति में अक्सर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती और वे ट्रेन की गेट, टॉयलेट या पास या भीड़भाड़ वाली जगहों पर खड़े नजर आते हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे फौजी भाइयों को पूरा सम्मान दें। अगर आप यात्रा के दौरान किसी फौजी को इस तरह खड़ा देखें तो कृपया अपनी सीट का एक कोना उन्हें सम्मानपूर्वक बैठने के लिए दे दें। यानी यह न सिर्फ उनका हक है बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जो लोग हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं उन्हें हर जगह सम्मान और सुविधा मिले।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: स्वयं ही कर पड़े। भारतीय सेना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोस्तों, फौजी भाई न सिर्फ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि देश के भीतर भी आपदा या संकट के समय आगे बढ़कर मदद करते हैं। उनका जीवन अनुशासन, त्याग और सेवा का प्रतीक है। जब वे छुट्टी पर अपने परिवार के पास आते हैं तो वह समय उनके लिए बेहद कीमती होता है, लेकिन जब ड्यूटी का बुलावा आता है तो वे अपने परिवार को छोड़कर

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम जय भारती यहीं पे संपन्न होता है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के अपने दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। वे पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम बैठक करेंगे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि उनके आने से कार्यकर्ताओं

0: में उत्साह बढ़ेगा।
1: एक कार्यकर्ता से चल करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाला एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको सुनने के लिए लोगों के मन में काफी उत्सुकता है, काफी उत्साह है, और यह यात्रा उनकी ऐतिहासिक होगी हम लोगों के लिए।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव को देखते हुए वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता, संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सके।
2: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए, तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्परेरी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अगले 2-3 साल में कम्प्लीट होगी।
0: सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा टोंगरी टोली स्थित केलाघाग डैम के समीप से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
3: मोटरसाइकिल पर ला करके अवैध गांजा की बिक्री की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि एक उड़ीसा के टांगर गांव बस्ती का दुलेसर अपार्ट है, वही इस क्षेत्र में गांजा के अवैध आपूर्ति करता। इस तरह 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है एवं लगभग 36 केजी गांजा बरामद।
0: जापान के काकामिगाहारा में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ किया। मैच में शानदार खेल दिखाने वाली संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इधर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में खूंटी के आशीष तानीपूर्ति ने लगातार 3 गोल दागकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आ गले लग जाके इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर है कि

0: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म आनंद से, जिसे गाया है मन्ना डे ने, संगीतकार हैं सलील चौधरी और रचना है योगेश की।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम रांची मेलोडीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो हम सफर अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हम दिल दे चुके शनम के इस प्यार से गीत के साथ। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीतकार है इस्माइल दरबार और गीतकार हैं महबूब।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, धुन बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में। धुन बनाई है आनंद मिलन ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मन से, जिसे गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने, संगीत दिया है संजीव दर्शन ने और रचना है समीर की।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में। संगीतकार हैं राम लक्ष्मण, रचना है देव कोहली की। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई

0: ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा टोंगरी टोली स्थित केलाघाग डैम के समीप से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है जीवन में सकारात्मक सोच रखें, अपने बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करें। भेंट वार्ता सर्वाइकल कैंसर भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर रानू कुमार, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल हैं।

नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, भेंट वार्ता सुनेंगे और साथ ही साथ सदाबहार गानों का भी आनंद लेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हैं ना हमारे साथ इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम का आनंद लेंगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में विचारों का विशेष महत्व होता है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। सकारात्मक सोच जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है। वह व्यक्ति को निराश और भय से दूर रखकर आशा और उत्साह से भर देती है। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा युग में सकारात्मक सोच ही आवश्यकता पहले से कहीं और अधिक हो गई है। वास्तव में सकारात्मक सोच ही सफलता और सुखी जीवन का आधारशिला है। तो आइए एक खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं, जीवन में सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व और व्यवहार बनता है। सकारात्मक सोच जीवन को नई दिशा देती है और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच को सफलता और सुखी जीवन की कुंजी माना जाता है। साथियों, सकारात्मक सोच का अर्थ है हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम समस्याओं को नज़रअंदाज करें, बल्कि उसका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करें। सकारात्मक व्यक्ति कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। वह निराशा और असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आज के समय में जीवन अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार और समाज से जुड़ी अनेक जिम्मेदारियां व्यक्ति को तनावग्रस्त बना सकती है। ऐसे समय में सकारात्मक सोच मानसिक शक्ति प्रदान करती है। यह तनाव को कम करती है और मन को शांत रखती है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करता है, क्योंकि उसके व्यवहार में विनम्रता, सहयोग और आशावाद झलकता है। साथियों, सकारात्मक सोच सफलता प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। असफलताओं से घबराने के बजाय उन्होंने सफलता की सीढ़ी बनाया। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें तो कोई भी लक्ष्य

0: संभव नहीं रहता। मित्रों, सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। प्रतिदिन अच्छे विचार पढ़ना, योग और ध्यान करना, अच्छे लोगों की संगति में रहना तथा अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना सकारात्मकता को बढ़ाता है। साथ ही नकारात्मक बातों और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मित्रों, सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि परिवार और समाज पर भी पड़ता है। सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करता है और अपने आसपास खुशियों का वातावरण बनाता है। ऐसे लोग समाज में सौहार्द, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हैं। अंततः सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। याद रखें, जहां सकारात्मक सोच होती है वहां सफलता, सुख और संतोष स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। दोस्तों, आजकल के लिविंग स्टाइल, खान पान और शारीरिक व्यायाम में बदलाव के कारण मनुष्य अनेक रोगों से घिरता जा रहा है। यदि हम किसी भी बीमारियों का नज़रअंदाज करते हैं और सही समय पर इसका इलाज नहीं कराते हैं तो यह बीमारी हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही कुछ बीमारियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। यह बीमारी तब होती है जब शरीर की कोशिकाओं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और गुना होते चली जाती है। तो मित्रों, आइए सर्वाइकल कैंसर बीमारी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है सर्वाइकल कैंसर रोग विशेषज्ञ और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, आजकल के समय में एक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, इससे बहुत सारी महिलाएँ ग्रसित हो जा रही हैं। ये सर्वाइकल कैंसर क्यों हो जा रहा है, क्या हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल है, क्या हमारा खान पान है, कौन कौन से तत्व इस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं और सर्वाइकल कैंसर का सही प्रकार से हमें मालूम पड़ जाए क्या इसके लक्षण हैं ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और इसका बचाव कैसे करें, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर रानू कुमारी। रानू कुमारी जी, स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: रानू जी, ये सर्वाइकल कैंसर आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये किस तरह की बीमारी है और ये क्यों हो जा रहा है इतना?
2: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय का निचला भाग जो कि योनि से जुड़ा होता है उसे गर्भाशय ग्रीवा या सर्वाइकल कहा जाता है। इसी भाग में होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में यह एक बहुत आम कैंसर है। दुख की बात यह है कि अधिकांश महिलाएं तब डॉक्टर के पास पहुंचती हैं जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इस कैंसर को समय रहते रोका जा सकता है। यह संक्रमण बहुत सामान्य है और कई बार शरीर खुद ही इसे ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है जिससे धीरे धीरे कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं में खतरा अधिक इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी शादी अगर कम उम्र में कर दी जाए या शारीरिक संबंध बार बार गर्भधारण करने की वजह से या साफ सफाई की कमी से, अगर वो महिलाएं धूम्रपान करती हों या उनकी इम्यूनिटी या कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता है या लंबे समय तक HPV इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि इसका मुख्य कारण है उससे ग्रस्त हो
1: तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं ताकि हम समय रहते सावधान हो जाएं और इसका इलाज हम शुरू करवा दें, क्योंकि यदि इस तरह की बीमारी को हम इग्नोर करते हैं, लक्षण दिखता है और लक्षण को यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो बीमारी विकराल रूप धारण कर लेगी और फिर आप जानते ही हैं कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है।
2: शुरुआती अवस्था में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, यही कारण है कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ महिलाओं में ये लक्षण दिख सकते हैं जैसे कि पीरियड्स के बीच खून आना या संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना या मेनोपॉज जो कि आपकी मानसिक बंद हो गई हो उसके बाद भी कभी कभी ब्लीडिंग दिखना या दुर्गयुत डिस्चार्ज होना या कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सारे लक्षण को हम पकड़ के डॉक्टर को अगर हम टेस्ट के लिए बोले तो हम इसे इनिशियल या शुरुआती में ये बीमारी को पकड़ सकते हैं।
1: जी, ये प्रायः किस उम्र की महिलाओं को ज्यादा घेर लेता है?
2: ये शादीशुदा महिलाएं हैं जिनमें ज्यादा शारीरिक संबंध या जो सेक्सुअली एक्टिव जो महिलाएं होती हैं उनमें ये केसेस ज्यादा दिखने को मिलते हैं, जिनकी इम्यूनिटी भी कम हो।
1: तो इसकी जांचें किस प्रकार की जाती हैं और इसका इलाज का तरीका क्या है?
2: खास तौर पे हम इस केस में पैप स्मियर करते हैं। पैप स्मियर क्या होता है कि यह एक बहुत सरल और महत्वपूर्ण जांच है। इसमें जो हमारी सर्विक्स का जो पार्ट है, जो निचला हिस्सा है हमारे, उससे हल्के से कुछ सेल्स लिए जाते हैं और माइक्रोस्कोप के से हम उसे जांच करते हैं कि कहीं कोई असामान्य बदलाव तो नहीं है उस सेल्स में। यह जांच बहुत कम समय में ही हो जाता है और सामान्य दर्द रहित होता है। अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैंसर बनने से पहले ही बीमारी पकड़ी जा सकती है। इसे हम यूजुअली सामान्यतः हम 21 वर्ष की उम्र के बाद या शादी के कुछ वर्षों बाद महिलाओं की स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर 3 से 5 साल के बीच अंतराल ये जांच करनी चाहिए।
1: कुछ अंतराल पर हर महिलाओं को अपनी ये जांचें करवा लेनी चाहिए ताकि सतर्कता ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। जी, कम खर्चों में जांचें हो जाती हैं।
2: जी, कम खर्च में ये जांच हो जाती है और इसमें आपको एडमिट करने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से ये टेस्ट हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं है।
1: यदि आरंभ में लक्षण दिख जाते हैं और जांचें में ये लग जाता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो इलाज में सुगमता आती है, इलाज में त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है।
2: जी, जब हम एज ए पैथोलॉजिस्ट हम जब ये सेल्स देखते हैं कि हाँ, अगर किसी महिला के सेल्स में अगर कैंसर होने की संभावना है, अगर हमें वो पता चल रहा है, तो हम उसे रिपोर्टिंग के तौर पे हम विशेषज्ञ के थ्रू हम उनको भेजते हैं, जिससे कि वो पता करते हैं कि हाँ, इसमें कैंसर होना कितना इनमें बढ़ चुका है या फिर ये कैंसर इनमें है या नहीं है।
1: उसी तरीके से फिर इलाज शुरू
2: किया जाता है।
1: जी मैडम, ये बीमारी से बचाव के लिए टीका भी लोग लगाते हैं और भारत सरकार की ओर से भी टीकाकरण अभियान चलाया गया है सर्वाइकल कैंसर की बीमारी को रोकने के लिए, तो ये कौन सा टीका लगाया जाता है और क्या सभी उम्र की महिलाएं टीका लगा सकती हैं?
2: हमारे सरकार ने यूजुअली जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जिससे मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर होता है, इसमें 2 ऐसे महत्वपूर्ण टीका हैं जो कि है सर्वैरिक्स और गार्डेसिल। सर्वैरिक्स जो है वो महिलाओं में ही लगाए जाते हैं जिनमें कि वो 9 साल से 25 साल की उम्र में हम ये टीका लगा सकते हैं और ये टीका 3 डोजेस में अंतराल में लगाए जा सकते हैं। बात करें गार्डेसिल की, तो गार्डेसिल में भी 2 टीकों में ये इसके डिवीजन है, गार्डेसिल 4 और गार्डेसिल 9, जिसमें गार्डेसिल 9 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये गार्डेसिल टीका लड़कों और लड़कियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्वैरिक्स में सिर्फ लड़कियों में ही ये टीका लगाते हैं। गार्डेसिल 4 नाम इसलिए हम देते हैं क्योंकि ये कम जो वेरियंट है, जो वेराइटी है HPV इन्फेक्शन के, उनको पकड़ता है, लेकिन जो गार्डेसिल 9 है वो 9 अलग अलग वेरिएंट को गार्डेसिल ट्रीट करता है। तो गार्डेसिल 9 लगाना मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभदायक होगा।
1: और ये टीकाकरण बिल्कुल निशुल्क है सरकार की ओर से, या कहीं हम अलग से भी लगाते हैं तो उसके लिए भी कुछ खर्च हमें लगते हैं?
2: ये किसी किसी अस्पताल में निशुल्क होते हैं और किसी किसी अस्पताल में वो थोड़े अपने चार्ज ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल में मेरे ख्याल से ये निःशुल्क ही है।
1: जी, और किस उम्र की महिला इसको लगाएंगे?
2: मैंने जैसे बात किया, ये सर्वैरिक्स और गार्डेसिल 9 साल की लड़कियों से 45 साल की महिलाओं तक में लगाया जा सकता है।
1: जी,
2: ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उनकी शादी हुई है तभी उनको देना है, आप 9 साल की उम्र में भी टीका लगा सकते हैं।
1: एक बार ही लगा सकते हैं?
2: एक बार लगाना है, लेकिन उनके डोजेस अंतराल 3 ऐसे डोजेस में लगाने होते हैं। जैसे गार्डेसिल जो आपके 9 है वो 2 डोज में लगा सकते हैं, एक तो जब आपको पता चलता है और उसके बाद 6 महीने बाद फिर से, और अगर 9 से 14 साल में गार्डेसिल का वैक्सीन हमने लगाया है तो तो हमें दूसरे डोज है 15 से 45 साल में। अगर 9 से 14 साल में आपकी वो डोज छूट गई है, तो आपको अगर पता चल रहा है कि हमें ये वैक्सीन लेना है, तो 15 से 45 साल में हम ले सकते हैं ये वैक्सीन। लेकिन हमें वो जो डोज लगाना है वो 3 डोज में लगाना है। एक तो जब हमें पता चल रहा है कि हाँ आज हमें वैक्सीन लगाना है, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, 3 डोज पे।
1: और ये वैक्सीन जैसा आपने बता रहे हैं 9 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाएं इसको लगा लेती हैं, तो इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, बचा सकती हैं और सेहतमंद रह सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं इस तरह के जो लक्षण दिखते हैं उसको इग्नोर कर जाती हैं, इग्नोर करते जाती हैं और फिर बीमारी बढ़ती जाती है। और महिलाएं अक्सर घर के कामों में व्यस्त होती हैं और इन बातों को इग्नोर कर जाती हैं। तो क्या कहेंगे हमारी माताओं, बहनों या जो लड़कियां हैं, जो नव युवतियाँ हैं, 9 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
2: हमारे समाज में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे रखती हैं, क्योंकि घर और परिवार की जिम्मेदारियों में वो अपनी जांच और इलाज को टालती रहती हैं। लेकिन याद हमें ये रखना चाहिए कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है, पर हमें समय पर स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पैप स्मियर एक सरल जांच है और सुरक्षित जांच है, जिसमें कि पेशेंट को एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। और कई महिलाएं शर्म या डर से ये टेस्ट नहीं करवाती हैं, बट मुझे ये बोलना है कि आप इसमें इससे डरिए मत, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें।
1: तो यदि आप जागरूक होते हैं, सजग होते हैं और इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं, तो आप देर नहीं कीजिए, तुरंत पैप स्मियर टेस्ट है आप करवा लें और ये हर जगह उपलब्ध है, और बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक अपने आगे की भविष्य की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानू कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और सर्वाइकल कैंसर और उसके बचाव पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, रोज की बात ही, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों और परिवार का भी ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो, नमस्कार।
0: दोस्तों जीवन शैली में बड़ी परिवर्तन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर लेकिन काफी हद तक रोके जाने वाली बीमारी है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सहज रहना चाहिए और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा सा संगीत का रंग देते हुए आइए सुनते हैं एक सदाबहार गाना।

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्यामत से क्यामत तक का यह गीत, जिसे गाया था उदित नारायण और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। दोस्तों, यह गीत सुनने के बाद आशा करते हैं कि यह गीत आपको खूब पसंद आया होगा। दोस्तों, जीवन में बिताया हुआ कुछ यादगार पल हमेशा ज़हन में स्मरण में रहता है, इसलिए हमें अपने दैनिक जीवनचर्या से कुछ समय निकालकर घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों के साथ हमेशा समय व्यतीत करना चाहिए। और आइए एक और खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करें। मित्रों, बच्चे किसी भी परिवार की सबसे अनमोल धरोहर होते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान पूरे घर में खुशियां बिखेर देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन बच्चों के साथ बिताया गया समय उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के साथ अच्छे और यादगार पल अवश्य व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, बच्चे की महंगे खिलौने या सुविधाओं से अधिक अपने माता पिता का प्यार और समय चाहिए होता है। जब माता पिता बच्चों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तब बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। वह स्वयं को सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के साथ अच्छे पल बिताने के अनेक तरीके हैं। माता पिता उनके साथ खेल सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं, पार्क में घूमने जा सकते हैं या परिवार के साथ भोजन बनाकर उनका आनंद ले सकते हैं। पढ़ाई के समय उनका मार्गदर्शन करना, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहना करना भी बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे क्षण बच्चों के मन में जीवन भर के लिए सुंदर यादें छोड़ जाता है। साथियों, आज मोबाइल फोन, टेलीविजन और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार माता पिता और बच्चों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि माता पिता कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाकर बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। इससे परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी समझ बढ़ती है। बच्चों के साथ समय बिताने का एक बड़ा लाभ यह है कि माता पिता उनके स्वभाव, रुचियों और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यदि बच्चों के किसी परेशानी या तनाव में हो तो वो खुलकर अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। इससे बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता है और वो गलत रास्ते पर जाने से भी बचते हैं। दोस्तों, बच्चों के साथ बिताया गया अच्छे पल केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी खुशी और संतोष का स्रोत होता है। यह समय परिवार में प्रेम, विश्वास और अपनापन बढ़ता है। एक खुशहाल परिवार का निर्माण तभी संभव है जब उसके सदस्य एक दूसरे के लिए समय निकालें। दोस्तों, अंत में यह भी कहा जा सकता है कि बच्चों के साथ अच्छे पल व्यतीत करना हर माता पिता की जिम्मेदारी और आवश्यकता है। धन और सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन बच्चों को में संस्कार, आत्मविश्वास और स्नेह केवल परिवार से ही मिल सकता है। इसलिए हमें अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर बच्चों के साथ हंसना, खेलना और बातचीत करना चाहिए। यही पल उनके उज्जवल भविष्य और परिवार की खुशहाली की मजबूत नींव बनते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अब से थोड़ी ही देर में यानी 4:35 से आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांस सरगम। शाम 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा मदर इंडिया से मुन्ना भाई तक सुनील दत्त के कालजयी किरदार जयंती, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, गर्मी में कामकाजी भाइयों और बहनों के लिए ज़रूरी स्वास्थ्य टिप्स एवं अपना घर अपना स्वाभिमान प्रधानमंत्री आवास योजना। शाम 6 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

6:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा कृषि यंत्रों का रखरखाव। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। चर्चा का विषय होगा फिजूल खर्ची से बचें। साथ ही आप सुन सकेंगे कुरमाली वार्ता, कर्म ही पूजा है। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वृंदावन महतो एवं प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुन सकेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर होंगे हो लोकगीत, कलाकार होंगे यशमती तियो एवं साथी। 7:20 पर होगा क्षेत्रीय समाचार नागपुरी, उराव, मुंडारी, हो एवं संताली भाषा में। सात बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार ध्वनि चित्र। रात्रि 8:00 होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। एवं 11:10 पर हमारी मीडियम वेव की ये सभा समाप्त हो जाएगी। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अगला कार्यक्रम सांस सरगम बस थोड़ी ही देर में, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म कहो ना प्यार है से। स्वर उदित नारायण एवं अलका याग्निक के।

कहो ना प्यार है, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत उदित नारायण एवं अलका याग्निक के सुरों में, शब्द रचना इब्राहिम अश्की एवं संगीत राजेश रोशन का। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिल्ली 6 से, स्वर मोहित चौहान का।

डेली सिक्स से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत मोहित चौहान के स्वर में, शब्द रचना प्रसन्न जोशी की एवं संगीत AR रहमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म आजा नचले से, स्वर सोनू निगम एवं श्रेया घोषाल का।

फिल्म से, शब्द रचना जयदीप शानी की एवं संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत बजरंगी भाईजान से।

नीलेश मिश्रा का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। राहत फतेह अली खां एवं रेखा भारद्वाज के स्वर में फिल्म बजरंगी भाईजान से, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अजब प्रेम की गजब कहानी से।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से कैलाश खेर के स्वर में, शब्द रचना इरशाद कामिल की एवं संगीत प्रीतम का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। शाम के 5 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पिनी हातिरकी समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक, विद्युत विभाग की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ गर्मियों के इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे। और इसी मजे को डबल करने के लिए हम लेकर आ गए हैं हमारा कार्यक्रम युवाणी। मैं वैभवी
1: और मैं शुभांगी,
0: हमारी ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, हर नया मौसम अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है और गर्मी का मौसम भी कुछ ऐसा ही है। सच कहे तो गर्मी एक ऐसा मौसम है जिससे लोगों की दोस्ती भी है और थोड़ी शिकायतें भी।
0: बिल्कुल, एक तरफ सूरज अपने पूरे जोश में होता है तो दूसरी तरफ बाजारों में आम, लीची, तरबूज, खरबूज और ठंडी ठंडी सिकंजी की बाजार आ जाती है।
1: सोचिए वैभवी, पेड़ से ताज़ा तोड़ा गया मीठा आम, फ्रिज में रखी ठंडी लीची, शाम को दोस्तों के साथ कुल्फी का मज़ा। गर्मी अपने साथ ऐसी कई नई छोटी छोटी खुशियां लेकर आती है।
0: सही कहा। और फिर गर्मी सिर्फ तापमान का बढ़ना नहीं है बल्कि यह उन यादों का मौसम भी है जिनमें छुट्टियां हैं, नानी का घर है, दोपहर में आम का रस है, शाम में सूरज की लालिमा और बारिश के आने का एक खूबसूरत प्यारा एहसास है।
1: लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है तो अपनी चुनौतियाँ भी। जिस गर्मी से आम और लीची का स्वाद है, उसी गर्मी में लू, डिहाइड्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ का खतरा भी छिपा होता है।
0: और फिर जब तपती धरती पर बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी की वह सौंधी खुशबू हर किसी का दिल जीत लेती है। लेकिन बारिश के साथ भी कुछ सावधानियां, कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और इसलिए आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे।
0: तो दोस्तों, मौसम हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। गर्मी के दिनों में तेज धूप, बढ़ता तापमान, लू का खतरा, वहीं बारिश के मौसम में जलभराव, संक्रमण और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
1: दोस्तों, अभी कई क्षेत्रों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में हमारे शरीर के को सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है।
0: जब हम गर्म वातावरण में रहते हैं तो शरीर पसीना निकालता है। पसीना शरीर के को ठंडा रखना और प्राकृतिक तरीका है। लेकिन अत्यधिक पसीना निकलने से शरीर में पानी और आवश्यक लवणों की कमी हो जाती है। यही कारण है कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है।
1: दोस्तों, इस मौसम में सबसे महत्वपूर्ण है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। प्यास लगे या ना लगे, नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए। साथ ही अगर आप यात्रा में हो या बाहर काम करते हो तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें।
0: बिल्कुल, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और ताजे फलों का रस शरीर को ठंडक प्रदान करता है और ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करता है। वहीं बहुत अधिक चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ा सकते हैं।
1: दोस्तों, गर्मी का मौसम बिना लू के अधूरा होता है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। लू हमें तब लगती है जब शरीर लंबे समय तक अत्यधिक गर्म वातावरण में रहता है और शरीर का तापमान सामान्य सीमा से बहुत अधिक बढ़ जाता है।
0: लू लगने पर तेज सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी, बेचैनी, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी तक हो सकती है।
1: बिल्कुल।

0: लू से बचने के लिए दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर ही निकलें।
1: ऐसे में हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, क्योंकि ये शरीर को हवा देते हैं और पसीना जल्दी सूखने में मदद करता है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी के प्रभाव से जल्दी प्रभावित होते हैं।
0: दोस्तों, गर्मी के मौसम में खान पान में भी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस मौसम में भोजन जल्दी खराब हो जाता है और इसलिए जरूरी है कि हम स्वाद और स्वच्छ और ताज़ा भोजन करें।
1: सड़क किनारे खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का तो सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और लंबे समय तक जो भोजन खुला रखा गया है उसे भी हमें खाने से बचना चाहिए। इससे हमें पेट संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं।
0: साथ ही अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, सलाद और तरल पदार्थों को शामिल करें। खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा जैसे फल शरीर को ठंडक देते हैं और पानी की कमी नहीं होने देते हैं। खाने को हमेशा ढककर रखें और रसोई की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, इस विषय पे हम और भी बातें करेंगे। पहले सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: दोस्तों, जब हम गर्मी के मौसम की बात करें और बारिश छूट जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो मौसम सुहाना हो जाता है और पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं और वातावरण में ताजगी आ जाती है। लेकिन बारिश के साथ भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं।
2: बारिश के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं। यही कारण है कि इस मौसम में वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम और पेट संबंधित संक्रमण अधिक देखने को मिलते हैं।
1: बिल्कुल, बारिश के दिनों में केवल साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करना चाहिए। यदि पानी की शुद्धता पर जरा भी संदेह हो तो उसे उबाल कर पीना चाहिए और साथ ही खाना हमेशा ताजा और गर्म ही खाए।
2: दोस्तों, बारिश

0: के मौसम में जगह जगह पानी जमा होता है। यहाँ जमा हुआ पानी जो होता है वह मच्छरों को उत्पन्न करने के लिए एक जगह प्रदान करता है। ऐसे में हमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
1: और इनसे बचाव के कुछ आसान तरीके हैं, जैसे अपने घर और आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर, बाल्टी, टायर और गमलों में भरा पानी नियमित रूप से बदलें, साथ ही रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और लगातार बुखार की शिकायत होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले।
0: दोस्तों, वैसे तो गर्मी और बारिश के मौसम में सभी को सतर्क रहना ही चाहिए, मगर बच्चों और बुजुर्गों को खास कर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनका अधिक ध्यान और देखरेख करना चाहिए।
1: ऐसे में बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाएं और उन्हें लंबे समय तक धूप में खेलने से बचें। बारिश के मौसम में बच्चों को गंदे पानी या जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रखें। बुजुर्गों को समय पर दवाइयाँ लेने, पर्याप्त पानी पीने और संतुलित भोजन करने की सलाह जरूर दें, और यदि उन्हें चक्कर, कमजोरी या बुखार महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई है। हर दिन कुछ नया सीखना न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि जीवन को और भी रोचक बना देता है। तो आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में।
0: बिल्कुल, जैसे ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, इसमें से 2 दिल गलफड़ों का तक जो है वो खून पहुंचाता है और 1 पूरे शरीर में। शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हजारों वर्षों तक खराब नहीं होता। पृथ्वी पर हर दिन लगभग 60 टन अंतरिक्षीय धूल गिरती है।
1: दोस्तों, क्या आपको पता है जिराफ अपनी 21 इंच लंबी जीभ से अपने कान तक साफ कर सकता है? साथ ही मानव मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन से बना होता है। पेंगुइन अपने साथी को प्रपोज करने के लिए अक्सर सुंदर कंकर उपहार देते हैं।
0: दोस्तों, एक बड़ा पेड़ एक दिन में लगभग 4 लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे सकता है। बिजली की एक चमक सूर्य की सतह से भी कई गुना अधिक गर्म हो सकती है।
1: दोस्तों, तितलियां अपने पैरों से स्वाद चखती हैं। हंसना न केवल मन को खुश करता है बल्कि तनाव कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल, दुनिया जो है वो आश्चर्यचकित करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। तो ऐसी ही कुछ और भी बातें हम करेंगे आपसे, लेकिन एक खूबसूरत से गीत के बाद।

0: दोस्तों आइए अब जानते हैं 6 जून के इतिहास के पन्नों में आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटी थीं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की। 6 जून 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर एक विशाल सैन्य अभियान शुरू किया जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। यह अभियान युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यूरोप की नाजी शासन से मुक्ति कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इतिहासकारों के अनुसार यह मानव इतिहास में सबसे बड़े समुद्री सैन्य अभियानों में से एक था।
1: दोस्तों भारत के इतिहास में भी 6 जून का विशेष महत्व है। 6 जून 1674 को महान मराठा योद्धा और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किला में भव्य राज्याभिषेक हुआ था। इस ऐतिहासिक अवसर पर शिवाजी महाराज को विधिवत छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। उनका राज्याभिषेक भारतीय इतिहास में स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सुशासन का प्रतीक माना जाता है। 6 जून विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी याद किया जाता है। इस दिन कई ऐसे वैज्ञानिक और विचारक जन्मे जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। जी हाँ, विज्ञान की प्रगति ने दुनिया को नई दिशा दी और आज का आधुनिक समाज उन्हीं प्रयासों का परिणाम है।
0: खेल जगत में भी 6 जून कई यादगार उपलब्धियों का साक्षी रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने इस दिन अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से नए कीर्तिमान स्थापित किए और अपने देशों का गौरव बढ़ाया।
1: दोस्तों यदि हम भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो 6 जून अनेक साहित्यकारों, कलाकारों और समाज सुधारकों की स्मृतियों से भी जुड़ा हुआ है। इन महान व्यक्तित्वों ने अपने विचारों और कार्यों से समाज को नई दिशा प्रदान की तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन केवल तारीख नहीं होता बल्कि संघर्ष, साहस, त्याग और उपलब्धियों की कहानी लेकर आता है। 6 जून का दिन हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्भय साहस, डी-डे के वीर सैनिकों के बलिदान और मानवता की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों की याद दिलाता है।
0: तो दोस्तों आज के दिन हमें उन सभी महान व्यक्तित्वों और घटनाओं को नमन करना चाहिए जिन्होंने इतिहास की धारा को नई दिशा दी। उनके संघर्ष और उपलब्धियां हमें अपने जीवन में दृढ़ संकल्प, मेहनत और देश प्रेम की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो हमें आज की भी बात करनी चाहिए, तो अब हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स की। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत सहित दुनिया के कई देशों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। योग को शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है।
1: साथ ही देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। किसानों के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई में बारिश महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: भारत में डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल लर्निंग और ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को कई सुविधाएं घर बैठे मिल रही हैं।
1: भारतीय खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और एथलेटिक्स में भारत लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।
0: तो दोस्तों ये थी करेंट अफेयर्स की कुछ बातें। अब हमारे जाने का समय हो गया है। तो दोस्तों शुरुआत में गर्मी और बारिश से सावधानियों की बात हमने की थी। कार्यक्रम के आखिर में भी हम अपने आपसे चाहेंगे ये बताना कि इस मौसम में सड़क सुरक्षा का भी खास ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और वाहन चलाने वालों और पैदल चलने वाले दोनों को ही सावधानी बरतनी चाहिए।
0: तो वाहन की गति नियंत्रित होनी चाहिए, हेडलाइट और इंडिकेटर सही होना चाहिए, फिसलन वाली सड़कों पर अचानक ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही पैदल चलते समय बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए।
1: तो दोस्तों मौसम बदलते रहते हैं लेकिन हमारी सावधानी और जागरूकता हमें हर मौसम से सुरक्षित रखती है। और इसी के साथ अब हमारे जाने का समय हो गया है, तो हमें दीजिए इजाजत। मैं शुभांगी
0: और मैं वैभवी, हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार श्रमिक साथियों, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक लोग को लेकर हाजिर हूँ मैं श्वेता, और मेरे साथ है कार्यक्रम में हमारी प्यारी रंजना। तो रंजना, आपको भी नमस्कार और हमारे सभी साथियों को भी प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार श्वेता, और सारे श्रमिक साथी जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्वेता, सबसे पहले अपने साथियों का हाल पूछते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहिए साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे।
0: वाह, क्या खूब कहा। और काम तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे श्रमिक साथी डेली रोज काम करते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। तो जो हमारे श्रमिक भाई बहन अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन साथ में उनको अपना और अपनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अभी लगातार मौसम में उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी गर्मी और बहुत तेज गर्मी
1: है तो बहुत तेज गर्मी है।
0: और कभी

0: बादल कर दे रहा है, बारिश हो सकती है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस मौसम में सावधान रहें, नहीं तो फिर आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं।
1: सावधानी से इसे भी आप आसान बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। तो साथियों वो थोड़ी हम आज टिप्स देते हैं ना श्वेता, स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि ऐसे जो मौसम है, हमारे जितने भी काम करने वाले भाई और बहनें हैं जो सुबह सुबह तैयार होकर दफ्तर, फील्ड या मार्केट में काम के लिए निकल पड़ते हैं, उनके लिए यह मौसम किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है।
0: बिल्कुल, और किसी भी मौसम में आप काम को अवॉइड नहीं कर सकते, काम तो आपको करना ही है, इसलिए आप इस गर्मी में अपनी सेहत को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप गर्मी में भी खुद को कूल और स्वस्थ रख सकते हैं।
1: और साथियों को बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने ध्यान रखने के लिए क्या करना है, आप काम में जब रहते हैं, काम की धुन में, तो पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो ऐसा भूल के भी ना करें। आपको अगर पानी पीना, सादा पानी अच्छा नहीं लगता है, तो आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, सत्तू का भी शरबत बनाकर पिएं, छाछ पी लें, नारियल पानी अगर हो सके तो, और अगर आपको गन्ने का कहीं फ्रेश जूस भी मिल रहा है तो उसे भी आप जरूर लें, यह आपको एनर्जी देगा।
0: बहुत सही कहा आपने, और गर्मी में बहुत ज़्यादा तेल, गरम मसाला या नॉनवेज खाने से आप परहेज करें। अपने लंच में हरी सब्जियों जैसे लौकी, तुरई या टिंडा शामिल करें, साथ में दही या रायता जरूर खाएं क्योंकि ये पेट को ठंडा रखता है।
1: और अभी बहुत अच्छी, सबसे अच्छी ये मिलती है सब्जियाँ, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये अपने प्याज के साथ टिफिन में जरूर शामिल करें, या तो इसे आप सलाद के रूप में खाएं, लेकिन जरूर खाएं इनमें, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो शरीर का तापमान को मेंटेन रखती है।
0: और दोस्तों एक बात आपको बता दें कि आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमेशा गर्मी के मौसम में कोशिश करें कि सूती कपड़े ही पहने और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने। जब भी बाहर निकलें सनग्लास जरूर लगाएं, छाता का इस्तेमाल करें, और हमारे श्रमिक भाई बहन लोग अक्सर हिचकिचाते हैं, लेकिन हेलमेट के साथ साथ चेहरे को भी स्कार्फ से ढकें।
1: और साथियों ये तो आपको लग रहा है बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन ये बहुत ही अनमोल बातें हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप इन बातों का ध्यान रखिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान को बनाए रखिए।
0: और दोस्तों चूंकि हम हमेशा आपके ही बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें आपको बताते रहते हैं अपने कार्यक्रम के जरिए, और आज भी हम आपको बताएंगे कि आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे होते हैं, हमारे कई सारे श्रमिक साथी जो होते हैं वो उद्योगों में काम करते हैं, तो ऐसे में उन्हें बताएंगे कि उद्योगों से जुड़े कौन कौन से स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं और क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए।
1: हाँ, तो आज इसी विषय पर हम आपको एक भेंटवार्ता सुनाने जा रहे हैं, उद्योगों से जुड़े खतरे और सावधानियाँ। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर अक्षय कुमार और भेंट करता है श्वेता आर्य।
2: श्रमिक साथियों, हमारा कार्यक्रम पूर्णतः आपके लिए है। इसके माध्यम से हम आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, सावधान करते हैं। साथियों, आपके काम का दायरा बहुत बड़ा है और काम के दौरान आपको कई तरह के खतरे उठाने पड़ सकते हैं, कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, तो आपको इन सब से सचेत और सावधान करने के लिए आज हम बात करेंगे जनरल फिजिशियन डॉक्टर अक्षय कुमार सिंह से। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैम।
2: तो हमारा सर कार्यक्रम है श्रमिक लोग, हमारा सरोकार है श्रमिक साथियों से। काम के दौरान श्रमिक साथियों को किस तरह के खतरे हो सकते हैं?
3: श्रमिक साथियों को विभिन्न संस्थाओं में काम करने से अलग अलग खतरे होते हैं। पहला है कि कोल खदान में जो लोग काम करते हैं उन्हें कोल डस्ट से सामना करना पड़ता है। जो लोग कॉटन मिल्स में काम करते हैं उन्हें कॉटन फाइबर्स का सामना करना पड़ता है, और जो लोग फैब्रिकेशन में काम करते हैं वहाँ पर वेल्डिंग मशीन से आँख को या शरीर को खतरा हो सकता है, और रोड वर्कर्स जो काम करते हैं या बिल्डिंग्स में हमारे यहाँ जो काम करते हैं उन्हें सीमेंट के बीच में रहना पड़ता है। इस तरह से हर व्यवस्था में अलग अलग तरह की बीमारियां या खतरा का सामना श्रमिकों को करनी पड़ती है।
2: सर, तो कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं इन काम के दौरान, क्योंकि इनके काम का क्षेत्र तो बहुत सारा है और आपने बता भी दिया, तो इस तरह के काम के दौरान उन्हें किस तरह के खतरे हो सकते हैं?
3: जैसे कोल खदान में काम करते हैं तो कोल का डस्ट बहुत माइक्रोन साइज में उड़ते रहता है, और जिसके चलते उन्हें फेफड़ा में जमा होने की संभावना बढ़ती है, और इसके बाद उससे नेजल एलर्जी हो सकती है, एजमा हो सकता है, दमा का बीमारी हो सकता है, और बार बार प्रसिपिटेटेड इन्फेक्शन

0: होने के चलते उन्हें ट्यूबरक्लोसिस का भी कभी कभी सामना करना पड़ सकता है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए क्रोनिक एजमा के वे शिकार हो सकते हैं। या कोल वर्कर्स के बाद में रोड में काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक, जिन्हें अलग से सामना करनी पड़ती है, और उन्हें भी उसी तरह से इन्फेक्शन लंग्स का क्रोनिक होते जाता है। और वेल्डिंग के बीच में काम करने वाले लोगों को आँख का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके चलते उनके आँख की रोशनी भी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: सर, तो हमारे श्रमिक साथी को तो काम करना ही है, चाहे वो जो भी डिपार्टमेंट के लिए हुनरमंद है, उन्हें वो काम करना होता है। तो इस तरह के खतरे अगर उन्हें हो जाए तो वे क्या कर सकते हैं?
0: खतरे से पहले हमारा मेडिकल साइंस का सिद्धांत है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट, तो बचाव ही सबसे पहला उपाय है। बचाव करने के लिए अगर कोल वर्कर्स हैं तो बेहतरीन होगा कि वे मास्क लगा के काम करें। रोड वर्कर्स या हमारे बिल्डिंग्स मटेरियल में काम करने वाले लोग भी अगर इस तरह का बचाव करें तो उनके लंग्स का इन्फेक्शन कम हो सकता है, एलर्जी कम हो सकती है। लेकिन अगर वे इसके बीच में काम करते करते कभी पिन प्रिक हो सकता है या कांटी शरीर में चुभन हो सकती है, तो उसके बचाव के लिए जनरली वो लोग टिटनस से कभी कभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। टिटनस से बचाव के लिए भी बहुत तरह के उपाय हैं। अगर इस तरह की अगर व्यवस्था है तो पहले से ही जो श्रमिक इसमें काम करते हैं तो बचाव के लिए 2 डोज टीटी लेना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सस्ता है, सरकारी सेवा में मुफ्त में मिलती है, और वो चाहेंगे तो प्राइवेट भी ले सकते हैं। सिर्फ 2 डोज टीटी लेने से उन्हें लाइफ लॉन्ग का प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर गंभीर इंजरी होने के बाद सिर्फ 1 डोज टीटी लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो लोग बिल्कुल इससे अनभिज्ञ हैं और कभी भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं आए हैं, उन्हें फिर खतरा ज़्यादा होता है, और उसे स्पेशल प्रिकॉशन लेकर के हम ATS के साथ साथ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, उसके बचाव से करते हैं। लेकिन बेहतर है कि वे श्रमिक अगर इस लाइन से जुड़े हैं तो उन्हें 2 TT का डोज ले लेना चाहिए, जो लाइफ लॉन्ग उन्हें टिटनस से बचाता है।
1: और कुछ ऐसे श्रमिक साथी हैं जिन्हें कि वो माइंस वाला काम करना होता है, या फिर जो मैकेनिक होते हैं, जैसे कि लोहे के ग्रिल बनाते हैं, गेट ग्रिल बनाते हैं, या लोहे का सामान बनाते हैं, या फिर गाड़ी के पार्ट्स बना रहे हैं, चाहे उनमें उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उन्हें भी कई तरह के खतरे उठाने पड़ सकते हैं। तो उन्हें किस तरह के खतरे होते हैं और वो कैसे बचे?
0: और उन्हें भी इसी तरह का स्मोक का पोल्यूशन का, साउंड पोल्यूशन का, उन्हें अगर गैरेज में काम करते हैं तो वहाँ पर साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई डेसिबल का साउंड रहता है, जिससे उन्हें कान की बीमारियाँ हो सकती है, बहरापन हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ईयर प्लग्स लगा करके काम करना ज़्यादा बेहतर होता है, और इस बचाव से वे हमेशा के लिए परमानेंट डिजेबिलिटी ऑफ हियरिंग डिफेक्ट से बच पाते हैं। इसलिए उन्हें कान का प्लग्स लगा करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हाई डेसिबल साउंड जो है हमारे क्लियर को नर्व को डैमेज करता है और परमानेंट डेफनेस का शिकार हो जाते हैं। वेल्डिंग के लिए तो जरूरी है कि उसमें जो आर्क्स जो निकलता है, एक तरह का लाइट, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलता है, और इतना हाई कैंडल लाइट रहता है कि जिस कैंडल से उनके आँख की रोशनी भी खराब हो सकती है। और ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल टाइप का चश्मा जो लगा करके काम करने से प्रोटेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर वेल्डिंग का काम करते हैं तो बिना चश्मा लगाए हुए काम नहीं करें तो बेहतर होगा। वेल्डिंग में भी धुआं निकलता है, और गाड़ी के काम करने वाले के बीच में भी धुआं निकलता है, तो वे भी अपने मास्क से ही बचाव कर सकते हैं। और उन्हें बेहतरीन है कि समय समय पर कुछ परेशानी होने के बाद स्वास्थ्य की जाँच करानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार क्रोनिक इन्फेक्शन होने के चलते ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी भी होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें समय समय पर स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए।
1: सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ये श्रमिक साथी समझ गए होंगे कि ये कोई भी जो प्रिकॉशन का जो भी उपाय है, कोई बहुत महंगा उपाय नहीं है, लेकिन अगर आप ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है।
0: महंगा तो इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक बार डैमेज, लंग्स डैमेज हो जाने के बाद वो परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाती है, और उसमें मोर्टलिटी एंड मॉर्बिडिटी दोनों

0: हाई हो जाती है, इसलिए काम अगर करना ही है तो बचाव करना ही बेहतर होगा।
1: सर कुछ मजदूर ऐसे हैं जिन्हें ये कचरा बिनने वाले भी मजदूर हैं, जो सीसा उन्हें गड़ सकता है या फिर जो लोहा का सामान है कहीं चुनने बिनने में उनको हाथ में गड़ सकता है, या ऐसे मजदूर हैं जिन्हें इस तरह के बीच में ही काम करना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
0: अगर इस तरह का रिस्क के बीच में उनको काम करना है तो बेहतरीन होगा कि एक स्पेशल टाइप्स की ग्लोव्स होती है, मोटा लेदर की होती है, जो हाथ में लगा करके अगर चुने तो हाथ में प्रीक होने का, गड़ने की संभावना को कम रहती है। फिर भी उन्हें भी बचाव के रूप में टिटनस टैक्सॉइड के 2 टीके ले लेना ही बेहतर होता है। और जो भी इस तरह के काम करें, इन्फेक्शन प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, वो भी मास्क लगा के काम करें। सड़े गले चीज या जहाँ शीशा चुनते हैं वहाँ पैर में गड़ सकता है, हाथ में गड़ सकता है, और टिटनस प्रोन इंजरी होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए इन्हें बचाव के लिए मोटे टाइप्स का एक ग्लोव्स होता है, उसे लगा करके चुनने से प्रीक होने की संभावना कम रहती है। और एक जूता होता है स्पेशल टाइप का, जो बहुत मोटा सोल वाला होता है और ऊंचा जूता रहता है, जो नीचे से कोई भी इन्फेक्शन उनके शरीर में नहीं लग पाता है।
1: सर आपने हमारे श्रमिक साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, और चलते चलते सर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनको काम के दौरान कई तरह के खतरों से भी बच सकें और निरोग रह सकें, स्वस्थ रह सकें?
0: स्वस्थ रहने के लिए उन्हें जो भी प्रोटोकॉल है उन्हें पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, टिटनस टैक्सॉइड के 2 टीके लगाना, और इसके बाद ग्लोव्स लगा के काम करना। अगर वेल्डिंग का काम करते हैं तो उन्हें चश्मा लगा करके, एक स्पेशल टाइप का चश्मा होता है जो सिंपल चश्मा नहीं होता है, जिसमें कोई भी एक्सपोजर आँख को नहीं लग पाता है, और ये सब बचाव करते हुए उन्हें काम करें तो बेहतर है। लेकिन अगर श्रमिक कभी कभी विभिन्न प्रकार के बीमारी से भी ग्रस्त हो सकते हैं, अगर उनको कोई भी इस तरह का लंग्स का कॉम्प्लिकेशन हो तो बेहतर है कि वे अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं।
1: अगर जरा सा भी काम के दौरान आप किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाएं, किसी भी तरह से आपको परेशानी हो, तो सबसे पहले अपना प्राथमिक उपचार करके अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और डॉक्टर से जा करके परामर्श जरूर लें, उन्हें जरूर दिखाएं। किसी भी रोग को, किसी भी खतरे को कम न समझें और उसे सही समय पर उसका इलाज जरूर कराएं। डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रमिक साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चय ही हमारे श्रमिक साथी इसका लाभ उठाएंगे, और आपके महत्वपूर्ण समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
2: साथियों अभी सुन रहे थे कार्यक्रम भेंटवार्ता, विषय था उद्योगों से जुड़े खतरे और सावधानियां के बारे में। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अक्षय कुमार और उनसे बातचीत कर रही थी श्वेता आर्या। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम आपके पसंदीदा अभिनेता संजय दत्त की बात करते हैं। संजय दत्त ने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से हम सबके दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। कई यादगार भूमिकाओं के साथ उनकी किसी भी दुनिया में एक अलग पहचान है।
3: हाँ बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा, उनके कई किरदार मुझे भी बहुत पसंद आए। उनकी फिल्म साजन, खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई, हर मूवी में अलग अलग किरदारों की भूमिकाओं में उनका रोल बहुत जीवंत रहा। दोस्तों संजय दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक हैं जिनके किरदार समय के साथ और भी यादगार बनते गए।
2: हाँ साथियों, फिल्म वास्तव के रघुक से लेकर मुन्ना भाई तक उनकी अभिनय यात्रा भारतीय सिनेमा की एक प्रेरणादायक कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती रहेगी।
3: तो दोस्तों अब आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत सा फिल्मी गीत।

0: साथियों भी अपने बहुत ही प्यारा गीत सुना, संजय दत्त पर फिल्माया हुआ ये गीत थी। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको एक और भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। आपको आज बताते चले कि गोपीनाथ बारदोलोई के बारे में, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्हें असम के शिल्पकार के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 6 जून 1890 को असम के नागांव के जिले में हुआ था।
1: हाँ दोस्तों, आधुनिक असम के निर्माण और विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे अंग्रेजों के विरुद्ध कई आंदोलन किए, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: बिल्कुल, और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और बाद में उन्होंने असम के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। असम की सांस्कृतिक पहचान, भाषा और भूमि की सुरक्षा के लिए भी लगातार कई प्रयास किए। दोस्तों, उनके नेतृत्व में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और संचार के क्षेत्रों में अनेक सुधार हुए थे।
1: बिल्कुल, और दोस्तों, उनके महान योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1999 में उनके मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, उन्होंने असम और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: और अब श्वेता इसी क्रम में एक और जानकारी दे देते हैं अपने साथियों को।
1: हाँ बिल्कुल
0: साथियों, अपना घर सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं होता, यह हमारी पहचान होती है, हमारा स्वाभिमान होता है। क्या आपका भी अपना सपना है अपना खुद का पक्का घर बनाने का? तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके इस सपने को सच कर रही है भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना।
1: दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत पक्के मकान के लिए पैसों की सीधी मदद बैंक खाते में भेजी जाती है।
0: सिर्फ पक्का घर ही नहीं साथियों, साथ में शौचालय, पानी और बिजली का पक्का कनेक्शन भी है साथ में।
1: कितनी अच्छी बात है। और अगर आप भी अपने परिवार को एक सुरक्षित छत और नई पहचान देना चाहते हैं, तो आज ही आवेदन करें। इसके लिए आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाना होगा या प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
0: हाँ साथियों, याद रखिए, अपना घर सिर्फ एक मकान नहीं, ये आपके परिवार का स्वाभिमान भी है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों मुझे लगता है कि आज क्यों ना एक और प्यारा सा फिल्मी गीत सुन लिया जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, और आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक, विद्युत विभाग की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जैविक खेती करो और खेतीबाड़ी के सुरक्षित रखो।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनो या सब किसान भाई बहन मन के कृषि जीवन पौराणिक संगे
0: मनोज भाई कर
1: जोहार।
0: जोहार। और ये कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाई का हाल चाल है बताओ, किसान खेती बाड़ी में चलत है?
1: हाल चाल तो बढ़िया है और हमारे बोटे किसान मन ने तो बड़ा बढ़िया खेती बाड़ी करे लाई है।
0: अच्छा, रोरे किसान ना लगे क्या?
1: हमो किसान है कि
0: तो कहो नहीं, रोरे भी खेती बाड़ी
1: हाँ,
0: करे थी बढ़िया।
1: लेकिन लेकिन किसान हमारे अगल बगल में जो किसान
0: अच्छा,
1: मन
0: रोरे
1: है ना
0: बड़का किसान है कि कोई बात नहीं, चलो
1: हाँ,
0: खेती बाड़ी लेकिन ठीक हुआ थे
1: बहुत
0: क्या?
1: बढ़िया से हुआ थे।
0: लेकिन
1: और
0: बरखा पानी मन हुआ था तो हमको लगा था कि खेती बाड़ी मन किसान है जिसन की नुकसान मन है कि फायदा हुआ था इकर से?
1: देखो इकर से फायदा भी है नुकसान भी है। काल के बहुत जगह तो पत्थर मने आवा थे और हवा तूफान ये सबसे जो है से खतरा भी है। बहुत जगह वज्रपात भी हुआ थे।
0: सही बात है। देखो वज्रपात कर बात कर ले तो भाई देखो एखन के बेरा में हमारे कर झारखंड राज्य में कहो तो बहुत बड़का कह ठंड का कहे ना, नहीं
1: ठंड का
0: ठंड का
1: कहना
0: गिर का संभावना रहे तो हमारे मन के जे सावधानी जरूर बरतक चाहिए है कि नहीं? और देखो ना भाई हमारे कर मोर तो देखिए कतना सारा जो यंत्र मन रहे कोर कुदारी मन रहे से भींग गला से खराब होते जाते,
1: हाँ।
0: तब तो भाई बरसात कर मौसम पहुँच जाते।
1: और देखो एखन आधुनिक माने कृषि यंत्र मन भी है जैसे रहो ट्रैक्टर हो गेलक या तो जैसे पानी पटाए वाला मशीन मन भेलक। तो उस समय उमन के भी समय से ग्रीसिंग वगैरह करवाए के चाहिए और मोबिल माने जे समय से चेंज करे हुए वो सब भी करवाए के
0: और
1: चाहिए।
0: देखो ने देखो जंग लगे के बहुत सारे ऐसे यंत्र मन है जेके कि खुला में रहे कर बाद जंग लग जाए तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाए रहे कि नहीं? तो कैमरा मन के समराय के रखे के और जे मशीनरी चीज कर बात है तो आराम से हमारे मन के ढाई के रखे के है कि
1: हाँ
0: नहीं?
1: हाँ हाँ सही
0: अब बीच
1: बात
0: बीच
1: है।
0: में अगर गाड़ी घोड़ा रखल है तो कि स्टार्ट करके छोड़े के ताकि बंद ना हो जाए खराब ना हो जाए है कि नहीं?
1: ताकि जेके कहे ना लुब्रिकेशन होते रहे है
0: सही
1: नहीं
0: बात है भाई। और देखो खेती बाड़ी तो हमारे मन करते रहे लेकिन देखो आजकल देखो नहीं तो सरकार तरफ से बहुत सारी योजना में चलाल जाए है जिसके हमारे लिए फायदा है। और योजना के बताएला कृषक मित्र मन बताएला
1: हाँ हाँ हाँ
0: है कि नहीं? चाहे हमरे मन बताइला चाहे पेपर कर माध्यम से हमारे मन जाए नीला, तो एक ठो इसने कृषक मित्र हैं जगह सरोरे गोठिया है तो हमरे मन हम क्या लगते कि सुने के चाहिए कि का
1: हाँ
0: गोठिया
1: हाँ
0: है कि
1: आओ
0: नहीं?
1: सुना थी।
0: और किसान मान ली कितना जानकारी कर बात है और कितना ही मन फायदा उठावे, चलो सुनीला आज कर जो कृषक मित्र है वो है नरेश पौराणिक इनकर से हमरे कर संगी गोठिया हैं के सुन है सुन ले रे।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी को उन्नत बनाने में और नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोगशालाओं से निकालकर सीधे हमारे खेतों की जीवंत मिट्टी तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ी और मजबूत कड़ी होते हैं वे हैं हमारे कृषक मित्र। ये वे कर्मठ साथी हैं जो स्वयं मिट्टी से जुड़े हैं और सरकार व वैज्ञानिकों की कल्याणकारी योजनाओं को अत्यंत सरल भाषा में आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनुभवी कृषक मित्र नरेश पौराणिक। आज इनसे हम विस्तार से जानेंगे कि इस बदलते मौसम में फसलों की देखरेख कैसे की जाए, सरकारी अनुदानों का लाभ कैसे उठाया जाए और कम से कम लागत में जैविक या आधुनिक तरीकों से उन्नत मुनाफा कैसे कमाया जाए। नरेश जी आपको हमारे स्टूडियो में

0: बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: आपको भी नमस्कार।
0: आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए कि आप कृषक मित्र हैं, कहाँ के कृषक मित्र हैं?
1: हम कृषक मित्र हैं रातू प्रखंड के ग्राम पुरियो के। हमको दो गांव दिया गया है, ग्राम पुरियो और परहेपाड।
0: आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कृषक मित्र की हमने आपकी क्या भूमिका है इस क्षेत्र में।
1: हम इस क्षेत्र में किसानों को जो सरकारी योजनाएं आती है उसको किसानों तक पहुंचाने का काम, उसको करवाने का काम और उसका लाभ दिलाने का काम करता हूं।
0: अभी किसानों के लिए आपके पास सरकारी योजनाएं कौन कौन सी आई?
1: अभी सरकार की ओर से किसानों का जमीन का सर्वे कराया जा रहा है
0: जी,
1: जो एक ऐप बना है DCS, डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो हम लोग अभी सर्वे का काम कर रहे हैं और सर्वे का काम में किसान का खेत कैसा है, वो बंजर भूमि है, खेती युक्त जमीन है कि नहीं, अगर खेती योग्य जमीन है तो उसमें कौन कौन सी फसल लगे हुए हैं, ये सब जो है ऑनलाइन के माध्यम से सरकार के पोर्टल पर हम लोग भेजते हैं
0: जी। तो अभी सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन सी फसलों को लगाने के लिए जोर दिया गया है?
1: सरकार अभी दलहन की खेती में ज्यादा जोर दे रही है
0: जी,
1: क्योंकि किसान जो है कि दलहन की खेती कम कर रही है और लत्तेदार सब्जी जो तुरंत मुनाफा हो उस पर ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि दलहन की खेती अति उत्तम है, उसको करना चाहिए। साथ साथ दलहन की खेती में अभी हम लोग जो है कि ब्लॉक के माध्यम से गर्मा मूंग, गर्मा मसूर, उड़द, अरहर, चना किसानों के खेतों में लगवाने का काम करते हैं
0: जी।
1: लेकिन अभी क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मा मूंग की खेती किसानों को अभी हमने कराया है। ग्राम पुरियो में किसान गर्मा मूंग लगाए हैं, ये बीज जो है निशुल्क किसानों को दिया गया है और हमारे किसान जो है कि बहुत अच्छी तरह से गर्मा मूंग की खेती किए हैं। इससे जो है कि किसान काफी खुश है कि मूंग की खेती हमने किया दलहन के रूप में।
0: तो ये जो दलहन की खेती किसान कर रहे हैं तो इसके लिए बीज जो है फ्री दिया गया है
1: जी। हमारे ब्लॉक में BTM होते हैं
0: जी,
1: प्रखंड तकनीकी प्रबंधक। तो कृषक मित्र और BTM के माध्यम से जो है कि जो भी सरकारी योजनाएं आती है वो किसानों तक पहुंचाते हैं हम लोग। अभी दलहन का जो बीज दिया गया है वो BTM के माध्यम से दिया गया है और कृषक मित्र किसानों को ला करके वो बंटवाए हैं और खेतों में लगवाए हैं। तो साथ साथ सरकार अभी मड़ुआ की खेती पर ज्यादा जोर दे रही है जिसको मिलेट मिशन कहा जाता है
0: जी,
1: क्योंकि पहले किसान मड़ुआ की खेती करते थे लेकिन आप धीरे धीरे मड़ुआ की खेती करना छोड़ दिए। तो सरकार का कहना है कि मड़ुआ की खेती से बहुत फायदे हैं, बहुत सी बीमारियां कंट्रोल में आती है, खाने में भी अच्छा लगता है। और सरकार जो है कि अभी एक और स्कीम चला दी है कि जो किसान मड़ुआ की खेती किए हैं उसको सरकार की ओर से प्रति एकड़ 3,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो हम जो है कि अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक मड़ुआ का खेती करवाते हैं और सरकार की जो ये 3,000 की जो योजनाएं हैं, जो प्रोत्साहन राशि है, अधिक से अधिक किसानों को दिलाने का काम हमने किया है।
0: किसान तो अपना खेती लगा दिए, खेतों में तो खाद की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: अभी कौन सी खाद के लिए सरकार के तरफ से जोर दिया गया है?
1: सबसे अच्छा चीज और खाद का जो जोर दिया गया है सरकार की ओर से, अगर रासायनिक खाद का प्रयोग किसान कर रहे हैं तो सरकार का कहना है कि नैनो यूरिया, नैनो DAP का प्रयोग करें। इससे क्या होता है कि अगर हम नैनो यूरिया या नैनो DAP का प्रयोग करते हैं तो संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग है ना पौधों के लिए किया जाता है, ना अधिक पड़े ना कम पड़े। अगर नैनो यूरिया का प्रयोग किसान कर रहे हैं तो 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में फसल में छिड़काव करें तो फसल को जो है कि हरा भरा रखता है और फसल का उपज भी अधिक होता है
0: जी।
1: साथ साथ सरकार जो है सागरिका खाद का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो सागरिका खाद भी बहुत अच्छा खाद है। हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि नैनो यूरिया के साथ साथ सागरिका खाद का भी प्रयोग करें। इसके प्रयोग करने की विधि है 5 से 10 ml प्रति लीटर पानी में पौधों पर छिड़काव हमारे किसान भाई करें ताकि पौधा जो है हिष्ट पुष्ट रहे और पैदावार अधिक हो।
0: जी, एक योजना है फसल सुरक्षा योजना। तो फसल सुरक्षा योजना क्या है और इसके तहत किसानों को क्या लाभ होते हैं?
1: फसल सुरक्षा योजना के तहत जो है किसानों को फसल में लगे कीट व्याधि बीमारी जो होता है उससे बचाव हेतु कृषकों को 100% अनुदान में दवा का वितरण हम लोग कराते हैं
0: जी,
1: जो कि ये सरकार की तरफ से दिया जाता है। अभी हमने तत्काल में किसानों के बीच कीट व्याधि जो रोग होती है उससे बीमारी से बचाव के लिए नीम युक्त दवा एजा डायरेक्टिन का वितरण हमने कराया है, जो इसका प्रयोग जो है किसान 5 ml प्रति लीटर पानी में पौधों पर छिड़काव करे। इस दवा के छिड़काव से कीट व्याधि रोगों से निजात मिलता है और किसान के फसल अच्छे होते हैं। साथ साथ एमिडा क्लोरोप्रीड ये भी दवा वितरण कराए हम लोग, इसका प्रयोग किसान 0.5 से 1 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना करके पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा दवा हमने अनुदान के रूप में वितरण कराया है क्यूनाल फोस। क्यूनाल फोस का प्रयोग जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ साथ क्लोर पायरीफोस ये भी अच्छी दवा है, ये भी दवा किसान के बीच वितरण किए हैं, इसका कोई पैसा लिया नहीं गया है। इसका प्रयोग किसान 3 ml प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग देखते हैं कि किसान खेती तो लगाते हैं
0: जी,
1: पौधा अच्छा होता है, लेकिन पौधों में बीमारी भी आने लगती है, जैसे फफूंद नाशी रोग, जिसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं झुलसा रोग, है ना। तो इसके लिए भी हमने अभी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट माने निशुल्क दवा दिए हैं, जो कि किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। वो दवा का नाम है कार्बेंडा जिम और दूसरा दवा है मोनेको जेब
0: जी।
1: कार्बेंडा जिम का प्रयोग जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में किया जाता है और मैनको जेब ये 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका किसान भाई छिड़काव करे, ताकि फसल में जो झुलसा रोग हुआ है उससे निजात मिले, छुटकारा मिले और पौधा अच्छा हो, ताकि उपज अच्छी हो और मुनाफा भी अच्छा किसान को मिले।
0: तो इन सब के लिए किसान साथियों को ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, उन लोगों को ट्रेनिंग की कोई सुविधा है कि खेती बाड़ी को हम कैसे अच्छे से कर सकें, इसके बारे में?
1: हम लोग गाँव में किसान गोष्ठी का प्रोग्राम करते हैं
0: जी,
1: सभी किसान को या तो पंचायत भवन हो या सामुदायिक भवन हो या गांव का अखाड़ा हो, इसमें प्रायः किसान को जो पढ़ा लिखा हो, किसान गोष्ठी में जो चर्चाएं होती है कैसे अच्छी ढंग से आप खेती करें, जैविक खेती करें, जैविक खाद का प्रयोग करें, रासायनिक खाद का कैसे प्रयोग करें और आप खेती कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, इसके लिए जो हम लोग किसान गोष्ठी होता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जिला से प्रखंड से कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं
0: जी,
1: उनको बुलाया जाता है। जैसे हमारे प्रखंड के BTM होते हैं, ATM होते हैं, साथ साथ अच्छे किसान होते हैं, तो सभी मिलकर के जो है कि खेती के बारे में चर्चाएं करते हैं ताकि अच्छा खेती हो। तो किसान गोष्ठी जो हम लोग करते हैं तो उससे सारी जानकारी किसानों को मिल जाती है कि कैसे खेती करे, वैज्ञानिक खेती करे। आजकल क्योंकि सरकार वैज्ञानिक खेती पर ज्यादा जोर दे रही है ताकि अधिक उपज हो, तो इस पर जो है कि हम लोग किसान गोष्ठी का कार्यक्रम कराते हैं और उसके माध्यम से जो है कि किसानों को जानकारी देते हैं कि अभी आप खेती कैसे करें, सरकारी योजनाएं क्या क्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको किसानों के बीच हम लोग पहुंचाते हैं
0: जी।
1: साथ साथ हम लोग एक काम और करते हैं, कृषक पाठशाला। तो कृषक पाठशाला का जो प्रोग्राम होता है तो जो अच्छे किसान होते हैं, जो पढ़ा लिखा किसान होते हैं, उसको क्या करते हैं कि प्रखंड से बाहर हम लोग भेजने का काम करते हैं, ताकि जैसे जिला गया या राज्य गया तो उसमें जो है कि बहुत सारे किसान हर जगह से, हर प्रखंड से, हर जिला से आते हैं, तो दूसरे प्रखंड दूसरे जिले के किसान से भी मिलने का एक मौका मिलता है। तो इससे क्या होता है कि नए नए खेती करने का तरीका पता चलता है और वो आकर के अपना खेती को अधिक बढ़ावा देते हैं, अच्छे खेती करते हैं और साथ साथ अच्छा मुनाफा कमाने का काम करते हैं
0: जी। तो किसान भाइयों, आज हमारे कृषक मित्र नरेश जी ने हमें जो बहुमूल्य बातें बताई, चाहे वह आधुनिक खाद का संतुलन हो, जैविक खेती की खूबियां हो या फिर कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाना हो। ये सारी सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ हमारी खेती को एक नई दिशा देने वाली है। उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने खेतों में भी जरूर अमल में लाएंगे। तो नरेश जी, आपको हमारे स्टूडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो भाई देखो, एखन हमारे मन के जानकारी दिले किसान मित्र रहे जेकर से हमारे कर संगी कृष्ण जीवन भाई गोठियाले। सही बात है भाई, देखो रो मन कर कोनो चीज़ का जानकारी नखे तो किसान मित्र से जरूर संपर्क करक चाहिए। और संगे संगे हमारे मन तो जानकारी देते रहिले है कि नहीं।
0: हाँ सही बात है। और अब कार्यक्रम के चलो आगे बढ़ा थी, एगो गीत सुन लो थी, जानकारी करवा थे, एगो गीत जरूरी है सुनना है ने, तो आओ सुना थे सुभाष कोरियर संगी मनकर गावली गीत के।

0: गीत रहे खेती बाड़ी के ना ढीली हा।
1: सही बात है। संगे साथी मन भाई बहन, देखो हमारे मन के खेती बाड़ी के ढेले न खे और बढ़िया से खेती बाड़ी करे है और मिलजुल के करे है तो एकदम सफलता अपने आप भेटे है कि नहीं। तो भाई अब एकर बाद जानकारी भी कुछ और भी हो एक चाहिए है कि नहीं।
0: हाँ, तो जानकारी में देखो हमारे तो रोज दिन कोई नहीं कोई किसान मन से भेंट करवाते रही ले। तो आओ एगो किसान से आज भेंट करवा थी। किसान है शिवशंकर भगत और इनकर से भेंट करत हैं हमरे कर संगी विष्णु राम।
2: नमस्कार, जोहार किसान भाई। आज हम ऐसे किसान से बात करने जा रहे हैं जो कि किसान उत्पादन संगठन FPO के सदस्य हैं। इनका पद है CEO और इनका नाम है शिवशंकर भगत और इनका गांव है ताला परवाटोली और ये चाणो प्रखंड के अंतर्गत आता है। बड़ा ही सफल किसान है और किसानों का मदद भी कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से बातें करते हैं। नमस्कार किसान भाई।
3: नमस्कार।
2: आप FPO के सदस्य भी हैं और किस तरह से ये FPO काम करता है?
3: FPO मतलब हो गया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है हिंदी में किसान उत्पादक संगठन। FPO केंद्र सरकार की योजना है जिसमें FPO का मेन उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुनी करनी है और खेती में लागत करना है। इसको कैसे लागत को कम करे तो इसमें है कि जैसे कि मानिए खाद भी जाता है तो इसको बिचौलिया लोग कमाए होता है। इस चीज में किसान FPO में किसान अपना खाद खुद ही मंगा सकते हैं और इसमें लागत भी कम लगता है।
2: तो ये जो किसान लोग हैं गांव घर में तो उन लोग को सही से मालूम नहीं रहता है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किसान को कैसे फायदा हो, इसके लिए आप काम कर रहे हैं?
3: इसके लिए यहाँ FPO में NGO काम कर रहा है जिसका नाम है नवभारत जागृति केंद्र। ये 2 साल तक FPO में रह के किसानों को कुछ योजनाएं के लाभ देंगे और उनको कुछ ट्रेनिंग भी कराते हैं और इसमें है कि इसको फंडिंग कर रहे हैं अमेरिका का मेटलाइफ कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है।
2: और आप तो बहुत अच्छे से ये FPO और NBJK के बारे में जान रहे हैं और आप इसमें आप कैसे आए, शुरुआत इसका आप कैसे किए?
3: इसका शुरुआत देखिए, पहले तो हम FPO के सदस्य भी नहीं थे ना इसमें। हम अभी जनवरी में FPO का CEO पद में कार्य कर रहे हैं। तो NBJK के यहाँ आया हुआ था जनवरी में यही साल। तो इसमें जब विलेज लेवल में मीटिंग हो रहा था, मतलब ग्राम विकास समिति बना रहे थे ताला पंचायत में, तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट किए जाने, तभी इनके बारे में जुड़ के हम FPO के पद CEO का पद खाली था यहाँ, तो इसमें इंटरव्यू देके हम ज्वाइनिंग किए।
2: अच्छा, तो आप ये किसान भी हैं और साथ में FPO के सदस्य में आप पद में CEO भी हैं। खेती बाड़ी आप कब से कर रहे हैं?
3: खेती बाड़ी तो अभी हम स्टार्टिंग ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे जुड़ के NBJK के जो यहाँ कार्य कर रहा है इसमें किसान लोग को बहुत सारा हेल्प भी कर रहा है। मल्चिंग करना, ड्रिप इरिगेशन, मॉडर्न टेक्निक से फार्मिंग करने का जानकारी दे रहा है और उसका ट्रेनिंग भी करा रहा है।
2: तो आप इसमें आए भी और सीखते भी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करते जा रहे हैं।
3: इसका इसमें हम जुड़ के यही यहाँ जो गवर्नमेंट साइड से बेनिफिट मिल रहा है, जो हम अभी तो यहाँ फर्स्ट बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसकी मदद से हम सीख भी रहे हैं और लोगों को कुछ बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं।
2: बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को किस तरह से मदद मिलता है, किस तरह से खाद बीज और सिंचाई के संसाधन मिलते हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
3: FPO के माध्यम से गवर्नमेंट FPO में किसान को डायरेक्ट मतलब खाद बीज का लाइसेंस का मुहैया कर दिया जाता है। इससे किसान को अपने ही पंचायत स्तर में खाद बीज का भंडार यहाँ खुद मंगा सकते हैं और इसमें किसान को मार्केट से कम प्राइस में अपने पंचायत अपने विलेज में ही खाद बीज मुहैया कराया जाता है।
2: और सिंचाई के लिए जैसे अभी बिजली की बहुत कटौती होती है, सही से बिजली नहीं रहती है, तो इसके लिए ये सोलर सेल का भी प्रावधान है क्या?
3: देखिए इसमें हो गया कि मान के चलिए यहाँ बिजली का बहुत ही बड़ी समस्या है, बिजली यहाँ रहता नहीं है, तो यहाँ सिंचाई के लिए नवभारत जागृति केंद्र की ओर से किसान समृद्धि योजना के तहत 30 किसानों के ग्रुप में सोलर पंप सेट की दिया जा रहा है। इससे किसान ग्रुप में रहकर सोलर पंप सेट से सिंचाई कर सकते।
2: ये दिन में जब तक सूरज का रोशनी रहेगा तब तक एकदम भरपूर सिंचाई कर सकते हैं। और ये जो सिंचाई के लिए टपक सिंचाई विधि जो कि बहुत ही अच्छा है और कम सिंचाई का साधन आजकल जैसे कि जल स्तर कम होता जा रहा है, तो इसके लिए टपक सिंचाई व्यवस्था के लिए ड्रिप जो लगाया जाता है वो भी इसके अंतर्गत आता है क्या?
3: हाँ, एपीओ के माध्यम से किसान लोग को मॉडर्न टेक्निक फार्मिंग के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें ड्रिप मल्चिंग से खेती करने के तरीका सिखाए जाते हैं, इसका ट्रेनिंग भी किया जाता है। ड्रिप लगाने से यह फायदा होता है कि किसान को मेहनत में कमी आती है, उसको पटवन में समय नहीं लगता है और उसका समय भी बचता है।
2: और जो पुराना विधि से जो खेती करते हैं उसको बहुत सारा समय भी लगता है और पानी की बर्बादी होती है।
3: ड्रिप लगाने से यह बेनिफिट होता है कि किसान को पानी की लागत कम लगती है और उसका लेबर कॉस्ट जो निराई गुड़ाई करते हैं वो चीज से दूर हो जाते हैं। और दूसरी चीज है कि ड्रिप और मल्चिंग से उसका उत्पादन में भी वृद्धि होता है।
2: इस एपीओ में आप जनवरी से काम कर रहे हैं तो आपके इस ग्रुप में कितने सदस्य हो गए हैं?
3: इस एपीओ में हम 350 सदस्य जुड़ चुके हैं और ये सभी सारे किसान जुड़ के सरकारी लाभ दिलाने का कोशिश कर रहे हैं।
2: तो आप गांव घर में रह के किसानों के लिए मदद करने का प्रयास कर रहे हैं इस ग्रुप के माध्यम से, तो बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आप युवा हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: कोई भी किसान या युवा अगर पंचायत लेवल में कोई एफपीओ अगर चल रहा है तो उसमें आप जुड़ के यहाँ गवर्नमेंट का स्कीम या कोई भी योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा।
2: एफपीओ के सदस्य जो भी हैं वो इस किसान से जुड़े कोई भी काम में उन लोग को सुविधा मिल रहा है।
3: हाँ, एफपीओ में जुड़ने से यही बेनिफिट हो रहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। पंचायत स्तर या विलेज स्तर में आपका जो भी दिक्कतें हैं वो चीज का समाधान हो जाता है। मान के चलिए कृषि यंत्र के लिए कोई भी चीज चाहिए जिसमें विलेज लेवल में नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट कृषि यंत्र पे भी 80% का सब्सिडी देके देते हैं और हर एफपीओ के लिए 2 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट गारंटी के तहत देते हैं। और कोई भी बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, ये सब का भी सुविधा यहाँ है।
2: किसान शिवशंकर जी, आपने बहुत ही अच्छे से इस एफपीओ के बारे में बताया और किसानों का मदद भी कर रहे हैं और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपको भी मेरी ओर से धन्यवाद है।
1: तो देखो भाई, आज कर किसान रहे हैं शिवशंकर भगत, जेकर से हमारे कर संगी विष्णु राव कोठियाले। तो हमको लगा था कि बेरा में सिरा थे कि सिराला का
0: सिराला की
1: तो बताओ ने
0: इकरे संगे
1: कार्यक्रम का
0: प्रायोजक सिरालक कार्यक्रम का प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और प्रस्तुति रहे संजय कुमार लाल का।

0: आइज कर बचत काल कर सुरक्षा।
1: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के एक बार फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: और मनोज भाई कर जोहार।
1: जोहार।
0: और भाई देखो अब तो बेरा हो गया हमारे दुनिया कर, तो हमारे दुनिया में देखो बहुत सारा जानकारी कर संगे संगे हमारे मन गीत गोविंद भी होयला है नहीं। और जैसे इनके शुरुआत बेरा में कहले कि आइज कर बचत काल कर सुरक्षा, इकर मतलब तो का बताए तो तनी।
1: एक मतलब हला कि जैसे बचाए के राखब तो काल जे है से काम देवी है
0: सही
1: नहीं।
0: बात, सही बात।
1: और बचाए के तभे राखब जबकि माने बची तभे जब फिजूल खर्ची से बचब
0: और सही बात है
1: है
0: देखो
1: नहीं।
0: अब हमरे मन के खाली कचिया के बचाए के नखे, हमरे मन के हियाँ कर संसाधन, हियाँ कर पानी, हियाँ कर बहुत सारा पेड़ पौधा मन के सबके हमरे मन के बचाए के रखे के जबकि आवे को भविष्य में उनके लिए काम आवे है कि नहीं।
1: और देखो जमा करे कर वह है कि जब जैसे फिजूल खर्ची जे खान हम कहली तो काम कर जे चीज है सीखे कीनू सीखे यूज करूँ और अपन कचिया के बचाऊ और बचत करूँ।
0: देखो नहीं तनी दिन पहले देखब तो हमरे मन के पेट्रोल कर कितना दिक्कत हुआ था
1: हाँ तब
0: के बचा ली तब नहीं हमरे मन के खन काम आवत है।
1: काम आवत है
0: तो
1: तब
0: भाई इसने हमरे
1: सही
0: मन के
1: बात के धर ली।
0: इसने हमरे मन के सब कुछ के बचाए के है और अपने गतर के भी बचाए के हमरे मन के स्वस्थ भी रहे के है कि
1: हाँ
0: नहीं।
1: तो एखन जे मौसम में उतार चढ़ाव जे हुआ थे इकरो तनी ध्यान राख के और जे है से एखन का जे है से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के कम हो जाए ला जैसे ठंडा होला गर्म होला के नहीं देखा थी तुरते तुरते जे है से बुझा लागे ला कि स्वेटर पहनू कहक तरी और
0: तुरते लगे
1: तुरते
0: कि
1: जे है से
0: बरसाती के लगाओ।
1: हाँ बरसाती के लगाओ और फिर जैसे गर्म से हालत खराब है नहीं।
0: तो भाई देखो हमरे मन के सब कुछ के बचाए के और आवे वाला भविष्य ले हमरे मन के जोगाए के भी रखे के है कि नहीं। तो भाई अब देखो बात कर ले जोगाए कर सब कुछ कर बात कर ले कि काठो गीत सुन के हमरे मन गीत कर आनंद लेव तो कैसे रही है कि नहीं।
1: बहुत बढ़िया रही तो आओ
0: चलो
1: गीत
0: तो
1: करो और करा थी
0: सरिता देवी और संगीमन कर गावल।

0: तो भाई देखो, एक नाम रवन सुन ली खोठा में, रीता कुमारी और संगी मनकर गाओल गीत, इकरे संग आइज कर हमारे दुनिया कर मेरा सिरा थे। तो कहक चाहती कि खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, द्रोर मन का संगी मनोज और
1: कृष्ण जीवन पौराणिक विदा देव
0: जोहार।
1: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, बस थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोक चुके हैं अंतिम कील। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रहे वैद्यनाथ राम को घोषित किया अपना प्रत्याशी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता अ ट्राइबल कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, जनजातीय जीवन दर्शन जल जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का देता है संदेश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की अपील। कहा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को बनाए सफल। और जापान के काकामेगाहारा में भारत ने जीता अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने दागे 3 गोल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजनों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं।
6: हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं। नक्सलवाद की जड़ें किसी झारखंड में भी बहुत रूप से मजबूत थी, पर हमारे गृह मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हम नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करेंगे। आज जो उग्रवाद की घटनाएं होती थी, जिस प्रकार नक्सलवाद था, आज उसको पूरी तरह से समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई।
5: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की 1 सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं।
7: केंद्रीय अध्यक्ष सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा कर
8: हम अपनी पार्टी से वैद्यनाथ राम जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे।
5: इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता अ ट्राइबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति, सामुदायिक जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ उसका गहरा संबंध राज्य की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय जीवन दर्शन जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण संदेश देता है। जामताड़ा जिले में एसआईआर के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जागरूकता शिविर में आज विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए और मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में एसआईआर अभियान को सफल बनाने की अपील की।
9: हम लोगों का आदमी सीधा है, तमाम विषयों के बारे में उतना सचेतन नहीं रहता, इसलिए हमारा संगठन तत्पर है। अगर एसआईआर में नाम छूट जाएगा, मतदाता सूची से नाम हट जाएगा, इनको हम अपने मौलिक अधिकार को खो बैठे। इसलिए हमारा जो लड़ाई है, इस मौलिक अधिकार को बचाने का लड़ाई है, ताकि एक भी जग मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे।
5: सरायकेला खरसावां जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के तहत बूथ लेवल अधिकारी के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक शिक्षिका और एक स्वास्थ्य सहिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गम्हरिया ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र भेजा है। अंचल अधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि नियुक्त कर्मियों की ओर से दायित्वों का निर्वहन नहीं किए जाने से मतदाता पुनरीक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका है। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य पारदर्शी तरीके से करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रविन्द्रनगर भवन में आयोजित शिविर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने एसआईआर के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और प्रपत्रों के बारे में विस्तार से बताया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण किसान बागवानी को अपनी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहे हैं। एरेंडा गांव के आसपास ग्रामीण किसान इन दिनों आम, तरबूज सहित अन्य कई फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
10: मनरेगा की तरफ से लगाए, पास हुआ, फिर आम लगाने के बाद हम लोग वहाँ ड्रिप सिस्टम से हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती भी किए, टमाटर का खेती भी किए, मान सारा खेती बाड़ी उसी में हम लोग तिवारी भी हो रहा है।
11: यहाँ पर ड्रिप सिस्टम से हम लोग खेती किए, तो वही से हम लोग शुरुआत किए और अभी इसी के कारण आम बागवानी भी अच्छा ही फल दे रहा है।
5: लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक में विभाग की दो प्रमुख योजनाओं, मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पहुंच पथ वाले टोलों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जुलाई माह तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाए और जहां पहुंच पथ उपलब्ध नहीं है वहां विशेष प्रकार के पोल एवं अन्य तकनीकी विकल्पों के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य किए जाएं। उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंता समन्वय स्थापित कर कार्य करें। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में डुमरी गिरिडीह पथ पर पिपराडीहा के ओवरब्रिज के समीप आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक पिता एवं पुत्र हैं, जबकि एक किशोरी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पेड़ों के आसपास न रहें और सुरक्षित स्थानों में शरण लें। राज्य भर में जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भीषण गर्मी और जल संकट के कारण परेशान हैं। जिले के नारायणपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव चरकपानी के लोग डोभा का पानी पीने को विवश हैं। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरों के लिए भारतीय टी20 टीम की घोषणा की है। श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को क्रमशः कप्तान और उपकप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया है, उन्हें टीम में भी जगह नहीं मिली। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय सीनियर टीम में चुने गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची। प्रबुद्धजन सम्मेलन में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोक चुके हैं अंतिम कील। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रहे वैद्यनाथ राम को घोषित किया अपना प्रत्याशी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता और ट्राइबल कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, जनजातीय जीवन दर्शन जल जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का देता है संदेश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की अपील। कहा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को बनाए सफल। और जापान के काकामेगाहारा में भारत ने जीता अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने दागे 3 गोल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
12: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बूथ स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी उपस्थित रहे। श्री पांडे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि SIR की प्रक्रिया में सभी को सहयोग करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने विगत महीनों में अन्य राज्यों में SIR के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल भी किया।
2: स्पष्ट था कि SIR को जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें हम लोग सहयोग भी करें और हमारा ये प्रयास हो कि कोई भी व्यक्ति जो वोटर है, जो पात्र है, उसका वोट कटे नहीं, का नाम कटे नहीं, और जो नए लोग हैं, नौजवान जो साथी है जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, उनका नाम उस वोटर लिस्ट में जुड़े। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, उस प्रक्रिया से आप लोग भी वाकिफ होंगे।
1: जिले के शिक्षा विभाग में विज्ञान किट की आपूर्ति में कथित घोटाले से संबंधित शिकायतों पर जांच टीम गठित की गई है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने कहा है कि जांच टीम द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: ये है कि साइंस किट का जो पैसा है वो 2024-25 का जो है उसमें आया हुआ था स्कूलों को। मामला जिसमें आया ये कहा गया है कि कोई एक निजी फर्म है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो अपना मिली भगत करके DRC से जो है वो संबंधित राशि की निकासी की गई है, और जो साइंस किट जो विद्यालय को दिया जाना था वो भी नहीं दिया गया। जबकि जो नियम है उसमें ऐसा है कि जब तक आपूर्ति सामानों की नहीं हो तब तक कोई भी राशि को विमुक्त नहीं किया जाना होता है।
1: जिले में नशापान के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जागरूकता लाने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उपायुक्त मनीष कुमार ने विशेषकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू या नशीले पदार्थों के सेवन से उन्हें दूर रहना चाहिए।
4: और तरह तरह की एक्टिविटीज़ हमारे पूरे जिले भर में चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग किस प्रकार से और अधिक जागरूकता फैला सके लोगों में। प्रत्येक दिन 3500 के आसपास लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस बुरी आदत से। आपके माध्यम से भी युवाओं से विशेषकर अपील होगा कि तंबाकू पदार्थों को, उत्पादों को हम लोग कम से कम प्रयोग करें और इसे बिल्कुल ही छोड़ दें। आम जीवन में इनके उपयोग से हानि ही है और हम अपने जिले को ड्रग्स, तंबाकू इत्यादि के दुष्प्रभाव से जितना बचा सकते हैं उतना ही हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है सार्थक होगा।
1: इस सिलसिले में नशीले दवाओं की खरीद बिक्री की रोकथाम को लेकर दवा विक्रेताओं के साथ भी आवश्यक बैठक की गई और उन्हें सुरक्षात्मक कई निर्देश दिए गए हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे हो लोकगीत कलाकार थे यशमती टीव एवं साथी। और आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार नागपुरी उराव मुंडारी हो एवं संथाली भाषा में।
1: ये आकाशवाणी रांची है के अब रोरे में अंजू कुमारी से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सुनूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना मन के सशक्त बनाक संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर लें। सम्मेलन में झारखंड संगे 26 राज्य और 4 को केंद्र शासित प्रदेश मनकर प्रतिनिधि मन भाग ले लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कर 134वां कड़ी में रांची में आयोजित 29वां राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता कर चर्चा कर लें। प्रधानमंत्री कई गो स्पर्धा मन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए वाला खिलाड़ी मन गुरिंदर वीर सिंह विशाल टीके तेजस्विन शंकर देव मीना और कुलदीप कुमार के बधाई दिलें।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड कर 2 दिवसीय दौरा में आज रांची पहुंच लें। पार्टी कार्यकर्ता मन उनका जोरदार स्वागत कर लें। पहला दिन रांची में प्रदेश कोर कमेटी सांसद मन और विधायक मन का संगे संगठनात्मक बैठक मन में भाग लेके आगामी कार्यक्रम मनकर समीक्षा कर लें। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लेके सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस बटे से उम्मीदवार कर घोषणा करल पाछे झामुमोह दुयो सीट ले प्रत्याशी देवे कर ऐलान कर लग जेकर से सत्तारूढ़ गठबंधन में विवाद बढ़ जाए। यह माझे कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री से मिलवें और भाजपा आज अपन प्रत्याशी कर घोषणा कर सकेला। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश कर 42 पंचायत मन के सम्मानित कर लें। इकर में झारखंड कर पाकुड़ जिला कर झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत के महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में गोटा देश में दूसरा स्थान मिल है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट करके छात्र मन के गिरिडीह विश्वविद्यालय से संबद्ध करे से उठल समस्या मन कर चर्चा कर लें। बैठक में महिला एवं बाल विकास कर केंद्रीय योजना मन में हो बातचीत होलक। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर 12 बरिस पूरल से झारखंड भाजपा जनसंपर्क अभियान और खास कार्यक्रम मनकर आयोजन करत है। पार्टी ई मौका के विश्वास और जन कल्याण कर उत्सव कर रूप में मनात है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय कर खेत बचाओ अभियान से अब तक 9,42,000 से अधिक किसान मन जुड़ल जा हैं। 30 जून तक चलेक वाला ये अभियान के तहत 17,000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम मनकर माध्यम से किसान मन के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जैविक पोषक तत्व मनकर उपयोग कर व्यवहारिक जानकारी देवल जात है। नई दिल्ली में कुछ दिन पहले जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय मंत्रालय कर माझे समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करल गेलक जेकर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से जुड़लें। बैठक में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल मानक मनकर अनुपालन ले झारखंड के 2500 करोड़ रुपया आवंटित करे कर बात कहलें। राज्य सरकार नशीला चीज मनकर तस्करी रोके के लिए नवा इनाम योजना कर अधिसूचना जारी कई है। इकर तहत नशीला चीज मनकर अवैध व्यापार और उत्पादन कर सूचना देवे वाला आम जनता के पुरस्कार देवल जाई। केंद्र सरकार CBSE कर ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़ल विवाद कर पाछे बड़ कार्रवाई कई है। सरकार बोर्ड कर अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता कर बदली कर दे है। संगे है खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितता मनकर जांच ले एक सदस्यीय जांच समिति कर गठन करल जा है। रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लेके आई से सब मतदाता केंद्र मन में 2 दिवसीय विशेष शिविर कर आयोजन करल जात है। रांची कर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री मतदाता सूची कर शुद्धता ले राजनीतिक दल मन से सक्रिय भागीदारी और BLO से समन्वय कर आग्रह कर रहे हैं। झारखंड सिपाही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2000 2015 से जुड़ल मामला में उच्चतम न्यायालय 888 गो अभ्यर्थी मन के बहुत राहत दे है। न्यायालय राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कर खाली पद मनकर विरुद्ध ये अभ्यर्थी मनकर दावा पर पुनर्विचार करे कर निर्देश दे है। रांची जिला पुलिस प्रतिबंधित संगठन PLFI कर दो उग्रवादी मन की गिरफ्तार कई है। ये उग्रवादी मन नगरी क्षेत्र कर एगो व्यापारी से वर्चुअल कॉल कर जरिए 50 लाख रुपया कर रंगदारी मांग रहे। मौसम विभाग राज्य में 17 से 20 जून कर माझे संताल परगना क्षेत्र कर डहर से मानसून ढुके कर संभावना व्यक्त कई है। इकरे संगे आकाशवाणी रांची से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सिरालक।
3: ईद आकाशवाणी रांची तली अक्कु नेम पीरी पुष्पलता टुप्पुंती कुडुखनु हफ्ता खबर मेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली नु एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी गुट्टीन अरा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना गुट्टीन बड़ियर कमना ती जोड़ो का राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर नंजा। सम्मेलन झारखंड संगेम 26 गो राज्य गुट्टी अरा 4 गो केंद्र शासित प्रदेश गुट्टी की अगुवर भाग होचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 934वां कड़ी नु रांची नु मंजका 29वां राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता की पत नु तिंग्यस। प्रधानमंत्री नन्ना नन्ना खेल नु राष्ट्रीय रिकॉर्ड कम उ आबोर खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंहस विशाल टीकेस तेजस्विनी शंकरस देवमीनस अरा कुलदीप कुमारस गे बधाई चिच्चस।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड की 2 रोज की दौरा नु इन्नर रांची अड़सियस आस घी बरचका नु पार्टी नु नलक ननूर आस घी अकैत दो स्वागत नंजर। पहला उल्ला आस रांची नु प्रदेश कोर कमेटी सांसदर अरा विधायकर गने संगठनात्मक बैसकी नु भाग हो अर्की आगिंता कार्यक्रम की समीक्षा नंजस। झारखंड नु राज्यसभा चुनाव हो अर्की सियासी हलचल तेज मंज की किरकिर रही। कांग्रेस तरती उम्मीदवार की घोषणा नंज का होखा झामुमो धू दुयो सीट नु उम्मीदवार एताना घी ऐलान नंज की रही, जबकि भाजपा इन्ना तमह उम्मीदवार की घोषणा नना उंगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंहस नई दिल्ली नु मंजका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह नु देश ता 42 गो पंचायतन सम्मानित रंजस। या झारखंड ता पाकुड़ जिला ता झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत महिला हितैषी पंचायत श्रेणी नु देश भर नु दूसरा अड्डा उन्द्रा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी केरका उल्ला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अस्ती भेंट ननर की कोडरमा तब बचू खदरिन गिरिडीह विश्वविद्यालय ती जोड़ना ती उपचार का समस्या मंजा चर्चा नंजा। बैसकिनु महिला अरा बाल विकास की केंद्रीय योजना गुट्ठी मंजा हूँ राय रोजट मंजा। केंद्र नु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेही 12 बरिस पूरा मंज का मंजा झारखण्ड भाजपा जनसंपर्क अभियान अरा विशेष कार्यक्रम नना लगी। पार्टी एक मौका विश्वास अरा जन कल्याण घी परब घी रूपे नु मनावा लगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय घी खेत बचाओ अभियान ती अक्कु गोटी 942,000 ती बग्गे किसानर जोड़ कर नर 30 जून गोटी चल रू आबो ई अभियान तरती 17,000 ती बग्गे जागरूकता कार्यक्रम घी माध्यम ती किसानर गे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन अरा जैविक पोषक जिनिस गुट्टी घी उपयोग घी व्यवहारिक जानकारी चीतार अलगी। नई दिल्ली नु किरका उल्ला जन जीवन मिशन 2.0 तरती झारखंड सरकार अरा केंद्रीय मंत्रालय घी मजी समझौता ज्ञापन नु सही नंतारा एकदा नु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनस वर्चुअल माध्यम ती जोड़ रस। बैचकी नु केंद्रीय मंत्री CR पाटिलस मानक घी अनुपालन मन्या झारखंड के 2,500 करोड़ रुपया चीना घी कथा नंजस। राज्य सरकार नशा घी जिनिस गुट्ठी की अवैध कारोबारन रोक आगे पुना इनाम योजना की अधिसूचना जारी नंज गिरी या नशा घी जिनिस गुट्ठी की अवैध कारोबारन अरा पैदा घी सूचना ची आबो आम आलर गे पुरस्कार चीतार ओ केंद्र सरकार की मुस्कान कार्यक्रम तीन रांची ता सदर अस्पताल अकू नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन हक्कू आबो झारखंड ता पहला सरकारी अस्पताल कमर की किरकी रही राष्ट्रीय मूल्यांकन नु अस्पताल 96.61% नंबर उन्द्र की रही इदी संगम आकाशवाणी रांची ती कुड़कनु हफ्ता खबर मुंजरा
4: नया आकाशवाणी रांची तना मर ना दोहोड़ो जगर ते धने गुड़िया तेने हफ्ता रिया खबर बु आयुम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली रे आदिवासी को अहनरा गोट और अहनरा काजी कामी को पोकोत बाई दुनुम रिया उद्घाटन केदा ने दुनुम रे हिसी तुरिया राय जमा झारखंड और उपना केंद्र शासित प्रदेश रेंसेले धन को जमा लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन रेया जगर रेया मित सय हिसी गेल अपी रेडियो रेया चनम रे हिसी अरेया राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इनुंग रेया जगर है उदुप केदा। प्रधानमंत्री गेदला इनुंग रे रेकॉर्ड बाई इनुंग हरिया गुरिंदर बीर सिंह विशाल टीके तेजस्विन शंकर देव मीणा उड़ो कुलदीप कुमार तेको के बधाई है उमट कुआ।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
4: भाजपा रे राष्ट्रीय दुनुम गोमके नितिन नवीन झारखंड रेया बारसिंग रेया होनोर मेनते तिसिंग रांची सेटर लेना। इनकिन पार्टी कामिया को जोर दारों के किना इनकिन सीधा हुलंग रांची रे राज रेन कोर कमेटी एमपी ओडो एमएलए को लोए दुप जाना ओडो आयर रेया काजी कामी को रे जपगर जाना। झारखंड रे राज्यसभा सनला मेनते राजनीति जोर कना कांग्रेस सायते होड़ो तिंगुरे काजीरो तयमते झारखंड मुक्ति मोर्चा बरन हुदरे होड़ो तिंगुरे काजीरो दकदा नेथला कांग्रेस एमएलए मुख्यमंत्री लो नपमा जबची भाजपा तिसिंग आया होड़ो को अनुतुमा नितरेया। केंद्रीय मंत्री राजू रंजन सिंह नई दिल्ली रे दिसुम रेया पंचायत पुरस्कार जलसा रे दिसुम रेया बार हिसी बारिय पंचायत को मान जना नया रे झारखंड रेया पाकुड़ जिला रेया झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत के गोटा दिसुम रे बर टायर नाम जना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सेनोजन समय रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लो नपम को आते कोडरमा रे पढ़ान को गिरिडीह विश्वविद्यालय ते जुड़ेन काजी रिकिन जपगर जना ओड़ो दुनुम रे कुड़ी ओड़ो होन को हनरा काजी कामी विषय रे जपगर जना। केंद्र रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेल बार सिरमा होबजन रे झारखंड भाजपा

0: কল অনাপম কয়েতে কাজী কামে নেডালদা পার্টি নে হালা জলারে বিশ্বাস ওড়ো হড়ো কো বুগিন জালসা লেকা মানাতিং লাদা কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রালয় ওতে বাচাও উলগুলান রে না সান্তেন আরে লাখ বার হিসি বার হাজারে তে আধিকা খেতিয়ার কো জোড়াও কানা নয় দিল্লি রে সেনোজন সময় রে জল জীবন মিশন বারিয়া লেগাতে ঝাড়খণ্ড সরকার ওড়ো কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয় থালা রে বাপাই রে নুতুম কো ওল কেদা নিয়া রে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন অনলাইন লেগাতে জামালেনা রাজ্য সরকার নু বুল জিনিস কোর আকরিং রোকাও মেনতে নাওয়া ইনাম এম কাজি কামি কাজী নিতির কেদা নিয়া লেকাতে কা ঠাউকা লেকাতে বুলো জিনিস আকরিং ওড়ো বাই হড়ো কোয়া টায়ান উদুপ হড়ো কোকে পুরস্কার এমোয়া কেন্দ্র সরকার মুস্কান কাজী কামি লেকাতে রাঁচি রেয়া সদর আসপাতাল ঝাড়খণ্ড রেয়া সিধা আসপাতাল বাই জানা কেন্দ্র সরকার সিবিএসই রেয়া অন স্ক্রিন মার্কিং সিস্টেম রেয়া কাপাজি রে মারাঙায় কামি কেদা সরকার বোর্ড রেন দুনো গমকে রাহুল সিং ওড়ো কামি চালাও গমকে হিমাংশু গুপ্তাকে বাদলি কেকিনা রাঁচি রে ভোটার লিস্ট সুদ্রাও রেয়া গেদলা টায়ার রে গুয়ু বাই কেতে রেকাওতানা রাঁচি রেয়া ডিসি মঞ্জু নাথ ভজন্ত্রী ভোটার লিস্ট মাজা বাই মেনতে রাজনীতি গোট ওড়ো বিএলও কলো জামান দরকার গিয়ায় ঝাড়খণ্ড সিপাহী বহালি পরীক্ষা 2015 মামলা রে সুপ্রিম কোর্ট ইরলিয়া সায় উপুন হিসি ইরলিয়া হড়ো কোকে জি রাড়ে উমাদ কোয়া কোর্ট রাজ্য সরকার ওড়ো ঝাড়খণ্ড কর্মচারী চয়ন আয়োগ কে হুদা রে বিষয় রে উড়ু রুয়ড় রে হুকুম কাদা রাঁচি জেলা সিপাই পিএলএফআই রেন বারিয়া উগ্রবাদী কিনকে সাপ কেট কিনা ইনকি নাগড়ি ছেত্তর রে ফেরওয়াই কোয়েতে বার হিসি গেল লাখ টাকা আসি রেয়া ইনকিনকে তুপুদানায় তেকো সাপ কেট কিনা নেলোতে গিয়ে আকাশবাণী রাঁচি এতে খবর নেহাপতারা টুন্ডু জানা
1: আকাশবাণী রাঁচি হো হায়ামতে মেহাটোরিয়া খবর কলোতে ইন সরস্বতী গাগরাই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিকিং নামা দিল্লি রে আদিবাসী কো হানারা গোট ওন্ডো হানারা কাজি কামি কো ইটিং এমেনতে রাষ্ট্রীয় সম্মেলন কিন ইয়োগ কেডা নেন্ডে ঝাড়খণ্ড সোল হিসি তুরুয়ে রাইজ ওন্ডো উপনীয় কেন্দ্র শাসিত প্রদেশ রেন প্রতিনিধি কো হিতের কো ইটকেডা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিকিং নিজামায় চান্ডো মুতিন হোবান রেডিও করিডোরু মন কি বাত রেয়া মিসো দোসি পুন হিতের রে রাঁচি রে হোবায়ন হিসি আরিয়া রাষ্ট্রীয় সিনিয়র এথলেটিক্স ফেডারেশন বাদাবাদি রেয়া কিং চর্চা কেডা প্রধানমন্ত্রী তিকিং কিলিমিলি বাদাবাদি করে রাষ্ট্রীয় রেকর্ড বাইকের ইনুঙিয়ে কোকে গুরুবিন্দর বীর সিং বিশাল টিকে তেজস্বিন শঙ্কর দেব মীনা ও কুলদীপ কুমার তেকো সগুন সনাঙ্কিং এমন কুয়া
2: কুদিন পহলে হি ঝাড়খণ্ড কে রাঁচি মে ন্যাশনাল সিনিয়র এথলেটিক্স ফেডারেশন কম্পিটিশন হুয়া ইসমে করিব 800 এথলেটস নে হিসা লিয়া দেশভর সে আয়ে থে ইস দৌরান চার অলগ অলগ ইভেন্ট মে চার ন্যাশনাল রেকর্ড টুটে গুরিন্দর বীর সিং বিশাল টিকে তেজস্বিনী শঙ্কর দেব মীনা আর কুলদীপ কুমার ইন সাথিও নে অলগ অলগ ক্যাটেগরি মে নয় রেকর্ড বনায়ে মে সবসে পহলে তো ইন সভি কো বহুত বহুত বধাই দেতা হুঁ
1: ভাজপা রেন দেশম গমকে নিতিন নবীন বার সিং এ ঝাড়খণ্ড নেল হনরমন তেতি সিং রাঁচি কিং বিটাকনা পার্টি রেন কার্যকর্তা কো নেল দারম কেটকিং এ রাঁচি রে প্রদেশ কোর কমিটি সাংসদ অন্ড বিধায়ক কল দুনুম তায়ম ইয়ান্তে আয়ারপা হবান কুরুডুরু করিয়া কিং সালা চাপিকিডা রাজ্যসভা সানালা লেকেতে ঝাড়খণ্ড এ সুপুর এতে চর্চা সেশন তানা কংগ্রেস পায়াতে উমেদুয়ার কো মার্শাল কি তায়ম ঝামুময় বারিয়ে সিট এতে উমেদুয়ার তিঙ্গুই তিয়া এলান কিডা এনলো তেগে সত্তা রে মেনা গঠবন্ধন কাপাজি কো হবান তানা নেনতালা কংগ্রেস বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী লো কো নাপামা হুবাদায়ু ভাজপা দো তেসিং আপনা উমেদুয়ার উদুবিয়ে চাওরা মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং দো নামা দিল্লি রে হুবায়ন রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত বক্সি সমারোহ রে দিশুম রে বারহিসি বারিয়া পঞ্চায়েত কো মাইন কেট কোয়া নেন্ডে ঝাড়খণ্ড রে পাকুড় জিলে রে ঝিকরহট্টি পূর্বী পঞ্চায়েত মহিলা হিতাইশী পঞ্চায়েত শ্রেণী রে গোটা দিশুম রে দোসর টায়ার রে নামকিডা চাওরা মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী তিকিং সেনো অয়ান বিতরাং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন তিকিং লো নাপাম কেনতে কোডারমা রেন পাটুয়ে কোগিরিডি জুমলায়তে সানাগাই কুমেন্তে আজাপগার কিং জাপগারিয়ানা দুনুমরে মহিলা ওন্ডো বাল বিকাশ সানাগাই কেন্দ্রীয় যোজনা করি অকিং চর্চা কেডা কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিকিং গেলবার বছর পুরেয়ান্তে ঝাড়খণ্ড ভাজপা জনসম্পর্ক অভিযান ওড়ো বিশেষ কুরুডুরু কো অয়োবেতনা পার্টি নেন অবসর রে কে বর্ষা ওন্ডো হড়ো কো বালাই রেয়া পরব লেকাতে মানাতিং তেনে चावरा चाशी मंत्रालय ओते रकाय मुहिम ते ना जोंगरे अरे लाख हिसी बर हजारा ते सांगे चासी होड़ो को गलंग मिशेयना 30 जून जोंग हुबायन नेन मुहिम लेकाते गेल आई हजारा ते लाना एनेयन कुरुडुरु रे सुतम ते चासी होड़ो को बुगिन बुदर हसा मैनेजमेंट ओंडो जैविक पोषक जिनिस को चिल के पाइटी रे आगुई सेना को इमोतना नमा दिल्ली रे सेनोयन वितरंग जल जीवन मिशन 2.0 लिखते झारखंड सरकार ओंडो चावरा मंत्रालय तला कॉन्ट्रैक्ट रे सुई हुबायना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिंग दो वर्चुअल सुतम तिकिंग सेलेट लेना दुनुब रे चावरा मंत्री सीआर पाटिल तिकिंग मानक को पाड़ोने मेन झारखंड के हिसी 500 करोड़ टाका एमएम तकिंग जगर किडा राज्य सरकार दो बुबुल जिनिस कोरिया उकुदनांग बेपार होकाय लगे नामा इनाम योजना लागू किडे उकुदनांग बुबुल जिनिस कोरिया बेपार ओंडो बायो तंते खबर एमएस सादाया होड़ो को बक्शीश को एमओआ केंद्र सरकार मुस्कान कुरुडुरुल काते रांची रिया सदल अस्पताल नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन नम किड झारखंड रे पाइल सरकारी अस्पताल बाइये ने राष्ट्रीय मूल्यांकन रे अस्पताल दो 96.61% अंक नाम किड़ा केंद्र सरकार दो सीबीएसई ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम ते सगाई कपाजी तयम एशु मरंग कार्रवाई रिके किड़ा सरकार दो बोर्ड रन गोम के राहुल सिंह और चोम के हिमांशु गुप्ता तिकिन के बदल किटकिंगे सोलगे किरिंग पार्टी रे अनायुम यन नियम को नल बगे केट रिया जांच लगे एक सदस्य जांच कमिटी बाई किड़ा रांची रे बुगीते बोट एमे को नुतुम नेल उरे मुहिम लेके तेतिसिंगे ते सबन बोट एमे सेनेटर कोरे भार सिंह जोंग विशेष गुयु हु रिके केने रांची रेंडीसी मंजुनाथ भजंत्र तिकिन बोट एमे को सूची बुगिल का बाई लगे राजनीतिक दल को के बीएलए को लो जुड़ी केनते बुगिल का पाइटी में तकिन गुआरी केट कुआ झारखंड सिपाही बहाली बदाबादी बिड़ा 2015 ते सगाई मामला रे हाईकोर्ट दो रिल सोपुन हिस्से रिल कैंडिडेट को के बोर्षा इमाकट कुआ नेल ओतगे आकाशवाणी रांची ते मी हाटोर खबर निंतारगे तुंडुयेने जोहार
3: नुआ आकाशवाणी रांची के नानी तपे डुमने मई मुर्मू सिर खन मिन हाटरिया खबर आंजम पे दिसम गम के द्रौपदी मुर्मू दो नवा दिल्ली रे मिमिदो जनजातीय लहंती एजेंसी और मिमिदो जनजातीय लहंती परियोजना को दोहड़ा बिना लेकान राष्ट्रीय सेनेलेट को उड़ो किदा सेनेलेट रे झारखंड मेशा कते बारगिल तुरुई पोनोत और पुनिया केंद्र ते शासनो पोनोत रिन रसिया को सेलेट एना मारांग मंत्री नरेंद्र मोदी दो अजा चांदोकीय रेडियो हेलमेल रे मन की बात रे मीत साय पेगेल पुनन धाप हेलमेल रे रांची रे कोरालेन बारगिल आर्यन राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन हेपराव को गा गबान किदा मारांग मंत्री दो आयमा लेकान हेपराव रे दिसोमीय रिकॉर्ड बेनाव खिलोंडिय गुरविंदर सिंह विशाल टीके तेजस्वनी शंकर देव मीणा और कुलदीप कुमार एमान सराहा को चलत कुआ
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया देश भर से आए थे इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे गुरिंदर वीर सिंह विशाल टीके तेजस्विनी शंकर देव मीणा और कुलदीप कुमार इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
3: भाजपा ने राष्ट्रीय परिषद नीति नवीन दो झारखंड बार महा दड़ान रहते हैं रांची सेटेरे नए गोमकिया हेज रे पार्टी रेन कमिया दो भगी सही को दराम के दया पुल्लु महा दो गोमके रांची रे पुनोतीय कोर कमिटी संसद और विधायक को शाओ जुमी दो दुपड़ूब रे सेलेट इदी कते दराय हेलमेट लगी को साला गोटा के दा झारखंड रे राज्यसभा बचनाव इदी कते राज्यो रेया हुल चमका बढ़ती है ना कांग्रेस पार्टा को तिंगुअन उम्मीदवार डकरा तयम छामुमु हो बनार सीट रे हर तिंगुन को डकरा के दा जहाते नित शासन रे मेना चोपड़ा तला गहिर विवाद हुए ना नुआ ओक्ते कांग्रेस विधायक सिरा मंत्री शाओ को नपामा मेनखान भाजपा दो तेहेन अजीज होड़े डकराया केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह दो नवा दिल्ली रे कोरावलेन पंचायत सिर्फ हेलमेल रे दिसोम रेया पूनगेल बार पंचायत को मन केत कुआ नुआ रे झारखंड रेया पाकुड़ होनोता चिकरहटी पूर्वी पंचायत रे तिरल लगी लिवित पंचायत थाप रे कोटा दिसोम रे दोसर ठावे नाम केदा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी दो चलावेन महाशिरा मंत्री हेमंत सोरेन साव नपाम कते कोडरमा रिन पठुआ को गिरिडीह विश्वविद्यालय इदी कते जनामकान एटकेटोणा रे रापाजा रेना को दुपड़ुना नुआ रे महिला और बाल विकास केंद्रीय मंत्री योजना रे हो गालोच हुईना केंद्र रे मरंग मंत्री नरेंद्र मोदी या गिलवार शर्मा पूर्व रे झारखंड भाजपा जनसंपर्क अभियान आर हेलमेल को कोरावेदा पार्टी नोताक रे पतियो आर होर भगिया रे रस्क लेकाते को मनावेदा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय खेत बंचाव अभियान खोन नीत हबीज आरे लाख पून गेल 12,000 खोन बढ़ती चासी को सेलेक्ट करना 30 जून हबीज चला नवा अभियान लेकाते गेल एआई खोन बढ़ती चिंगा हेलमेल तलाते चासी को बेस आसा जोगाव और जैविक पोषक जिनिसा व्यवहार इदी करते ज्ञान को एमा को करना। नवा दिल्ली रे चलावेन महा जल जीवन मिशन 2.0 लेकाते झारखंड सरकार और केंद्रीय मंत्रालय तलारे सुहाबुहा कथारे सुही केदा को जहारे सिरा मंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल तलाते सेलेक्ट लेनाए दुपड़ूब रे केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल दो माना को माना बताओ रे झारखंड दो 25,500 करोड़ टका हबी रेया कथा को लय केदा। पुनः सरकार दो भूल जिनिस उनुदु उकुदनांग अक्रिंग दाराम लगी नवा इनाम योजना नोटिस जारी केदाय नवा लेकाते निसा जिनिसा उकुते अक्रिंग आर बेनाव रे खबर एमो होड को सिर्फ को चालकवा। केंद्र सरकार मुस्कान हेलमेट लेकाते रांची रिया सदर अस्पताल नीत नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट नामी झारखंड रेन पुलु सरकारी अस्पताल बनावेना दिसम रिया हिसाब लेकाते अस्पताल दो 6.61% अंको नाम केदा। केंद्र सरकार दो सीबीएसआई या ऑन स्क्रीन मार्किंग कमी होरा खोन सेलेक्ट विवाद तयम मारंग कार्रवाई केदा को झारखंड दो बोर्ड रे पार्षद राहुल सिंह और सूत्रे हिमांशु गुप्तो बदल आरू केद किना को साथे किरिंग कमी होरा रे छलबल रे जांच लगी मिद रसिय जांच समिति को गठन कदा। रांची रे तेहन सनम मतदान केंद्र रे 12 महावा तेहन खोन विशेष शिविर को करावेदा। रांची रिन डीसी मंजुनाथ भजंत्री दो मतदाता सूची रे भगीलिका बिना लगी राजारी दोलकोट ठेन भागीदारी और बीएलओ ठेन खोन गोड़ोय नेहरा कदा। झारखंड सिपाही नियुक्ति हेपराव बिनीर 2015 खोन सेलेट मामला रे हाईकोर्ट दो 8,80 पटुओ को निशा से एमत को कोर्ट दो पुनः सरकार आर जेसीसी खाली जायगा विरुद्ध नुको पटवी को ललिस रे दौड़ाते बिचर आंदे एम कदाय नवा साथे के मिनहट रे खबर मुचेद एना चौहार।
4: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार नागपुरी उराव मुंडारी हो एवं संताली भाषा में और आइए अब सुनते हैं समाचार ध्वनि चित्र।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।

0: इस अंक में मन की बात की 134वीं कड़ी, केंद्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे और विश्व पर्यावरण दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी में रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत भी की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए।
2: अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
3: नमस्कार सर। नमस्कार।
4: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी

0: का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, कह रही भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी। तो देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार रहूंग मैं सही चूज किया क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी, कोई नहीं तभी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा, हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है।
3: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों के साथ अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि बीते 12 वर्ष देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं।
4: देश के लोगों को, विशेष करके जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ उसकी सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 12 साल बिताए हैं। और 12 साल में जो रिफॉर्म्स है, आप सोचिए 13 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, 54 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा घर बन गए हैं और 8 करोड़ से ज्यादा गैस का सिलेंडर मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भाव तो छोड़ दीजिए, बॉम्ब ब्लास्ट बंद हो गए हैं। आप जब से मोदी जी आए हैं तब से आप देखिएगा कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनका भी मनोबल जो है हतोत्साहित है। ना तो पाकिस्तान हम पर ज्यादा कुछ दबाव बना पाता है, ना चाइना बना पाता है। तो सभी फ्रंट्स पे ये देश प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में जो हमारा विजन है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं।
3: गिरिडीह की महिलाओं ने केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। जिले की पीएम आवास योजना की लाभार्थियों ने बताया कि योजना का लाभ लेकर वे अब अपना घर बनाकर रह रही हैं।
5: मेरा नाम है गुलशन आरा, घर डाड़ी दी, पहले घर था टूटल उटल था, अब तो दे दिया घर, तब जरा बढ़िया बन गया, अब बढ़िया से रहने लगे।
6: मेरा नाम सवीरन खातून है, मेरा घर का बहुत दिक्कत था, पहले खपड़ा घर में रहते थे, बहुत पानी उनी चोता था, इसलिए हम लोग सरकार से ये हम लोग मांग किए कि मेरा घर न है, ऐसे खपड़ा घर में रहते हैं, पानी चोता है, बाल बच्चा हम लोग नहीं रख सकते हैं यहाँ, और अब सरकार दे दिया हम लोग को, बहुत अच्छा से रह रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर झारखंड के सरायकेला खरसावां के भाजपा कार्यालय में मंत्री

0: पादरी दरोगा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
1: मोदी जी का 12 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को सुदृढ़ और सशक्तिकरण बनाने के लिए ये जो योजना लाया गया था ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ये योजना के तहत हम लोग हर गली, हर गांव और हर मोहल्ले में हर गरीब महिलाओं को हम लोग उज्ज्वला योजना मोदी जी के नेतृत्व में घर घर तक पहुंचाए हैं, जिसका लाभ आज हमें पूरा भारतवर्ष में हर कोना में दिखने को मिल रहा है।
0: वहीं सरायकेला की लाभुक सेवती साहू ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने पर कहा कि केंद्र द्वारा संचालित इस योजना से उनका जीवन सुगम हो गया है।
2: सेवती साहू हूँ, मैं वार्ड नंबर 9 तेली साई सारीकला की निवासी हूँ। मुझे उज्ज्वला गैस मिला है जिससे मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमें धुओं से राहत दिला के आज उज्ज्वला गैस का उपयोग कर रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना से महिला लोगों का सशक्तिकरण भी हुआ है, नारी लोगों को जो धुआं से राहत भी मिला है और बहुत सारे ऐसे काम मोदी जी कर रहे हैं जिससे महिला सशक्तिकरण हो रहा है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड समेत देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए गए। इसी क्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित रॉक गार्डन में पौधारोपण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का समर्थन किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से अधिक पेड़ लगाने और प्रकृति को सुरक्षित रखने की अपील की।
3: क्योंकि आज अगर पर्यावरण की स्थिति ये जो हालत हुई है, जो बिगड़ा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मानव जाति ही जिम्मेवार है। तो एक गीत है ना कि दर्द तुम्हें नहीं दिया है तो दवा भी तुम्हें देना। तो हम सब लोगों ने अगर इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बिगाड़ा है, तो ठीक भी हम ही सब लोगों को करना होगा और उसमें से हर व्यक्ति का एक योगदान हो सकता है तो पौधा लगा करके हो सकता है। पेड़ माँ के नाम आज से कम प्रारंभ हमें करना चाहिए ताकि पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके। पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम लोग ठीक कर सकें। पौधा, फलदार पौधा भी लगा सकते हैं, छायादार पौधा भी लगा सकते हैं। लकड़ी के काम में आने वाला मालदार भी लगा सकते हैं। तो इसे जीवों ही नहीं बल्कि समस्त जगत के लोगों का आश्रय भी बन सकता है, भोजन भी वहां से हमें उपलब्ध हो सकता है।
0: वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत रांची के धुरवा में वृक्षारोपण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत झारखंड में इस वर्ष 2 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है।
4: पर्यावरण दिवस से जल जंगल जमीन की बातें करता है, याद कराता है। हम झारखंड के लोग हैं और जल जंगल जमीन से हमारी सबसे ज्यादा सहचारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस क्लाइमेट चेंज और इस दुनिया के जो विकसित हो रही है उसमें जो विकट एक परिस्थिति है, ग्लोबल चेंजिंग जो कहता है और जो मौसम में परिवर्तन है, तो उन्होंने जब से प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया है तब से उन्होंने लगातार एक रचनात्मक कार्य के तहत अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है एक पेड़ माँ के नाम, यह अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। और इस दिवस से आज से लेकर के 21 तारीख तक हम 2 लाख से ज्यादा पेड़ इसे झारखंड प्रदेश में लगाने वाले हैं।
0: इधर विभिन्न जिलों समेत खूंटी समाहरणालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वरीय अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। उपायुक्त जावेद हुसैन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से वृक्ष लगाने की अपील की।
5: एम्पावरमेंट डे पे यहाँ पे प्लांटेशन का ड्राइव लॉन्च किया गया है और इससे इससे रिलेटेड लोगों से भी अपील होगी कि अपने आसपास के पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में आप लोग भी आगे बढ़कर आए। और इसमें मूलतः जो तीन चार बातें मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा वो ये रहेगा कि सॉलिड वेस्ट जितनी भी जनरेट होती है उसको खास करके अपने घरों में

0: ड्राई और वेट वेस्ट को आप अलग अलग सेग्रीगेट करें। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का भी जो गाइडलाइंस आया है उसमें भी हम लोगों को 4 स्टेजेस वेस्ट सेग्रीगेशन करने का भी निर्देश प्राप्त है, तो लोगों से अपील रहेगा कि इस डायरेक्शन में आप अपनी इनिशिएटिव्स लेंगे। इसके साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट और जो हैजार्डस वेस्ट ई वेस्ट वगैरह भी होते हैं उनको भी प्रॉपरली सेग्रीगेट करने की आवश्यकता है। यथासंभव नॉन सिंगल यूज प्लास्टिक को आप इस्तेमाल ना करें और लोगों से अपील होगी कि अपने आसपास के एयर और वाटर पोल्यूशन को भी प्रोटेक्ट करने में लोगों की आप अपनी अहम भूमिका निभाएं ताकि हमारे आने वाले जो हमारा पर्यावरण और हमारा देश रहेगा वो स्वच्छ और सुरक्षित रह सके।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।

अभी आप सुन रहे थे समाचार ध्वनि चित्र। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म दिल एक मंदिर से।

0: दिल एक मंदिर, इस फिल्म से आपने सुना ये प्यारा सा गीत। लता मंगेशकर के स्वर में शब्द रचना शैलेंद्र की एवं संगीत शंकर जयकिशन का। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई।

0: शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में, जिसे संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने एवं फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत बनाई। इसी के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है और आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government, and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aapse jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aapse discussion karna chahenge, chahe wo Pradhanmantri Jandhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
3: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी। उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है।

0: होती है, इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है। और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सकें और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया, देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी।
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमईज को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे। लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हो
1: जी, जी।
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, तो ये सशक्तिकरण मात्र नहीं है जी, ये आजीविका के
1: मुद्दे
0: हैं।
1: यस जी, आदित्य जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इन फैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशरीज, एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under

0: the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Smriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the Jam Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers, and then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system, and you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, so.
1: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari, aur jo daughters hai, unke education, unke birth se hi unke liye aage ki unki jo future hai usko secure karna. Agar hum PM Sukanya Samriddhi Yojana ki baat kare, jiska zikr Aditi kar rahi thi, to usme jis tarah ka vikas hua hai, agar hum dekhe to financial year 2014-15 mein 4.2 lakh accounts the, aur financial year 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीस हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, और वॉज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग men in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल.
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर.
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
2: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and

0: 8.73 crore women were screened for cervical cancer. एक yes. और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है जी, सो मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी, 98 बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी.
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया, देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टैलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes. which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when yes. women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, yeah, due to the yeah. Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm-hmm. You can see the women have dreams about their children now, mm-hmm. and especially the daughters. Mm-hmm. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
0: Yes.
1: और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत एज वी सी. आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
0: एब्सोल्युटली. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे, उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इश्यू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है. जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद

0: सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशन बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द ईयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो, पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे, आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे, उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
1: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन हैं इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस हैं, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था, आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल, पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेज को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है, विच इज ईजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग।

0: ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूं, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूं, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कांट बी बेटर रेसिपी बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स बिकॉज skills keep changing and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time, and you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together, and then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields, then they are ready for the world. Aur ye sarkar chahti hai women led development kab hoga, wo ek madhyam to yahi hai, pehla swasthya, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी, और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र समाज दोनों उसके लिए तैयार हो।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
0: बिल्कुल, आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो वो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है, वो इसलिए संभव हुआ है सोनू क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए, वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
3: थैंक यू।
4: इन दिस स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat, abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal, Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
6: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
5: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
7: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ

नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों का किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हमनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉ पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुताल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमुई मकदार और पैकेट के मियारी साइज का तायुन करने से मुताल्लिक तरीकाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मियारी साइज तजवीज किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुर्दनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रूपये दिए जायेंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुनबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हुई जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्दे आप करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत, مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ اے دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تالمیل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے دو امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے مندسور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے وزیر جناب جینت چودھری نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں ملازمین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ڈے کیئر سہولت کا افتتاح کیا۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام اور زیادہ شمولیت والا، ہمدردانہ اور عوام پر مرکوز کام کا ماحول قائم کرنے کے تئیں ایک نمایاں پہل ہے۔ تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے جہاں بچے سیکھیں، کھیلیں، آرام کر سکیں اور بہتر نشو نما حاصل کر سکیں۔ ایران نے آج کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد خلیج کے ملکوں اور امریکی فورسز نے تالمیل کے ساتھ فضائی دفاعی کارروائی کی۔ اس طرح مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی پھر تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کی ساحلی نگرانی اور رڈار تنصیبات پر امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے 7 بیلسٹک میزائل داغے۔ ابتدائی جائزے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 6 میزائلوں کو بیچ میں ہی روک دیا گیا جبکہ 7واں میزائل اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکا۔ امریکی فوجی اہلکاروں کے جانی نقصان کے تعلق سے کوئی فوری اطلاع نہیں ملی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مغربی ایشیا کا تنازع اس وقت ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کی طرف بیلسٹک میزائل داغے۔ تاہم خلیجی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ایرانی میزائلوں کو ناکام بنا دیا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب قشم جزیرے اور گورخ میں ایرانی راڈار اور نگرانی کے مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے چند گھنٹے بعد یہ حملے ہوئے۔ واقعات نے نازک سفارتی کوششوں کو متاثر کیا ہے اور دنیا کے اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں بحری حفاظت کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران لبنان میں امریکہ کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی لبنان میں ایک لبنانی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی سے ونود کمار کے رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ تیسری بار جیت لیا ہے۔ کاکامی گہارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-1 سے شکست دی۔ भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर चना मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जना मोदी ने कहा कि इस शानदार संघ मेल से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इन्फिरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक, केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निजाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से यह बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुरदनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیت لیا ہے، جبکہ بھارتی خواتین ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम पर चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दे बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम

0: से एक से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आजादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी को यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देने लगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोबल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ। ये बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी बूटो, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात होगी, बातचीत। यंग था वो मेरी चैसा, तो अब मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखते कर। उसने कहा यार तुम लिख लेते, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते, मैं देखो तुम्हारी कहानी। तो मैंने डर के मारे मैंने कहा नहीं, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापे है, क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा कहो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापे गए नहीं। जाते हुए बोले मैं तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मगर एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
2: असल में मेरे लिए दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आप चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, या आप वास्तविक समस्या को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है, तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
2: देखिये, कारण वही है कि मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है, आप निसहाय है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो रही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
2: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
2: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब एक्ट कर, लेकिन जो रचनात्मकता है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है। तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की

0: ये और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए। और लगभग दोनों ने समान अधर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
1: जी।
0: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भावभंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
1: शब्द चित्र
0: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था
1: जी,
0: उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
1: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है, हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
0: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
1: जी।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
1: जी,
0: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
1: जी।
0: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
1: जी।
0: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दादा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
1: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही
1: जी।
0: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, और विशेषकर करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों

0: को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी।
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरि पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है
1: जी,
0: उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के टेक्नीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभ मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया, नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गांगुड़े आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी हैं और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं।
1: ऋषिकेश गांगुड़े इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडिली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुतबंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू 3 ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन 3 ताल।

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Subhendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
5: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chimrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart, Shishir Khanal, in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
6: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हमारी मीडियम वेव की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है, लेकिन सुबह 6 बजे तक FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे दिल्ली FM गोल्ड के कार्यक्रमों का लुफ्त उठा सकते हैं। प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे प्रातःकालीन कार्यक्रमों के साथ। अब हमें दीजिए आज्ञा, शिवरात्रि, जय हिंद।

प्रार्थना। प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मबल का स्रोत है। जब मन में विश्वास और कर्म में निष्ठा हो तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है।